0: Loss in Travel has been helping families plan stress-free international trips with the best airfares, vacation packages, cruises, and customized travel solutions. Loss in Travel makes every journey smooth, affordable, and tension-free. Call now 214-631-2458 or visit lossintravel.com.
1: कंप्यूटर जी का सवाल ये है, बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है? ऑप्शन ए, स्लो प्रोसेस. ऑप्शन बी, ज्यादा पेपर वर्क. ऑप्शन सी, क्रेडिट स्कोर का कंसर्न. या ऑप्शन डी, लोन डिक्लाइन होने का डर.
2: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा.
1: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए.
3: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है. नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं. रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में.
4: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338. 817-786-3338. The SBA Loan Experts. फैसला क्लैरिटी के साथ.
5: सेम ऑर्डर अगेन? सेम पिज्जा? सेम टेस्ट? सेम स्टोरी? टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स, डैलस. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
6: Attention business owners, what if your everyday expenses could actually make you money? That's right, with Connecting America, you can turn your business expenses into a powerful stream of income via a unique insurance product. If you are looking to boost your bottom line, they got the strategy that works for you. Plus, they help homeowners pay off their mortgage in 10 years or less.
4: Don't wait. Call James at 321-888-7345 today or visit ConnectingAmericaFinancials.com and discover how to turn your daily expenses into income. Connecting America, where smart business owners turn costs into cash.
7: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.
8: Dallas, are you ready for a mini India in one evening? On Sunday, May 31st, 3 p.m. to 9 p.m., join us at the Haggard Park, Plano, near downtown for the Ambuj Basant Mela, powered by Bana. Live performances, raffle prizes, and touch the truck from 4 to 5 p.m. Plus, a pan-India food festival from Litti Choka to Bengali, Marathi, Gujarati, Oriya, South Indian, Punjabi, Sindhi, and so much more. Free entry, free parking, fun for the whole family. Ambuj Basant Mela, powered by Bana. Supported by major Indian non-profit organization in DAW.
4: For booth and sponsorship contact, admin@ambuj.us.
9: Hello, how are you all doing today? कैसे हैं आप सभी लोग? क्योंकि ये कौन बोला? Yes, that is right. This is me, myself, and I. And you're listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. और अभी मैं बोलूंगी आप सबको हैप्पी ईद. ईद मुबारक टू ऑल माय मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, माय फ्रेंड्स. ये गाना आपके लिए. और जब हम वापस आएंगे गाना सुनने के बाद, तो मैं बताऊंगी कि मैं हूँ कौन. क्योंकि आप लोग जो पिछले दो दिनों से मेरा शो सुन रहे हैं, आपको तो शायद पता ही चल गया होगा. जिनको नहीं पता चला है, उनके लिए मैं दोबारा बोल दूंगी. ऐसा क्या है? चलो, दिस इज मी, माई सेल्फ एंड आई, एंड नाउ टाटा बाय बाय. तो एंजॉय द सॉन्ग, कम बैक एंड देन वी विल डू अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन.

Hello, hello, Dallas. Thank you for listening to my show, An Evening in Dallas. And yes, that is correct. मेरा नाम है इबी द हिबी और मैं आप सबको एंटरटेन करती हूँ मंडे टू थर्सडे 7 to 10 PM. That is correct. मैं हर मंडे से हर थर्सडे तक 7 to 10 PM तक I bring to you new old music. You know? अब ये न्यू ओल्ड क्या चीज़ है? ओल्ड इसीलिए क्योंकि वो अभी तो नहीं रिलीज हुआ है कुछ टाइम पहले. न्यू इसीलिए क्योंकि हमने बहुत साल नहीं सुने वो गाने, तो मैं दोबारा वो गाने लेकर आई हूँ. एंड आई डोंट मीन लाइक 50s या 60s के गाने, शायद 50s 60s के गाने भी होंगे, बट कुछ गाने जो हम कई बार सुनते हैं भूल जाते हैं, हमारी लिस्ट में से गायब हो जाते हैं, लेकिन दे आर सो एवरग्रीन, दे आर सो ब्यूटिफुल एंड दे आर सो नाइस. So I kind of bring them back, and also I will anyways bring some new music. The song that you just heard was Sakalban by, actually originally तो वैसे अमीर खुसरो जी का गाना है क्योंकि उन्होंने लिखा है. अगर आपको अमीर खुसरो जी नहीं पता, I mean he was such a prolific composer, writer, literature expert from like way back in the Mughal era. I believe he lived from the 1200s to the 1300s. I'm not 100% sure, but we can Google check that. We can ask ChatGPT to correct our facts for that. But Mr. Amir Khusro has been credited with a lot of incredible contributions to our Indian culture. Jaise the invention of what the modern day sitar is like. Actually, Mr. Amir Khusro ji is credited with, what most people play as sitar right now. He is credited with creating that. Although, I have to say that sitar has its roots in traditional Indian instruments like veena and all that, tanpura and veena, which are like much older. But theek hai, jo abhi jo log baja rahe hain, that is directly jo unhi ka ancestor hai. Unhone hi sara usko, standardized kiya and everything. So, he did some really cool things. Apart from that, he is also credited with creation and solidifying of what we all know as Qawwali music. That's right, Qawwali music. Qawwali music, nahi to hame pata hi nahi tha ki kya tha. Qawwali music was initially Mr. Khusroji's contribution where he, wrote a lot of the spiritual devotional poetry. Aur uske baad usko alag alag, कवाली म्यूजिक ओरिजिनली डिवोशनल म्यूजिक ही है, लेकिन उसके बाद बॉलीवुड ने भी उसको लिया है और बाकी कई आर्टिस्टों ने लिया है. दे हैव मॉडिफाइड इनटू अ मोर लाइक अ जेनेरिक लव रिलेटेड सॉन्ग, लेकिन ओरिजिनल जो उसका कॉन्सेप्ट था, इट वाज बेसिकली लाइक अ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट वेयर द सिंगर और द राइटर इज कंसिडर्ड, ही इज कंसिडरिंग हिमसेल्फ एज इन अ वेरी लविंग रिलेशनशिप with the higher power, and the meaning is just beautiful. Anyways, but I'm not doing like a research paper on Qawwali music right now. तो वो आप खुद रिसर्च कर लेना चैट जीपीटी पे, उतने फैक्ट्स हम नहीं देंगे. हम थोड़ा मज़ेदार बनाने वाले हैं, बिकॉज येस दैट इज राइट, आई एम इपी द हिपी दी ओरिजिनल और ओजी दिल्ली गर्ल, एंड आई एम लाइक द ऑफिशियल बैडी ऑफ फन एशिया. आई लाइक टू थिंक, आई लाइक टू कॉल माई सेल्फ दैट. इफ यू फाइंड एनी अदर बैडीज ऑफ फन एशिया देन लेट मी नो, इफ नॉट दैट्स ओके टू, यू कैन जस्ट कीप इट टू योर सेल्फ, ओके. लेकिन I'm here and I bring some new masala, some new magic and some new ideas to this show. And today we are going to talk about what's hip and happening all over the internet. And then we're also going to talk about what is happening outside of the internet, like people's relationships and dating apps. And I have some like really, really juicy stuff, by the way, you guys, that I came across today on Reddit threads and everything. And I was like, man, I have to share it with my audience because, I mean, I don't know. I'm sure you guys have heard all of this stuff before. लेकिन अगर आपने नहीं सुना है ये सारा जूसी जूसी सामान, तो मैं दोबारा सुना दूंगी. उसमें क्या है, अगर इफ यू हैव कम अक्रॉस दीज थ्रेड्स देन ग्रेट, इफ नॉट देन ऑल्सो जस्ट एंजॉय यार, उसमें क्या है. एंड अदर देन दैट, जस्ट काइंड ऑफ लाइक एंजॉय, सिट बैक, एंजॉय द म्यूजिक, एंड आई विल बी बैक राइट आफ्टर दिस सॉन्ग. बट बिफोर आई गो एंड प्ले द सॉन्ग, आई हैव टू टेल यू, आई हैव अ गिव अवे. यस, यू राइट गाइज, आई हैव ए फन पिज्जा किचन गिव अवे जो मैं 7:30 PM के बाद अनाउंस करने वाली हूँ. अभी नहीं, 7:30 PM के बाद आई एम गोइंग अनाउंस दैट गिव अवे, नॉट राइट नाउ, बट स्टे ट्यून्ड, बिकॉज अगर आप
चले जाओगे शो से तो गिव अवे किसी को नहीं मिलेगा और वो मुझे ही मिल जाएगा, ठीक है? तो अगर आपको गिव अवे चाहिए लाइक फ्री, क्योंकि वी ऑल लव फ्री स्टफ, यू नो, आई मीन आई नो इट, छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वी ऑल लव फ्री स्टफ, ओके? तो अगर आपको चाहिए तो स्टिक अराउंड, वो 7:30 बजे के बाद मेरा क्वेश्चन आएगा और तब आप उसको आंसर करना, एंड वी गोना मेक इट अ लिटल ट्रिकी दिस टाइम, बिकॉज यू नो दैट्स हाउ इट शुड बी, यू कैन मेक इट सो फन एंड सो इजी, नहीं तो सब जीत जाते हैं गिव अवे. थोड़ा तो फाइट करो यार, मतलब फ्री भी चाहिए तुमको और मेहनत भी नहीं करोगे, ऐसे थोड़ी ना चलेगा. तो हम 7:30 बजे के बाद आते हैं एंड देन वी विल आंसर आवर क्वेश्चन एंड देन यू कैन विन दिस ब्यूटिफुल गिव अवे बाय फन पिज्जा किचन विच इज लाइक फ्री पिज्जा एंड ऑल दैट. सो जस्ट कम बैक, ओके? अंटिल देन एंजॉय दिस नेक्स्ट ट्यून.

0: क्या
1: Hey,
0: जीनी
1: how are you?
0: जीनी में जाओ क्या जीनी नो मैं भी तो
1: नहीं,
0: नो मैं भी तो
1: बोलेंगे
0: जाना कि मैं जाऊँ मैं जाऊँ निकाल दो चाचा चीनी हो जाओ।

इसी गाने से एक सेइंग मुझे याद आ गई जो मुझे बोलनी थी गाने को प्ले करने से पहले, लेकिन मैं कॉल में थी पर मैं अभी बोलती हूँ। पहले मुझे डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे, पहले मुझे डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे, अब लगता है कि मैं लोगों को कुछ ना बोल दूँ। कोई कहे कहता रहे, चाहे कुछ भी कहे जमाना, हम अपना करते रहेंगे क्यों। आप गाना

0: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
1: ड्यूड लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
2: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
1: कैसे?
2: पेज 3 ईटरी?
1: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
2: ड्यूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
1: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
3: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
4: सब कुछ साफ रख सकते हो,
5: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती। कोई नहीं सोचता मेरे बारे में।
6: क्योंकि ये कौन बोला?
5: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पोलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
7: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक्ट टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 9728772500।
8: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम। वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डालस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी। देसी मंडी, पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डालस।
9: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना? जस्ट लाइक दैट, व्हेन इट कम्स टू टैक्सेस, ओनली वन नेम पॉप्स अप, एजी फिनटैक्स। दिस टैक्स सीजन, फॉर अ स्ट्रेस फ्री टैक्स फाइलिंग, फाइल स्मार्ट, फाइल इजी विद ग्रंथी टैक्स प्रोस, एन एसोसिएट ऑफ एजी फिनटैक्स। साथ ही साथ आपका रिफंड मैक्सिमाइज करना और आपका फाइनेंशियल फ्यूचर प्लान करना, दैट्स आवर कमिटमेंट। तो इस बार डिले क्यों? कॉल 972-618-8555 और विजिट agfintax.com। ग्रंथी टैक्स प्रोस, पावर्ड बाय एजी फिनटैक्स। प्लान टुडे, प्रॉफिट टुमारो।
10: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया। ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
11: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
10: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
11: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
10: ये क्या होता?
11: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
12: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
13: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
14: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
15: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
16: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं, बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
17: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
18: प्लीज डोंट से योर यूजुअल प्लेस अगेन, आई एम टायर्ड ऑफ द सेम फूड।
19: एक्सक्यूज मी, इट्स कॉल्ड बीइंग लॉयल,
18: इट्स कॉल्ड बीइंग प्रेडिक्टेबल।
19: ओके देन, Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
18: And what's so special at Neon Cactus?
19: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
18: Not bad.
19: Happy hours Monday to Friday and amazing food and drink deals every day.
18: Okay, this I didn't expect from you.
19: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
20: If you're ever involved in a car accident, remember these important 3 tips. First, stay calm. Second, check for injuries and move to a safe place if possible. Third, gather information by taking pictures, exchanging contact information, and insurance details. Always, always file a police report. Remember, never ever admit fault at the scene. Even minor injuries can turn serious. so seek medical attention right away. The law offices of Omar Khwaja specializes in personal injury law, and we are here to help you navigate through the legal process. Call us for a free consultation at 1-833-GET-OMAR or visit our website at attorneyomar.com for your free consultation. We can't wait to hear from you.
0: Hello, hello everyone. We are back and you are listening to Hippie the Hippie on Fun Asia Radio 104.9 FM on my show. An evening in Dallas. I think I should really record that bit. Next time I say that, I probably should play like a recording or something with some music and some guitar and some keys in the background. So it's a little more fun, hai na? But anyways, jab tak I make that thing ready, as promised, this is the time for our giveaway. You know what the giveaway is? It is a gift card to the Fun Pizza Kitchen. Do you guys know about Fun Pizza Kitchen? Okay, I haven't had dinner, so ye bolte mere muh mein bahut sara pani ikattha hone wala hai, but I will try and control my hunger, okay? Are you craving something cheesy with a desi twist? Exactly, pizza meets desi, you guys. Fun Pizza Kitchen, where flavor meets fire. For all my veggie lovers, try the achari paneer pizza. Ya fir all my non-veggie lovers, try the tandoori chicken pizza. Yum, yum, yum. So good. Anyways, you all know how good that Pizza Kitchen is. They also had, what was that? Jam Lounge last month. Yeah, actually this month only. Earlier this month. And I'm sure you guys had your delicious pizzas. Cheesy goodness. Oh, so good. Dekho, fir se paani aa raha hai muh mein. Bolte, bolte. Anyways, time for the question. Okay, this is your chance to win a $10 gift card by answering a simple, mostly simple, yeah, it's not that hard, mostly simple, but also not so simple, question. Before I tell you the question, today is actually the birthday of one of my all-time favorite artists, Stevie Wonder. Yes, who is Stevie Wonder? Yes, he's not an Indian musician. He's not a Bollywood musician. He's not even an Indian indie musician. He is an American musician. And I'm sure you guys have heard him a lot, which you are living in America, by the way. I'm sure you guys have heard of Stevie Wonder. He's such a legend, you know. The man has contributed so much, not only to American music, but also to Indian music. If you did not know, a lot of the songs that, you know, he wrote have actually been ripped off and been used in Bollywood music. Matlab Bollywood ne kitne sare gaane Stevie Wonder ji ke gaane thode se copy karke dal diye hain. But wo hame sabko pata hi hota hai ki hamare kafi sare Bollywood composers gaane copy karte hain ya changes borrow karte hain aise aise karke melody bhi puri aise karte hain. Lekin koi baat nahi, wo hum us discussion pe nahi ja rahe hain. काइंड ऑफ उस डिस्कशन पे जा रहे हैं. तो आज जो है स्टीवी वंडर जी का जन्मदिन है, उनका जन्मदिवस है. तो द क्वेश्चन फॉर द फन पिज्जा किचन गिव अवे इज, मैं आपको आई एम गोना प्ले यू द सॉन्ग विच इज बाय स्टीवी वंडर. ओके, आप उस गाने को सुनिए. उसको सुन के आप मुझे ये बताइए कि वो कौन सा हिंदी गाना है जिसने पूरी तरह से ये गाने को मतलब कॉपी करके पिक्चर में डाल दिया है. मुझे वो पिक्चर तो बहुत पसंद थी. आई लव दैट मूवी. ओके, इट्स लाइक दिस 90s मूवी वेयर सलमान खान वाज स्टिल वेरी वेरी यंग एंड ही वाज टोटली नॉट द यू नो जिम ब्रो एंड द मसल द माचो मैन दैट ही इज राइट नाउ. ही वाज काइंड ऑफ ऑन द स्किनियर साइड एंड ही हैड मोर हेयर. But also, he was still very dashing, I have to say. I actually like young Salman Khan better than the older version of Salman Khan, to be honest. But you listen to this song and then you tell me which is that Hindi song which sounds exactly like this Stevie Wonder song. Okay? And then I'm going to put you on air. Bhai, mera question hi nahi. Maine gaana hi nahi bajaya. Call pehle hi aa gayi. Ruko, ek second. Pehle call dekh lete. मैं पहले गाना बजा लूं. मिस्टर विवेक जी, आप पहले गाना सुनिए फिर आप बताइए मेरे को, ठीक है? कॉल मी बैक. ओके, लेट मी प्ले द सॉन्ग फॉर यू गाइज़.

एग्जैक्टली गाइज, एंड आवर विनर फॉर द फन पिज्जा किचन गिव अवे, मैं आपका नाम पूरी तरह से ले नहीं पाई क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत साउंड आ रहा था, लेकिन आप ही जीती हैं, तो आप जरा प्लीज मुझे कृपया करके कॉल बैक करिए सो दैट आई कैन राइट डाउन योर नेम एंड योर इन्फो एंड देन वी कैन ऑल्सो ऑफिशियली अनाउंस दैट यू आर द विनर. हाँ, सो प्लीज कॉल मी बैक एंड प्लीज मेक श्योर दैट द रेडियो इज लाइक वॉल्यूम डाउन इन द बैकग्राउंड, नहीं तो मुझे अपनी आवाज सुनाई देती है एंड देयर इज अ लॉट ऑफ केओस एंड नॉइज. Anyways, guys, the next song that I'm going to play for you is actually really cool. We all have heard of Sona Mahapatra. She's a great, great, great singer. I actually admire her. But, however, trolls on the internet don't seem to think so. Because she came into this news a few... Anyways, you know, I'm getting that call. So, I'll tell you what. You listen to the song. I'll tell you the story. But until then, enjoy.

That was Sona Mahapatra, you guys, with Ajave. मैंने ये गाना बहुत साल पहले सुना था. I was so young. I was like maybe 17 or 18 years old, and I used to. I had a very interesting job. I was a party hostess, like a kid's birthday party hostess, at this fast food chain in India called Nirula's. You know, they used to have these weekend parties. और मेरा काम था टू जस्ट मेक द किड्स प्ले गेम्स एंड काइंड ऑफ मेक श्योर एवरीथिंग इज स्मूथ एंड कम्युनिकेट बिटवीन द क्लाइंट एंड द किचन सो दैट यू नो दे कैन गेट देयर फूड ऑन टाइम एंड ऑल ऑफ दैट बिकॉज दे नीडेड अ प्रीटी फेस टू बी देयर एंड वी लाइक अच्छा चलो बच्चों को गेम्स खिलाते हैं चलो केक काटने में मदद कर देते हैं एंड सो ऑन एंड आई डिड दैट जॉब फॉर आई थिंक 3 years और समथिंग लाइक दैट क्योंकि वो सिर्फ वीकेंड का जॉब था. कई बार वीकेंड पे दो दो पार्टीज होती थी. You know, one afternoon party, one evening party, and I got to eat a lot of yummy cake, a lot of French fries, and a lot of pizza. It was like the best job. And sometimes I even got to take some home because I, you know, the manager was like, okay, you know, Ippy, you're kind of nice. So yes, you can take some pizza home, okay? And Nirula's, actually, it's really interesting because Nirula's, pata kya tha? I mean, it was this big fast food chain in Delhi before, like, any of these international food chains had arrived, before KFC, before McDonald's, before Pizza Hut. So they were like an Indian food chain, and they still have, by the way, some of the best ice creams. Like, it was like kind of like Baskin and Robbins, but you know, it was so yummy. And they had this one flavor called blackcurrant, which is of course not a new flavor. I'm sure every ice cream chain has that, but it was like this beautiful, vibrant purple colored ice cream. And that was literally my favorite. I was like, मुझे तो purple ice cream ही खानी है because my goal in life to be different from everyone. So anyways, so basically when I was working one of the parties, they had this like TV in the background and ये Sona Mahapatra had just released her song and it was playing there all the time. So I was like, यार ये कौन है? ये गाना तो मुझे पसंद है. I kind of like the song and I'm talking about 2005 or something. It was like so long ago. Anyways, but what I was telling you guys earlier was ki, what was the controversy? Why did she come back in the news? She's done a lot of great songs. She's done like a lot of Bollywood tunes also. Wo gaana nahi suna aapne? Bedardi Raja and all of these other songs. So unhone bahut sara gaana gaya hai. Of course, her husband is Ram Sampat, who has composed a lot of, you know, Bollywood tunes and stuff. He has given the music for a lot of Bollywood movies. But why did she come back in the news? There is this music-based podcast. I'm not remembering the name of the podcast right now, but they basically interview, like, really famous musicians who are current and, you know, very experts on music and everything to give them information about acha ye kaun sa matlab sur kaise lagana hai taal kaise and all that. To unka interview chal raha tha and something she was talking about raag yaman. To jinhone Indian classical kiya hai jaise ki maine aur jinhone nahi kiya hai unke liye bhi main bol deti hu, hum sabko sare gama pata hai, sare gama pa dha ni sa, theek hai. Yaman mein kya hota hai, hum log lagate hain teevra ma. ठीक है, तीव्र म इज बेसिकली अ शार्प 4 और अ शार्प 11, विच काइंड ऑफ साउंड्स लाइक सारे गामा, ऐसे सुर होता है उसका. लेकिन अब वो जो थी ना इंटरव्यू में, मे बी शी गॉट नर्वस, मे बी उन्होंने अपना यमन बहुत दिनों से रियाज नहीं किया, तो इंस्टेड ऑफ लगाने की तीव्र म की जगह ना उन्होंने कोमल ग लगा दिया. और इतनी ट्रोल हुई ना वो उसके बाद ऑल ओवर द इंटरनेट. ऑल दीज स्मॉल म्यूजिशियंस हु मेक रील्स ऑन द इंटरनेट एंड पोस्ट देयर कवर वीडियोस एंड ब्ला ब्ला, एंड दे वर ऑल लाइक, दिस इज एन अवार्ड विनिंग सिंगर फ्रॉम इंडिया हु डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन कोमल ग एंड तीव्र म. उसमें तो पूरे चार सुरों का फर्क है. कोमल ग के बाद आता है रेगुलर ग, शुद्ध ग आता है, उसके बाद म आता है, चार नहीं तीन एक्चुअली, उसके बाद म आता है, उसके बाद तीव्र म आता है. तो उन्होंने ये कैसे गा दिया? एंड मतलब आई मीन फॉर समबडी हु इज एज फेमस एज सोना महापात्रा, आई फील लाइक she was like heartbroken because aapke kaam ko leke koi itna you know karta hai ki bhai tumhe aise kaise, you know, how can you be famous and call yourself a famous singer when you can't tell the basic difference between a teevra ma and komal ga. Aur ye jo sur hai na, वैसे now that I'm saying all this to my non-music friends,
टू माय नॉन म्यूजिक फ्रेंड्स जिन्होंने कभी गाना नहीं सीखा है वगैरह, आपको लग रहा होगा हाँ ये तो बड़ा टेक्निकल है, बट गाइज अगर आपने थोड़ा भी म्यूजिक सीखा है तो अगर आप इंडियन क्लासिकल में जाओगे सबसे पहली चीज आपको यही सिखाते हैं, सारे गामा के अलावा एक यमन राग, पहला राग आपको जिंदगी में यमन ही सिखाएंगे और दूसरा

वगैरह, आपको लग रहा होगा हाय ये तो बड़ा टेक्निकल है, बट गाइज अगर आपने थोड़ा भी म्यूजिक सीखा है तो अगर आप इंडियन क्लासिकल में जाओगे सबसे पहली चीज आपको यही सिखाते हैं, सारे गामा के अलावा एक यमन राग, पहला राग आपको जिंदगी में यमन ही सिखाएंगे, और दूसरा आपको सिखाएंगे काफी या भीमपलासी जिसमें कोमल गा लगता है, ठीक है, एंड इट्स काइंड ऑफ अप्लाइड इन वेस्टर्न म्यूजिक ऑल्सो, इट्स देयर इन ऑल द म्यूजिक कल्चर्स, ठीक है, क्योंकि मैंने दोनों सीखा हुआ है तो मुझे पता है. एनीवेज, बट दैट बीइंग सेड, शी वाज रियली इन द न्यूज़ एंड पीपल रियली क्रिटिसाइज्ड हर एंड शी वाज ऑलमोस्ट टियरी आइड. फिर उन्होंने मतलब एक पब्लिक अपॉलोजी करी कि कोई बात नहीं, हमसे कई बार गड़बड़ हो जाती है, पंडित बड़े गुलाम अली साहब ने भी कहा है अगर आपका भाव सही है तो सुर की इधर उधर गलती चलती रहती है, इट्स ओके. मुझे आप लोगों से ये सवाल करना है कि अगर आपकी फीलिंग है, भाव है, तो सुर की गलती चलेगी? डू यू थिंक ऑटो ट्यून एंड दिस बेसिक सुर की गलती इज एक्सेप्टेबल फॉर समबडी हु इज एज फेमस एंड मेकिंग सो मच मनी बाय सिंगिंग बॉलीवुड ट्यून्स एंड एवरीथिंग? डू यू थिंक इट्स फेयर टू पीपल लाइक देम एंड देन यू नो मिंटिंग ऑफ ऑफ इट? और हमें दूसरे सिंगर्स को चांस देना चाहिए who have been doing this for a long, long, long, long time and do not get the break because maybe they are not married to a famous composer or something like that. What do you think? You know, if you have an opinion on that, call me. We'll put you on air. आपको लगता है भाव ज़्यादा ज़रूरी है कि सुर ज़्यादा ज़रूरी है? आप मुझे कॉल करिए, बताइए एंड वी विल हैव अ डिस्कशन. अनटिल देन आप ये गाना इन्जॉय करिए. ये हमारे डांसर फ्रेंड्स के लिए है, ये सुर फ्रेंड्स के लिए नहीं है. वैसे सुर फ्रेंड्स के लिए भी हो सकता है, बट अगर आप पैरों में घुंघरू डाल रहे हैं तो ये घुंघरू के साथ डांस करिए ऑन दिस घुंघरू ट्यून.

एनीवेज लेट्स चेंज द टॉपिक. आई गेस किसी के पास ओपिनियंस नहीं है सूर्या भाव को लेकर. कोई बात नहीं, आपके पास आई एम श्योर और कुछ और लेकर ओपिनियंस होंगे तो हम आएंगे. लेकिन लेकिन जाने से पहले आई एम गोना शेयर विद यू समथिंग रियली फनी आई सॉ ऑन द इंटरनेट टुडे. आई वाज जस्ट यू नो डूम स्क्रोलिंग एज वी ऑल डू एंड देन आई केम अक्रॉस दिस रियली फनी वीडियो ऑफ दिस काउ. ठीक है, आई एम नॉट किडिंग, इट इज रियली अबाउट अ काउ. इट्स अबाउट गैया, गाय माता हमारी. गाय हमारी माता है लेकिन हमें सब कुछ आता है. ठीक है, हम वो नहीं बोलेंगे हमें कुछ नहीं आता है, हमें सब कुछ आता है यहाँ पे. ठीक है, क्योंकि हमारे पास चैट जीपीटी है, तो अगर कुछ नहीं भी आता है तो हम उसको चैट जीपीटी में डाल के हम सर्च कर सकते हैं, है ना. तो दिस थिंग वॉज सो फनी. आई सॉ दिस ऑन दिस इंस्टाग्राम पेज कॉल्ड

0: अगर आपको नहीं पता वो कौन सा गाना था, उसका नाम था गैया कहाँ, फ्रॉम द मूवी होली काउ, एंड इट फीचर्स नवाजुद्दीन सिद्दीकी, संजय मिश्रा एंड तिग्मांशु धूलिया. ओके, आई थिंक आई हैव सीन दिस मूवी जिसमें उस बंदे की गाय गायब हो जाती है एंड द होल स्टोरी. यू नो आई लाइक दीज ऑफ बीट बॉलीवुड मूवीज, ये थोड़ी ना अनपॉपुलर सी होती है लेकिन उनकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है. गाय खो जाना इंडिया में तो भाई बहुत बड़ी बात है, मेरी गाय गायब हो गई, मतलब यू नो तभी वो उस पर स्टैम्प वगैरह करके रखते हैं ताकि गाय गायब ना हो. एनीवेज, हम गायों के बारे में बात नहीं करेंगे. हम बात करेंगे, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, तो अभी हम थोड़ी सी अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, व्हाट्स हैपनिंग इन डैलस एंड अराउंड. बट आफ्टर दैट फ्रॉम 8:30 we're going to have this really fun segment where we are going to talk about love and relationships and PR and the dating culture here in Dallas, because I have first-hand experience of that and I'm telling you, it is not fun, you guys. अगर आपको कोई मिल गया है अभी तक, कोई मिल गया, then very good, congratulations. But अगर आपको नहीं मिला है तो all the best. मेरे को भी बोल देना all the best, ठीक है? Because I'm telling you, it is not easy, okay? But that being said, that comes after 8:30 and we're going to do that all the way till 10 o'clock, till the end of my show. But until then, I today want to talk about, you know, Diljit's concert. That was so big, by the way, right? Did you guys go for Diljit's concert, which happened like a few weeks ago? And it was so big at the American Airlines Center. I didn't go for the concert this time. I think May 16th ko hua tha na? Haan, kareeban 10 din pehle, theek hai? तो इस बार तो मैं उस कॉन्सर्ट में नहीं गई, लेकिन दो साल पहले व्हेन ही हैड कम, आई हैड द प्रिविलेज ऑफ गेटिंग एक्सेस टू सम रियली कूल सीट्स फॉर फ्री, इफ आई मे से सो, फॉर दैट कॉन्सर्ट, बिकॉज माय फ्रेंड एक्चुअली प्लेज इन दिलजीत्स बैंड, ही प्लेज बेस गिटार इन दिलजीत्स बैंड, एंड आई गॉट टू गो एंड सिट इन द फ्रंट, यू नो, एंड देन समबडी आस्क मी because I was waving to my friend audience में से, और वो stage पर खड़े होकर ना ऐसे wave कर रहा था, तो मेरे क्या बोलते हैं, what do you call this, मेरे पीछे जो audience थे वो कहते हैं आप जानते हो उनको, मैंने कहा हाँ वो मेरा friend है, वो है बजा रहा है stage पर, guitar बजा रहा है, all that. कहते हैं अच्छा after party कहाँ है, मैंने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं तो घर जाके सोने वाली हूँ, but I don't know where the after party is, but I knew where he was staying at the Radisson, I think. तो मैंने कहा Radisson में रह रहे हैं, अब वहाँ चले आओ, वहाँ पे भी वहीं पे शायद दिलजीत भी रह रहा है, so if you want an autograph or something, maybe you can go and wait there and you might get a glimpse. So anyways, अभी तो नहीं है, जो भी है, but the reason I'm bringing that up today is because his recent show, not in Dallas actually, in Madison Square Garden, came in the news. You know, all I've been seeing for the last 2 days is Diljit's achievement in Madison Square Garden, because he has become the first Indian artist to headline a show at Madison Square Garden. You know what a big achievement that is? You know, that stadium is huge. It's massive. Aur aaj se pehle किसी भी इंडियन आर्टिस्ट ने उसको हेडलाइन नहीं किया. यस, इट हैज फीचर्ड अदर इंडियन आर्टिस्ट हु हैव बीन अ पार्ट ऑफ अ बिगर कोलैबोरेशन विद अदर आर्टिस्ट एंड एवरीथिंग. एआर रहमान हैज बीन देयर, अमिताभ बच्चन हैज बीन देयर एंड ऑल दैट, बट ही इज द फर्स्ट गाय टू एक्चुअली हेडलाइन इट. दैट मीन्स उसका अपना कॉन्सर्ट, खुद का कॉन्सर्ट, विच मीन्स ही इज हैड अदर ओपनिंग एक्ट्स, मतलब कोई छोटे छोटे आर्टिस्ट ने ओपन किया है उनके लिए, बट मेन कॉन्सर्ट उनका जो था, ही इज द फर्स्ट वन टू डू इट, एंड ही सोल्ड आउट. यू गाइज, ऑल द टिकट्स वर सोल्ड आउट. यू नो व्हाट अ बिग अचीवमेंट दैट इज, इट इज मैसिव, इट इज ह्यूज, इट इज जाइनॉर्मस, एंड दिस काइंड ऑफ न्यूज डजंट कम अक्रॉस. आई मीन दिस इज इन अमेरिका यू गाइज, इट्स नॉट इन इंडिया, इट्स हैपनिंग इन अमेरिका. सो आई थिंक दैट्स लाइक अ रियली बिग थिंग. Other than Diljit, who are some artists that who have actually played at the Madison Square Garden? I'm going to give you some facts right now, okay? Amitabh Bachchan performed in the 1980s. He was basically the first Indian. No, not the first Indian, actually. He was in the 1980s. Before that, there were some other people also. Who was before that? Pandit Ravi Shankar performed there in 1971. where they had done like a fundraising concert for Bangladesh, because you know, if you guys know, Bangladesh East Pakistan wala war jo tha, that was in 1971, and there was a concert which was being organized, and Pandit Ravi Shankar performed with the Beatles, iconic band, in 1971. That concert also featured Pandit Ali Akbar Khan. And apart from that, guess what? Who else has had a sold-out show? Zakir Khan, the comedian. He is the first Indian comedian who headlined in 2025. Now, technically, Diljit is the first musician artist, and we don't really put comedians in the same category as music artists, and they're not, I don't know, but I feel like they should share the thing over there, okay? But, you know, I think it's still a pretty solid achievement. What do you guys think? Enough of Diljit ki facts. Aap ye Diljit ka gaana suniye, and then we'll come back and then we'll have some more fun.
1: Thuri.
0: This is his new song, by the way. It's called Morni, and he also did a little segment on Jimmy Fallon show, and we where he played this, and it was absolutely amazing.
2: Even me.
1: Aurat.
3: Woman. Is a very well. What is this, though? What are the thing? Are you message anything? In this matter, 8 meter depth.
1: Sir, you're not making any sense.
0: Oh. LOL, you guys. We're going to skip the dialogues and go straight into the song.

0: जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइजर वे, स्वीट 205, फ्रिस्को।
2: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस।
1: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड PGPT। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
3: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
4: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
1: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
2: इतना सब और प्राइस?
1: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
5: मैं ही तो।
6: Achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
7: Tune sunte hi brand click kar gaya na? Just like that. When it comes to taxes, only one name pops up, AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
8: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
9: Calculating Out, rerouting, rerouting.
8: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
9: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ।
8: क्यों?
9: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत, फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ।
8: अच्छा तो सीधा वही ले चलो,
10: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
9: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
11: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो, बस सब अटक सा जाता है। पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं, आपकी एनर्जी में है, और उसका एक ही समाधान, कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 8 6 8 2 3 4 6 4 6 1 1 और विजिट masterjoshiram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाए।
12: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली ऑन रिसर्च में बेस्ड।
13: सफर खूबसूरत है मंजिल से भी।
14: अरे भाई वही तो नहीं होता, हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट।
15: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन। चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर, लॉसिन ट्रैवल। फॉर नियरली 30 years, लॉसिन ट्रैवल हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज प्लान स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स विद द बेस्ट एयरफेयर्स, वेकेशन पैकेजेस, क्रूजेस एंड कस्टमाइज्ड ट्रैवल सॉल्यूशंस। लॉसिन ट्रैवल मेक्स एवरी जर्नी स्मूथ, अफोर्डेबल एंड टेंशन फ्री। कॉल नाउ 214-631-2458 or visit lawsontravel.com.
16: Chicken banana.
17: Chicken banana?
18: Bro, banana nahi, banana.
8: मतलब मेक द चिकन राइट.
10: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
0: Hi, I'm Abhishek Bachchan and you're listening to Funasia Radio. Thank you all the listeners for always being there watching our films. Thank you Funasia Radio for spreading the word.
5: हेलो एंड वी आर बैक. एंड हु एम आई, बोले तो कौन बोला ये. दिस इज इपी द हिपी, द न्यूएस्ट बैडी ऑन फनेशिया रेडियो 104.9 FM. एंड आई एम गोइंग टू बी हियर हर मंडे से थर्सडे तक, हर हफ्ते, जब तक कोई और नहीं आ जाता. मतलब मुझे नहीं पता कोई और आएगा कि नहीं, बट अभी के लिए तो मैं ही हूँ, तो आपको मेरी आवाज़ झेलनी पड़ेगी. एंड आई विल बी हियर एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 7 to 10 PM ऑन माई शो. दिस इज कॉल्ड एन इवनिंग इन डैलस. वैसे जिन्होंने पहले पूछा था या नहीं भी पूछा था, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, आई एम एक्चुअली ए फुल टाइम म्यूजिशियन एंड आई हैव दिस लाइक ब्यूटिफुल बैंड एंड वी प्ले लाइक रियली रियली ऑसम म्यूजिक, लाइव म्यूजिक, नॉट विद अ कैरियोके ट्रैक यू गाइस, लाइव म्यूजिक विद रियल म्यूजिशियंस एंड इट इज कॉल्ड द डैलस बॉलीवुड प्रोजेक्ट. और अगर आपको हमें हायर करना है फॉर ऑल योर इवेंट्स एंड स्टफ, प्लीज डू गिव मी अ कॉल एंड देन वी लेट अस एंटरटेन यू एंड प्ले सम इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल सॉन्ग्स. एनीवेज, हमारा नया सेगमेंट, नॉट नया सॉरी, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो है, इट इज़ फॉर ग्रोन अप्स, ओके, बिकॉज वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट डेटिंग लाइफ एंड डेटिंग एप्स एंड सिंगल पीपल स्टोरीज एंड फर्स्ट डेट इक्स एंड लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स. तो अगर आप बच्चे हैं या फिर अगर आप पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के साथ सुन रहे हैं एंड इफ़ यू थिंक इट माइट बी टू स्कैंडलस फॉर योर चिल्ड्रन, वेल दिस इज़ द टाइम. 8:30 बज चुके हैं, उनके सोने का टाइम हो चुका है, वह है ना. तो अरे, और अगर आई मीन वैसे उतना भी कुछ खराब नहीं बोलूँगी, दे हैव टू बी अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द रियल वर्ल्ड. तो अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज स्टिक अराउंड. और अगर नहीं आपको लगता है कि हमारे बच्चों के कान खराब हो जाएंगे, तो भाई दिस इज द टाइम वेयर यू नो यू शुड मूव ऑन बिकॉज दिस इज माई सेगमेंट. आई एम द लव गुरु. व्हाट मेक्स मी द लव गुरु? वेल, आई हैव नेविगेटेड दिस फील्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आई एम स्टिल काइंड ऑफ नेविगेटिंग इट. तो इसीलिए हम अपनी एक्सपीरियंस से एडवाइस शेयर कर रहे हैं. आप भी अपनी एक्सपीरियंस से अपने एडवाइस शेयर करिए, ठीक है. और अगर आपको कोई सवाल है कि कोई बंदी है जो आपके दिल में गिटार बजा रही है या आपके दिल को धक धक धक धक कर रही है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इसको अप्रोच करें, या फिर जैसे कुछ दिनों पहले हमारे पास एक मिस्टर भाटिया की स्टोरी आई थी जो फाइनली आई थिंक करीबन 15 साल के बाद दोबारा किक स्टार्ट हो गई है, गियर में दोबारा आ गई है, क्योंकि 15 साल पहले जब उनकी स्टोरी थी वो हाई स्कूल में ख़त्म हो गई थी, लेकिन दोबारा से वो शुरू होने वाली है. तो हमने उनको ऑल द बेस्ट शेस्ट बोला. हमने बोला भाई जाओ, गो गेट दैट गर्ल मैन, ओके. तो अगर वैसी भी कोई स्टोरीज है ज़रूर आके शेयर करिए, ओके. एंड देन वी डोंट हैव टू पुट यू ऑन एयर, यू कैन टेल मी. I will listen to it in secret and then we can share it with the world and we'll change your name also. If you are a little self-conscious like that, ki nahi bhai, bahut embarrassing ho jayega, hum radio pe nahi bolenge, bhai किसी को नहीं पता कौन है आप, आपकी शक्ल तो दिख नहीं रही है, तो बोल दो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, नाम मत बताना. हम आपने अपने आप को मिस्टर एक्स बना देना या मिस्टर बिग बना देना, हम आपकी गर्लफ्रेंड को बना देंगे कैरी एंड देन वी विल मेक अनदर स्टोरी, ओके. एनीवेज, दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय टेक्सास प्राइमरी केयर. For 13 years, Texas Primary Care Clinic has proudly cared for our community, now growing with a brand new name and a second Frisco location. Introducing Lenoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Lenoxy Medical brings primary care, urgent care, in-house lab testing, x-rays, CT scans, cardiac diagnostics, oh my God, so many things, and Himalayan Med Spa services all under one roof. Stop. Really? That's so cool, right? Open 7 days a week from 8 AM to 8 PM. 12 hours, you guys. Kabhi to time nikal ke jao. Walk in anytime. No appointment needed. Anyways, that being said, this is the time for Love Guru. Da da da da da. I should play some background music over here, but it's okay. उसमें time लगेगा तो हम उसको भी skip करेंगे. Next week से वो try करेंगे, ठीक है? Today we are talking about some of the weirdest, absolutely ridiculous, crazy, wild, and weirdest first date icks. मतलब first date पे आपको कोई ऐसी experience हुई है जो विच बेसिकली जस्ट थ्रू यू ऑफ कम्प्लीटली ऑफ योर गेम एंड देन यू आर लाइक ब्रो आई डोंट वॉन्ट सी दिस पर्सन एवर अगेन इन माई लाइफ. कुछ भी हो जाए जिंदगी में मैं इस पर्सन के साथ ना कॉफ़ी पीऊँगी ना डिनर करूँगा या करूँगी जो भी है कुछ भी हो जाए मेरे को बात भी नहीं करनी ब्लॉक करके डिलीट नंबर एब्सोल्युटली. ओके कम ऑन टेल मी यू कैन कॉल मी एट 972-235-5555. Okay, I found this like really incredible Reddit thread where I found all this, so I have to share it with you guys. If you relate to it, great. If not, that's okay. Sometimes, you know, when you're swiping on the dating apps, because you know the world has become like this ki we don't meet people organically anymore. For someone like me who is behind a microphone or behind a screen, okay, for 3 hours of this prime time evening, okay, jab log, you know, bahar jaate hain, they're going to the bars, you know, hanging out with their friends or whatever, to meet new people, I am sitting here entertaining you guys, okay, to mujhe toh aise koi log milte nahi hai. Dusri baat, my other job, which is to be an entertainer, and I also teach, by the way, which I work with children most of all. I teach music, I play guitar, piano, I play a little drums also. And then I sing. So I do, basically I wear a lot of hats, okay? And I'm pretty good at it. Anyways, this is not my self-promotion. So I'm just saying ki because I work in these distinct fields, the only people I actually get to interact with on a regular basis are either children or parents of children, okay? Or I get to be like a performer and people are already overwhelmed ki there's a person standing on stage and singing. They don't want to approach that because it's a little overwhelming, you know. I mean, I get it. Or I'm behind the radio, so I don't really get to meet a lot of people, okay? So when it's someone like me, and I know a lot of people here are overworking basically. Everybody's, you know, spending hours and hours on their job and everything. Then you are basically forced to swipe left and right because there is no other way to meet people of your age. Ya to aap kisi ko apne office mein date kar lo, which nowadays is kind of frowned upon, or you meet someone in college which you must have met a long time ago. Ya fir I don't know, where are you guys even meeting people anyway? So people are basically forced to go on dating apps because there is literally no other option. I mean, arranged marriage kya tha? That was purane zamane ka dating app. Bas aapke parents aapka kara dete the dating app pe swipe. Ab yahan pe aap khud kar rahe ho swipe, you know. Jeevan Sathi, Shaadi.com, pata nahi kitne saalon se chal raha hai. 10-20 saalon se chal raha hai. Wo kuch nayi baat hai nahi. Yahan pe bhi online dating bahut saalon se chal raha hai. You know, 90s ke zamane se chal raha hai. Apps ka zamana to abhi aaya hai, where it's become a little more open. But people have been using this for a long time. So, anyways. These are some of the weirdest first date ics. I came across this thread on Reddit, okay? So, this guy, he writes, okay, I met this girl on a first date, and on the first date, look at the entitlement, you guys, okay? Like, just listen. She asked for $500 for rent. Oh my God, on a first date, she just said, give me $500 for rent money. And I mean, I don't know what that sounds like, but it sounds kind of wrong. It sounds wrong in a lot of places. Aur kai baar hum na samajh nahi aate hain, ek hot si ladki ki photo dekhte hain dating app pe to hame lagta hai wow, this girl is interested in me, wow. To kai baar ye bhi sochna padta hai aapko ki why is this person interested in me, matlab usne mere andar kya dekh liya. Maybe shayad usne aapka wallet imagine kar liya hoga apne dimag mein ki aap unko $500 aise slip kar doge niche se to uska fayda ho jayega. And this next one more, this is not from the Reddit thread by the way, this is one of my guy friends, uska naam nahi main bolungi, he's a Bengali dude, but he actually shared this story with me. And I have to tell you, I was shocked to my core, okay? So he met this girl on a dating app. She was not Indian. He's Bengali, he's Indian. And she was not Indian. ठीक है? Dallas की बात है. And then they swiped and they met for drinks at a bar. And then they were like, okay, I mean, the chemistry was nice. They were hanging out, blah, blah, blah. And then, you know, धीरे धीरे रात होती गई. And one thing led to another. So this girl said, do you want to come to my house? And so he said, sure. So this girl took this guy home. अपने घर ले गई. And then he realized कि दूसरे कमरे में तो लड़की की मम्मी है. तो मैंने मेरे दिमाग में ये चल रहा, मैंने कहा व्हाट, व्हाई इज शी कॉलिंग यू टू हर हाउस व्हेन हर मॉम इज इन द अदर रूम, दैट इज सो रॉन्ग. एंड ही इज लाइक आई डोंट नो, आई डिडंट रियलाइज. फिर उसकी मम्मी ने बोला मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए पैक बना के देती हूँ. तो मैंने बोला अच्छा, मे बी उसके इंटेंशंस काफ़ी क्लीन होंगे, ऐसे नहीं होगा. ठीक है, तो खाना वाना खाया उसने, कहता है हाँ ठीक है. और वो लड़की जो थी हिस्पैनिक लड़की थी, तो उसने बंदे ने खाना वाना खाया, खा पी के उसके बाद मम्मी कहती है ओके आई एम गोइंग टू स्लीप नाउ. ठीक है, मम्मी चली गई अपने कमरे में खाने पीने. एंड देन दिस गर्ल एंड दिस गाय आर इन द लिविंग रूम एंड दे आर कनूडलिंग, यू नो, वन थिंग इज लीडिंग टू अनदर, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे ऐसे करते करते रात खत्म ही हो गई ऑलमोस्ट. फिर वो बंदा कहता है अच्छा नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू गो. और जाते हुए वो बंदी कहती है ओके या दैट इज लाइक $1,000. एंड दिस गाय वॉज लाइक एक्सक्यूज मी वट. She's like, yeah, you came to my house and you spent time and you ate my food also. So that would be $1,000. And he's like, dude, I did not sign up. I thought we met on a dating app. What is this? I did not sign up for this at all. She's like, no, but now you have to pay. And somehow, उसके जेब में I think $500 या पता नहीं कितने थे, उसने जितने भी पैसे थे उसके जेब में उसको दे के वो भागा वहाँ से. Because he was like, dude, I got caught in this thing. And it was so risque and blah, blah, blah. Anyways, so guys, be careful out there. You don't know what's happening, okay? Be really, really careful because I know everyone is swiping left, right and center. Be careful. Just do your background checks when you do that. Anyways, when you come back, we're going to read some more juicy stories. If you have a juicy story like this and you want to share, either yours or your friends, I don't really care. Just share it. Call me on 972-235-5555. And then we will share it online. We can put you on air, but if you don't want to be on air, you can just tell me. And I will, you know, I'm a vault like that. I'm a vault. Ye jo mere andar jo baat jaati hai, wo bahar nahi nikalti hai. Theek hai? So we're going to keep it secret. Maybe share it with the audience, but we won't tell your name. Okay? Anyways, enjoy the song.

लड़की तो भाई खंबे जैसी खड़ी होगी, तो शी मस्ट बी लुकिंग लाइक सुपर हॉट एंड इलेक्ट्रिफाइंग यू गाइस. उसी से याद आया, माय नेक्स्ट रेडिट थ्रेड, उसी उसी रेडिट थ्रेड में एक नेक्स्ट स्टोरी. एक्चुअली इसके पहले मैं उस स्टोरी में जाऊं, आई वाज जस्ट गेटिंग अ कॉल फ्रॉम समवन एंड वो गाना शुरू हो गया तो उन्होंने कॉल काट दिया. लेकिन अगर आप मुझे दोबारा कॉल बैक करेंगे, सो आई विल पुट यू ऑन एयर एंड देन वी कैन टॉक अबाउट योर हॉरर फर्स्ट डेट स्टोरी. यस, इट इज अ फर्स्ट डेट स्टोरी. ओके, आई मीन इट कुड बी अ सेकेंड डेट स्टोरी टू. मे बी द फर्स्ट डेट वॉज रियली सेफ एंड द सेकेंड डेट वॉज लाइक समथिंग सुपर रिस्के. बट एनी वेज, कॉल मी बैक इफ यू हैव अ स्टोरी लाइक दैट टू शेयर. हे गाइज, देर इज नो शेम, वी ऑल गो थ्रू सम स्टफ, यू नो. समटाइम्स इट्स आउट ऑफ योर कंट्रोल, समटाइम्स यू

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
3: ओह हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
6: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
7: सब कुछ साफ रख सकते हो,
8: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती, कोई नहीं सोचता मेरे बारे में।
9: क्योंकि ये कौन बोला?
8: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पॉलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
10: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 972-877-2500।
11: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
12: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
13: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
14: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
13: क्या मतलब?
14: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
13: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
14: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
13: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
15: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
16: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
17: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
16: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
17: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 945-527-0897 और विजिट astrologerishwar.com.
18: Are you looking to own a global restaurant brand? Jai Bhavani, an established brand from India, born in Gujarat, is expanding across Texas. We hold the exclusive franchise rights for Texas and are inviting motivated entrepreneurs to join us in partnership with a leading hospitality group. Call Sunil at 469-468-6021 or Lee at 214-576-6439.
19: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.
2: And we are back. You're listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. And my name is Ippy the Hippie. Thank you for joining in tonight on a Wednesday night. आप क्या कर रहे हैं? ऑफिस से वापस आ रहे हैं या फर्स्ट डेट से वापस आ रहे हैं या डिनर करके वापस आ रहे हैं? मुझे तो नहीं पता आप कहाँ से आ रहे हैं, बट मे बी यू कैन कॉल मी एंड टेल मी एंड यू नो वी कैन हैव सम फन ऑन एयर ओवर हियर. वी कैन टॉक, वी कैन हैव अ कन्वर्सेशन, वी कैन चिट चैट अ लिटिल बिट. एनीवेज, मूविंग ऑन. Before we move on to the next part, this part of the show is brought to you by AG Fintechs. Yes. Are you like an independent contractor or a self-employed person or something? I know people who are W-2 employees, you know, it's taxes are a lot easier because, you know, aapke wo taxes cut jate hain aapke salary mein se and everything. But when you're a self-employed person like me, saal ke end mein itne sare paise bharne padte hain tax mein. Aisa lagta hai pure saal ki jitni bhi savings kari hai, wo sare mere tax mein hi ud gaye sare. ऐसा लगता है कई बार. वैसे थैंकफुली नहीं हुआ, बट बिकॉज आई प्लान इन एडवांस. बट एनीवेज, यू नो व्हाई आई प्लान इन एडवांस? बिकॉज आई हैड ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट टू गाइड मी थ्रू ऑल ऑफ दैट. दैट्स राइट गाइज, यू नीड टू कॉल एजी फिनटेक्स इफ यू नीड मोर हेल्प विद स्टफ लाइक दैट. दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म्स इन द US. They offer innovative financial services with untapped potential for both individuals and businesses. They are trusted, efficient, and get you ready for the future. Call 469-942-9888 or visit agfintechs.com. That's right, agfintechs.com, okay? So, and we are back. Let's talk a little bit. Who am I? Main kaun hu? Kaun hu main? Kahan se aayi hu? Blah, blah, blah. Yes, I'm the OG baddie of Fun Asia. I have unapologetic opinions. And we talk about things that are current and relevant and basically affect most of us. And things that are kind of funny on the gram, on TikTok, blah, blah, blah. And stuff that's kind of entertaining, you know, because I'm not going to tell you news. You can find news all by yourself, or you can log in, or you can tune into Fun Asia Radio in the morning. And then we have a whole 3 hours of news. If you have news, then you can listen to the radio in the morning. So, you can listen to the radio in the morning. Okay? We will do the fun things. Anyways, I am Ippy the Hippie, and this is my show. An evening in Dallas, ding-a-ding-a, ding-a-ding-a. And today we are talking about dating life. We're talking about first date horror stories. And while you guys were listening to the song earlier, Emotional Atyachar, hey, hey, hey, I got this really interesting call from, we're not going to say the name of the person because, you know what, we respect people's privacy and that's okay. We don't need to say people's names. Sometimes people want to just share their stories and their opinions and they don't want to be, you know, identified with it, and that's okay. You don't have to tell us your name, or you can tell me your name, but you don't. We don't have to put you on air because why not? Okay. Actually, not why not, because, you know, it's your choice. So absolutely, we respect that. Anyways, so Mr., we'll call you Mr. G. How about that? Mr. G? Mr. G said, मैं थोड़ा बैठ जाती हूँ क्योंकि मेरे पैर थक गए खड़े होके. तो Mr. G said कि he had two opinions and he had two ideas. The first one was related, of course, to the dating situation. And he said, पहली बात तो आपने जो last story जो मैंने सुनाई वो लड़की की, that they were sitting in Lowe's parking lot and eating Chick-fil-A. पहली बात तो वो लड़की उसकी गाड़ी में बैठी क्यों? आज के जमाने में कोई लड़की किसी बंदे के गाड़ी में first date पे ऐसे बैठती क्यों है? You know, लड़कों के intentions हमें पता ही होते हैं, हमेशा खराब है. वैसे I'd like to give guys the benefit of doubt कि सारे लड़के ऐसे नहीं होते यार. I mean, I have a lot of guy friends and some of them are absolutely stellar people. But मेरे सारे जो guy friends हैं वो सारे मुझे यही बोलते हैं कि भाई हम सब लड़के एक जैसे होते हैं. मेरे को, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मेरे इतने सारे guy friends हैं और सब मुझे यही बोलते हैं कि भाई हम लड़के सारे ऐसे ही होते हैं, हमारा दिमाग एक ही जगह पर चलता है. और ये मैंने नहीं बोला, ये उन्होंने खुद बोला है, बाय द वे, जस्ट सो यू नो. तो मतलब उसके बाद मैंने थोड़ा एनालाइज किया, मैंने कहा अच्छा अब तुम ऐसे बोल रहे हो तो शायद ऐसे ही होता होगा. तो
7: तो मिस्टर जी ने बोला कि वो पहले बात तो उसकी गाड़ी में बैठने क्यों गई अकेले, ठीक है, अब ही गॉट हैंजी, तो इन अ वे इट्स काइंड ऑफ हर फॉल्ट, राइट, एंड व्हाई डिड शी, ओके वी हैव अ कॉलर, लेट्स टेक द कॉल एंड देन देन वी विल कम बैक एंड फिनिश द रेस्ट ऑफ द स्टोरी. Hi, you're on air. Thank you for calling.
20: Yeah, hi.
7: Hi. You're on air, just so you know. You don't have to tell me your name, by the way.
20: Sure. Well, I've been a Phonasia listener for quite a few years.
7: Okay.
20: And I'm visiting from California.
7: Ooh, okay. So, wow, nice. Thank you for listening.
20: Sure. Well, it's a Dallas. It's a growing community, Indian community, so it's fun to listen to a radio station.
7: Absolutely.
20: With with the live talk. So,
7: yeah,
20: thank you for that.
7: Of course. So, आपने किस चीज के लिए कॉल किया, and how can we help you today? What would you like to share? We are right now sharing first date horror stories. Do you have anything to share?
20: No, actually, I've never dated. So,
7: no, really.
20: Yeah, I mean, so, you know, my college days, it was just studies, and then it's all work, and then it's arranged marriage, so no date.
7: See, you're already taken. Of course, you are not on the dating scene. I mean, you're already taken. You are one of the lucky people who found their partners. And by the way, can you turn the radio volume down in the background? I'm actually hearing my own voice peechhe se. So, aap thoda apna
20: the radio was off.
7: Oh, radio was off? Pata nahi, I don't know.
20: Radio was off. I've just put you on speaker, so
7: But okay, so how can we help you today? Are you enjoying the show? What would you like to share today?
20: Yeah, I mean, I'm enjoying this show, so yeah, for sure.
7: Do you have a request? Yeah, no, go ahead. You were saying something.
20: No. So the topic that you had, right? You know, mm-hmm. I mean, girls has to means everyone has to be careful, and they need to know. You know, they have to be just, you know, careful mm-hmm. with the world out there, and you know,
7: yeah,
20: be safe. I would say, you know,
7: exactly. But, and I think that goes for both girls and guys.
20: Yeah,
7: everyone has to
20: it
7: be
20: is,
7: safe.
20: Yes, yes. Stick to your instinct and be careful.
7: Exactly.
20: That's all I can say.
7: Yes, trust your intuition, guys.
20: It is yes.
7: Exactly. All right. Well, thank you for calling.
20: Sure. All right. Thank you.
7: Bye. Well, that's right, you guys. I think that was really important. Trust your intuition. Intuition is very, very important. Maybe this... Anyways, the reason... I'll finish the story that I had started off earlier. So, Mr. G, jo hai, उन्होंने मुझे कॉल किया वाइल वी वर लिसनिंग टू इमोशनल अत्याचार. और वो कह रहे थे कि देखो भाई, शी शुड हैव हैड सम इंट्यूशन एज वेल, जिसकी बात हम कर रहे हैं अभी, कि यू नो शी शुड नो बेटर कि किसी बंदे के साथ आप अकेले गाड़ी में नहीं बैठो, ऑन अ फर्स्ट डेट तो नहीं बैठो. तो मैंने सोचा कि भाई कई बार यू नो वी गर्ल्स ऑल्सो थिंक, यू नो वी आर काइंड ऑफ थिंकिंग कि हाई व्हाट अ जेंटलमैन, ही इज पिकिंग मी अप फॉर माय डेट, हाउ नाइस, सो स्वीट ऑफ हिम. एंड ऑनेस्टली आई हैव गॉन ऑन डेट्स वेयर पीपल हैव पिक्ड मी अप. थैंकफुली नथिंग वाइल्ड हैज हैपेंड, नथिंग लाइक दैट हैज हैपेंड टू मी. बट आई हैव बीन, आई गेस आई जस्ट गॉट लकी लाइक दैट. बट she probably did not get lucky, and he got really handsy with her, and then he tried to like run her over with his car. That was kind of risky, right? So he says that usko nahi baithna chahiye tha uski gaadi mein. Yeah, I would say aap apni intuition ko trust karo. Agar aapko lag raha hai ki bande mein kuch red flags hain, kuch doubt ho raha hai, to gaadi mein mat baitho kisi ke saath bhi, theek hai? Aap trust your instincts, trust your intuition, because trust me, intuition is it goes a long, long, long way. Anyways, and the second thing which Mr. G was talking about was the question that I had asked earlier about classical singers or famous singers, ki unko concert mein ya fir kisi bhi show mein is bhav more important ya sur is more important. To Mr. G said, which I also absolutely 125% agree with. I don't know why I said 125. It just seems like a nice number. But what I 125% agree with is the fact that ki agar aapko apni sur ki knowledge nahi hai, to aapko us type ke forum mein jana hi nahi chahiye. एंड यू शुड नेवर क्लेम टू बी एन एक्सपर्ट इन म्यूजिक. कॉन्सर्ट्स अलग बात है, ठीक है, कॉन्सर्ट्स तो चलो अलग बात है, पर आप किसी फोरम में टॉक दे रहे हो, आप बिना उसके बारे में जान के, बिना अपने फैक्ट्स और अपनी बैकग्राउंड सॉलिडिफाई करके, बिना अपना रिसर्च करके अगर आप जा रहे हो किसी टॉपिक के बारे में बात करने के लिए, तो गाइज यू नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल बिकॉज यू गोना गेट कॉल्ड आउट. यू नो इट्स इट विल बी एम्बैरसिंग. एंड लाइक ही सेड, ही इज एक्चुअली अ ट्रेन्ड हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर. जैसे मैंने भी अपनी ट्रेनिंग करी थी बचपन में, यू नो इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है एक्चुअली. अगर आप इंडिया में आप गाने की कोशिश कर रहे हो, इनफैक्ट यूएस में भी बहुत पॉपुलर. मेरे यहाँ पे यूएस में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बचपन में 5-6 साल कम से कम हिंदुस्तानी क्लासिकल ट्रेनिंग ली है, चाहे वो हिंदुस्तानी है या कर्नाटक क्लासिकल है या सम काइंड ऑफ अ क्लासिकल म्यूजिक ट्रेनिंग ली है सबने. तो इफ़ यू आर इन अ फील्ड लाइक दैट, देन यू मस्ट, हमारे जो टीचर्स होते हैं वो हमें स्टेज पर चढ़ने नहीं देते जब तक हमारी फाउंडेशन क्लियर ना हो जाए. अगर आपके पास फाउंडेशन नहीं है तो आप स्टेज पे मत चलो, तो नहीं तो आपका यू नो एम्बैरसिंग सिचुएशन हो जाएगा. मतलब चलते चलते हो जाएगा वैसे करके. स्टेज पे तो चलो आजकल खैर सभी चढ़ जाते हैं, यू नो कैरियोके है, इट्स जस्ट फॉर फन, इट्स एंड फॉर एंटरटेनमेंट, आई अंडरस्टैंड दैट. बट व्हेन यू आर ट्राइंग टू बी एन एक्सपर्ट एंड गो ऑन अ डिस्कशन पैनल लाइक दैट, देन आई थिंक यू नीड टू रियली नो where you're coming from, right? You need to know your roots. Anyways, that being said, let's talk a little less. Let's play you a song. This song is Bolo Bolo by one of my most favorite recent girl groups from India called Wish. They are super hot, super talented girls. They're very beautiful and they dance and sing. They are really good, you guys. Like, I mean, you know, they remind me of some desi version of Pussycat Dolls, you know, like if you know what I know, Pussycat Dolls, they were like really, really popular in the early 2000s. This is kind of like that. It's so good. So check it out. Or like, what's that Korean girl group, Blackpink? It reminds me of desi version of Blackpink. So check it out. In a

भाइयों, बहनों, दोस्तों, साथियों, सहेलियों, कहाँ हैं आप सब लोग? आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? मुझे वैसे कॉल्स तो काफी आई बीच में, अभी एक आधा कॉल और भी आई थी। तो एक जो कॉल आई, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात रेज करी कि दिस कॉन्सेप्ट ऑफ शुगर बेबीज एंड शुगर डैडीज, विच हैज अपेरेंटली बिकम सो सो पॉपुलर। एंड आई नो बिकॉज गाइज, आई मीन आई हैव सीन पीपल, इनफैक्ट आई हैव नोन पीपल हु आर इन टू दैट काइंड ऑफ स्टफ। देर वॉज अ गर्ल आई न्यू बैक इन माई कॉलेज डेज वन आई वॉज स्टिल स्टडिंग एट UNT यहाँ पे। तो वो बंदी, शी वॉज लाइक 22, अभी हम नाम नहीं लेंगे किसी का, वो मेरी फ्रेंड की फ्रेंड थी, ठीक है? वेरी ब्यूटिफुल गर्ल, वेरी फिट, वेरी हॉट, वेरी अट्रैक्टिव, शी कुड गेट एनी गाय बेसिकली। बट वो ढूंढ ढूंढ के, वो मतलब आई वॉज, सी वेन आई केम टू UNT आई वॉज ऑलरेडी इन माई 30s एंड आई हैड नो आइडिया बिकॉज अंटिल देन आई हैड ऑलवेज बिन इन लाइक सीरियस रिलेशनशिप्स एंड ऑल दैट। तो मुझे ये सब शुगर बेबी वगैरह का कॉन्सेप्ट पता ही नहीं था। आई डेंट इवन नो देर वॉज अ वर्ड लाइक दैट। बट देर वॉज दिस गर्ल हु वॉज अ फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड्स एंड शी अपेरेंटली टोल्ड मी दैट शी वॉज 22 एंड आई वॉज 30 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड वन डे वी वर जस्ट हैंगिंग आउट जस्ट लाइक गर्ल फ्रेंड्स और वट एवर। तो वो कहती है, या आई ओनली डेट गाइज हु आर एटलीस्ट 20 years ओल्डर देन मी। एंड आई वॉज लाइक, रियली? डोंट यू फाइंड इट वियर्ड? यू आर लाइक 22 एंड यू वांट टू डेट गाइज हु आर लाइक 42 और 45? दैट एज गैप इज क्वाइट अ बिट, यू नो। आई मीन आई अंडरस्टैंड इन हॉलीवुड एंड लाइक इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इट्स वेरी पॉपुलर बिकॉज यू नो यू गो थ्रू, यू बिकम मच्योर एट अ वेरी यंग एज बिकॉज ऑफ ऑल द एक्सपीरियंसिस दैट यू गेट। बट यू आर स्टिल इन कॉलेज, लाइक सो व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर? शी इज लाइक, ओ इट्स बिकॉज दे ऑल हैव मनी। एंड दिस पॉइंट वॉज ऑल्सो ब्रॉट up recently in a call that I had with Mr. G. I was talking about him earlier. He also said that, or was it someone else? I don't remember. I got a call. I'm not going to say who called up because मुझे अभी याद नहीं है। मुझे इतनी सारी calls आई, मुझे किसने क्या बोला, किसका कौन सा नाम है वो मुझे नहीं याद। But the content of that message was कि आजकल लड़कियां भी इतनी सीधी नहीं है, मतलब आप किसी को डेट पे लेकर जाओ। एंड ही हैड एन एक्सपीरियंस लाइक दैट बेसिकली। आप किसी भी लड़की को डेट पे लेके जाओ, सबसे पहली चीज वो बोलती है, यू आर पेइंग फॉर एवरीथिंग, यू आर पेइंग फॉर द ड्रिंक्स, यू आर पेइंग फॉर द फूड, एंड दे विल पिक द फैंसीएस्ट ऑफ रेस्टोरेंट्स। आई हैव अ फ्रेंड, आई एम नॉट गोना से हिज नेम, बट पुअर गाय, ही ऑल्सो हैड टू डील विद दैट। ही हैज नेवर मेट दिस गर्ल, दे वेंट ऑन अ फर्स्ट डेट and this girl picks the most fanciest restaurant in downtown Dallas and it's called the Henry's or something. The food wasn't even great by the way there. And he was like, he goes like, ki yaar pata nahi wo itni mehengi jagah pe kyun choose kar rahi hai, it's a first date, it should be casual meetup, like easy going, like a coffee or something or whatever. Theek hai, I understand the girls also from this perspective ki theek hai, it doesn't show the right intentions if you wanna, if the guy is cheap then it shows the future. Maine kaha bhai future ke bare mein baad mein chhodo, pehle ek date se to bahar niklo, future ki planning baad mein karte rehna. And you can never judge a person by their first meeting. Yes, first impressions, appearance, looks, confidence, those are different things. But just because of money and all of that, I mean, I think that is too materialistic in my opinion. ठीक है, I don't judge. We listen and we don't judge. So I shall not say it. This is my opinion. You are all entitled to have your own opinions. But anyways, this other girl who was 22, she eventually told me that she doesn't even pay her own rent because she was dating like 4 guys who were over 40 at the same time. And each guy was paying for something different in her life. Somebody was paying off her rent. Somebody was paying off her car. Somebody was doing this. And I was like, oh my God, girl. Oh my God, what are you doing? Like, get a job. I mean, I don't know, you guys. It's wild out there these days. If you have found your partner, if you have found your mate, well, good for you. And if you haven't, I wish you all the very best.

यू गाइज भाई, हम 20 साल की लड़कियों के बारे में क्या बोले, बुढ़े बुढ़े भी वैसे ही होते हैं। मतलब आज की पता नहीं कलयुग आ चुका है, कभी किसी को हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। अभी मेरे पास एक कॉलर आई, ठीक है, उन्होंने एक स्टोरी शेयर करी फ्रॉम द रिटायरमेंट कम्युनिटी। ठीक है, देर वॉज अपेरेंटली दिस बुढ़ा बुढ़े अंकल, और उनको एक फ्लोरिडा से एक बुढ़ी आंटी मिल गई। तो बुढ़ी आंटी ने बोला, भाई मैं आ रही हूँ तुमसे मिलने। हाँ, तो अंकल खुश हो गए, कहते हैं अरे वाह, मेरी इस उम्र में भी मेरी गर्लफ्रेंड बनने वाली है, वाह। तो आंटी गई ऑल द वे बुढ़े अंकल से मिलने, फ्लाई करके फ्लोरिडा से दूसरे स्टेट, कौन से स्टेट वो मुझे नहीं पता, एंड दैट इज नॉट इवन

मिलने। हाँ तो अंकल खुश हो गए, कहते हैं अरे वाह मेरी इस उम्र में भी मेरी गर्लफ्रेंड बनने वाली है, वाह। तो आंटी गई ऑल द वे बुढ़े अंकल से मिलने, फ्लाई करके फ्लोरिडा से दूसरे स्टेट, कौन से स्टेट वो मुझे नहीं पता एंड दैट इज नॉट इवन इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो वो आई आंटी, उन्होंने थोड़ा अपना रिलेशनशिप रिलेशनशिप बनाया, थोड़ा जो भी है जो भी करना था कर लिया, हम आगे नहीं बोलेंगे, यू कैन गेस वट एवर। उसके बाद वो आंटी कहती है देखो मेरे पास, मुझे ना थोड़े पैसे की ज़रूरत है, बट आई डोंट वॉन्ट योर मनी, मुझे ना अपने गोल्ड बेचना है, मुझे अपने सोने के गहने बेचने हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं एक सोने की दुकान में जाके आई वॉन्ट टू सेल इट। तो बुढ़े अंकल ने बोला कि आप बाहर क्यों जाओगे बेचने, मैं खरीद लेता हूँ तुम्हारा गोल्ड, गोल्ड इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, वी ऑल नो इट, वी देसीज नो दैट गोल्ड इज अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट इन्वेस्टमेंट, और क्यों नहीं इन्वेस्ट हमें करना चाहिए गोल्ड में, है ना, गोल्ड तो बड़े जा रहे हैं बड़े जा रहे हैं, तो इसीलिए शादियों में भी गोल्ड देते हैं ऑल दैट, यू नो वी ऑल नो दैट। तो अंकल ने बोला कि भाई मैं तुम्हारा गोल्ड खरीद लेता हूँ, एंड गेस वॉट गाइस, वो सारा पूरा डब्बे भर का गोल्ड निकला फेक। तो मतलब यार हम यंग लोगों को क्या ही बोले, जब आंटी बुड्ढे अंकल आंटी भी स्कैम कर रहे हैं ऐसे, प्यार का धोखा, हाय हाय हाय, दिल का धोखा ऐसे कैसे हो गया। एनीवेज आप ये गाना एंजॉय करिए, वी आर इन द लास्ट 5 मिनट्स ऑफ माय शो, मैं कोशिश करूंगी मैं आके दोबारा आपको टाटा बाय बाय बोल दूं, और अगर मैं नहीं आ पाई तो प्लीज जॉइन इन टुमारो फ्रॉम 7 to 10 PM, बिकॉज वील हैव ए लॉट मोर जूसी जूसी स्टोरीज। कल का हमारा सेगमेंट थोड़ा सा अलग है, कल हम डेटिंग सीक्रेट्स नहीं, अनहिंज्ड फैमिली सीक्रेट्स शेयर करेंगे, अनहिंज्ड फैमिली सीक्रेट्स। एंड आई फाउंड दिस रियली अमेजिंग रेडिट थ्रेड जिसमें लोगों ने अपनी फैमिली सीक्रेट्स बोली है, एंड यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव सम ऑफ द थिंग्स दैट पीपल हैव टाइप्ड ऑन देयर और पीपल हैव शेयर्ड, ऑल एनोनिमस बाय द वे। आई डोंट नो किसकी स्टोरी है क्या है, मुझे तो गॉसिप एंटरटेनिंग लगती है, और मैं आप सबको ये एंटरटेनमेंट देने वाली हूँ, बट प्लीज़ जॉइन इन टुमारो, इट्स गोना बी सुपर सुपर फन। आई होप यू हैव ए वंडरफुल वंडरफुल नाइट, एंड माया जी थैंक यू सो मच फॉर बींग अ डेडिकेटेड लिसनर। वी मे नॉट बी एबल टू टॉक अगेन अंटिल द एंड ऑफ द शो, बट मे बी टुमारो, सो आई होप यू हैव ए वंडरफुल नाइट, एंड आई होप यू हैव अ गुड नाइट एंड ए ब्यूटिफुल मॉर्निंग ऑल्सो, क्योंकि मैं सुबह तो नहीं रहूंगी। एनी वेज इंजॉय दिस सॉन्ग, आई विल सी यू माई ब्यूटिफुल फ्रेंड्स। जाने से पहले मेरी एक सेंग जो मैं हर साल बोलती रहती हूँ, हमेशा बोलती रहती हूँ, वो ये है शाइन लाइक अ हीरा, ओके, शेक योर हिप्स लाइक शकीरा एंड डांस लाइक गरम तेल में जीरा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह, तालियां तालियां तालियां, बिकॉज लाइफ इज टू बोरिंग, बिना जीरे के स्वाद तो आता नहीं खाने में, तो भाई शाइन मतलब डांस लाइक अ जीरा, यू नो, बिकॉज दैट्स व्हाट लाइफ इज सपोज टू बी। एंजॉय दिस सॉन्ग एंड आई विल सी यू टुमारो एट 7 PM। थैंक यू ऑल, टाटा बाय बाय।

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी
1: तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: जुड़ जाओ अपने।
1: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
2: हाँ।
1: घर रिलोकेट करनी है?
2: हाँ।
1: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
2: हाँ भाई हाँ।
1: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
3: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
4: डूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
5: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
4: कैसे?
5: पेज 3 ईटरी?
4: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
5: डूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
4: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
6: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
7: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम। वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डैलस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी। Desi Mandi, powered by Desi's, loved by Dallas.
8: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping, aur ek strong financial strategy. AG Fintax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory, business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG Fintax's advisory services.
9: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा 6825516500। The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
10: Goodness is a beautiful thing, and good begets good. One act of compassion becomes a circle of virtue that keeps turning. At SIUT, that translates into free treatment with dignity. Hundreds of thousands of patients are given hope when they need it most. Every life touched creates another ripple of good. This Eid, step into that cycle. Remember SIUT North America for your sadqa and donation. Visit SIUTNA.org. SIUT North America is a qualified, tax-exempt, 501c3 nonprofit organization.

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Same order again? Same pizza, same taste, same story. Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
4: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर
1: अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
2: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive Media Partner Panacea
1: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
2: Hi, this is Varun Sharma and you are listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फोनीशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है। पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 6823464611 और विजिट masterjoshigram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाइए।
1: Astrology readings for guidance only and results may vary.
2: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession. Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.

लेकिन आपकी आंखों से नींद कोसों दूर है, पर हम है ना आपके करीब, आपके रेडियो डायल पर सारी रात आपके साथ। फन इज योर रेडियो 104.9 FM।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है। तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा। नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी जर रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर।

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनीशर रेडियो।

थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो। एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे। जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट। सो कमाल धमाल, फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ।

0: Thank you, brother. Thank you very much. Come on.
1: मुझे आज स्कूल में नहीं जाना है।
0: अरे क्यों?
1: नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता।
0: बेटी देखिए आप कुछ दिन यहाँ रहिए, आपको अच्छा लगने लगेगा। और भी तो बच्चे रहते हैं यहाँ।
1: मैं दिल्ली में नहीं रह सकता।
0: नहीं आपको यहीं रहना है हॉस्टल में कुछ दिन, समझे?
1: मैं आपके घर

0: वेरी गुड। और ये कौन है?
1: ये मैं हूँ और मेरे पापा।
0: आपके पापा चश्मा पहनते हैं?

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

तन्हाई में, अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनीशिया।

तुम्हारे गम की डली उठाकर जबां पे रख ली है, देखो मैंने ये कतरा कतरा पिघल रही है, मैं कतरा कतरा ही जी रहा हूँ।

0: Macho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
1: So, ruko jara. Sabar karo.
2: Agla gana. Full vibe badalne wala hai. Stay tuned to Funasia.
3: सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि थॉट्स और दिमाग की भी जरूरी है. सो क्लीन स्पेस, क्लीन थॉट्स एंड क्लीन वाइब्स ओनली, यही है फनेशिया रेडियो का अंदाज. सुनते रहिए हमें और इस नेक्स्ट गाने को.

एक रात वो गया था जहाँ रात रुक के, अब तक रुका हुआ हूँ वहीं रात रुक के। डोंट चेंज दैट डायल, कीप इट राइट हियर ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एशिया रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है। सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डैलस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

0: हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इन टू 104.9 एफएम फनीशा रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा। डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: Hello guys, this is me Kinjal Dave and you are listening and watching Fun Asia Radio.
2: Yeah, I'm a life up high boy. Yeah, tu rakh teri rai boy. Yeah.

0: अरे घूट में सोया गया। अरे घूट में सोया गया। अरे घूट में सोया गया। अरे घूट में सोया गया।
1: अभी भी एक घूट बाकी है।

0: फन की फ्रीक्वेंसी बजे दिन रात।
1: मैं बहुत अच्छा गा लेता हूँ।
2: अच्छा सुना सुना?
1: हाँ वो मेरी प्रैक्टिस नहीं अभी।
2: अगली बार प्रैक्टिस करके आना और किसी और के लिए मत गाना।

लगी भूख लगी भूख लगी भूख लगी भूख लगी जोरों की भूख लगी। मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
4: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी. तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
5: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: KZMP 104.9 FM. Keep listening to Fun Asia.
1: Yo, yo, yo, yo. Got an Ojla. Abby.

Pete?

0: के दिल कर चूचे चूचे चे के दिल कर चूचे चूचे चे।
1: Hi, this is Ranbir Kapoor.
2: And I'm Mani Kapoor, and you're listening to Funasia Radio.

0: बोले नीचे से रे नीचे से।
1: सुने रानी नी ठाट बाट देख किंग दे तू ही जच दी है नाल इस सोने सिंह दे।

चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

माता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा। सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे। बहुत रुकी है आज तू, पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ बादशाह।

0: पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।
1: आजा ऑन द फ्लोर, बुढ़ियों ते कुड़ियों, पंजाबी टोले या तबों।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फनी।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं,
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: जेल से छुटेगा और एक ही दिन में हम सबको खत्म कर देगा।
1: बदराम, वाट लगले रे पोरे ची।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड। डैलस में रेडियो का डैड फोनेशिया 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.
2: Magic touch.

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
4: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी. तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
5: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है.
6: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त. ओनली ऑन फन एशिया रेडियो.

0: तो गया।
1: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive Media Partner Panacea
2: Ek baar jo maine commitment kar di
3: to phir sirf Panacea hi sununga
4: Boring din charya mein
5: gholiye naye rang Panacea Radio ke sang

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फन एशिया 104.9 FM।

0: शताब्दी के लिए पक्की है ना, महाभारत युद्ध के बाद। अब भोलेनाथ भैंस के रूप में थे जब भीम ने उनको आगे पकड़ लिया, अब उनका सर वो नेपाल में और खड़िया रह गया।
1: जय साहब,
2: जय
0: हिंद। 7 किलोमीटर हो गया, 7 किलोमीटर।

0: तो इधर अपना इलाका है, चाय पानी मौज मिलेगा। बस इधर एक मिनट रुकेंगे। चल चल जा रुस्तम, बस बस बस बस दो आराम से। हाँ एक मिनट, एक मिनट पकड़िएगा सर, बस एक मिनट रुकेंगे यहाँ पे। अरे हम जानते हैं दुकान के मालिक को, बहुत मेहरबान है, पैसे नहीं लेंगे उसे। लीजिए।
1: मुफ्त में कोई मेहरबान नहीं होता। ये लड्डू के बदले इतने जाने कौन जायदाद मांग लो तुम।
2: भाई
0: गलत बात है। चलो चलो चलो चलो। जय भोलेनाथ। मम्मी शाम को मिलता हूँ।
2: मेहरबानी करके कुछ कम

0: देवी जी, बताइए कहाँ ले चले?
1: पीएससी हेडक्वार्टर्स और फिर सीधा सरकारी अस्पताल।
2: कम से कम समय तो निकाला पटना एग्जाम ने, वरना इनके पास तो टाइम ही नहीं होता किसी से मिलने के लिए।
1: ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं।

0: कौन है? कोई बड़ी हस्ती?
1: रूटीन ऑफिस वर्क।
0: रूटीन जब बदलता है तो सबसे पहले बीवियों को पता चलता है।
1: नहीं बता सकते यार,
0: मुझ पे भी भरोसा नहीं है।

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
7: कौन सा?
6: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
7: अरे सारे तो सेम है।
6: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो, ये वाला।
7: ओ हाँ, ये तो अलग है।
8: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो हैं। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
9: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
10: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
9: K2 ड्राइव मतलब
10: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है।
9: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
10: 100%
11: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402। K2 ड्राइव, डायलिसिस स्मार्टेस्ट फ्लीट पार्टनर।
12: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
13: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
14: हाँ।
13: घर रिलोकेट करनी है?
14: हाँ।
13: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
14: हाँ भाई हाँ।
13: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
15: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
16: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping aur ek strong financial strategy. AG FinTax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory. Business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG FinTax's advisory services.
17: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
18: Calculating route. Rerouting.
17: Are, ye kya? Mujhe mere wale grocery store mein jana hai.
18: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
17: Kyu?
18: Kyunki Fort

0: बर्थ, केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत, फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ।
1: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो,
2: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
0: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
3: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
4: Thank you so much for joining us today on this Thursday morning, the 28th of May. सबसे पहले तारीफ उस ऊपर वाले की जिसने दुनिया बनाई, चांद सितारे बनाए, जमीन आसमान बनाए, इंसान के दिल में मोहब्बत का जज्बा पैदा किया। उसी ऊपर वाले की तारीफ है जिसने मुझको, आपको और ये सारी कायनात को इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए बनाया है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, याली मदद, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वील स्टार्ट विद यूफोरिया।
5: अच्छा, बाहर निकल ले,
6: ट्रेन निकल रही है, चल
5: नहीं, आ जा यार,
6: है मत है।

0: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
1: अपनी रूट्स भी और टेक्सास का स्वैग भी दोनों एक साथ एक ही जगह HEB में। रॉयल सोना मसूरी राइस हो, नानक पनीर हो या पार्ले जी बिस्किट्स, वही देसी टेस्ट जो दिल को घर जैसा फील दे। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो सिर्फ यहीं मिलते हैं। एक ही ट्रिप, एक ही स्टोर और सारा सामान डन। तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ। HEB, हियर एवरीथिंग्स बेटर।
2: Attention business owners, what if your everyday expenses could actually make you money? That's right, with Connecting America, you can turn your business expenses into a powerful stream of income via a unique insurance product. If you are looking to boost your bottom line, they got the strategy that works for you. Plus, they help homeowners pay off their mortgage in 10 years or less.
3: Don't wait. Call James at 321-888-7345 today or visit ConnectingAmericaFinancials.com and discover how to turn your daily expenses into income. Connecting America, where smart business owners turn costs into cash.
4: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
5: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
3: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
5: इतना सब और प्राइस?
3: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
6: मैं हीरो।
7: Achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
8: Ritesh, kabhi socha hai? Kal agar tum nahi rahe, to mera kya hoga?
9: Arey relax, sab tumhara hi to hai.
8: Sach? Ya phir court decide karega?
9: Wait, what?
10: Yes, agar proper estate plan nahi hai, to aapki family ke decisions court leta hai.
11: Hi, this is Deepti Verma with NRI Wealth. Main families ko help karti hoon unki mehnat ko protect karne mein. The right way with estate planning.
10: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
8: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
9: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
8: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
9: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
10: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.

0: Taking your calls right now, 972-235-5555. And here are some more messages.
1: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
2: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
3: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
4: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
3: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
5: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपटीटर कोट मैच भी। कॉल 469-298-3870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
2: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
6: Kya matlab?
7: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
7: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
6: Ab to karna hi padega, madam.
8: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: 2026 mein aapki rashi ke liye dhan aur safalta ke yog hain.
10: Are you sun ye astrologer बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
13: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
14: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
13: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
15: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
16: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
15: K2 ड्राइव मतलब
16: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है।
15: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
16: 100%
17: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट K2 ड्राइव.com और कॉल 214-814-0402 Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
18: एक बात बता, रिटायरमेंट में सबसे स्कैरी क्या होता है?
19: क्या?
18: सैलरी बंद हो जाती है
19: और बिल्स बंद नहीं होते।
18: एग्जैक्टली, इसलिए स्मार्ट लोग वेल्थ टैक्टिक्स से स्ट्रेटजी बनाते हैं।
19: मतलब
18: ऐसी स्ट्रेटजी जहां इनकम रुकने के बाद भी पैसे का फ्लो बंद नहीं होता।
0: द वेल्थ टैक्टिक, स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉर योर रिटायरमेंट इयर्स। फॉर फ्री कंसल्टेशन कॉल 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
4: Dallas, are you ready for a mini India in one evening? On Sunday, May 31st, 3 p.m. to 9 p.m. Join us at the Haggard Park, Plano, near downtown for the Ambuj Basant Mela powered by Bana. Live performances, raffle prizes and touch the truck from 4 to 5 p.m. Plus, a Pan India food festival from Litti Choka to Bengali, Marathi, Gujarati, Oriya, South Indian, Punjabi, Sindhi and so much more. Free entry, free parking, fun for the whole family. Ambuj Basant Mela powered by Bana. Supported by major Indian non-profit organization in DFW.
0: For booth and sponsorship contact, admin at ambuj.us. Thank you very much for
20: letting me into your cars and helping you drive to your destination. We'll do that giveaway right now that I was talking about. First of all, it's from Red Hot Chili Pepper. So you can win either a dry chili chicken or a chili baby corn if you're a vegetarian. Or, of course, Dallas's best butter chicken, Red Hot Chili Pepper's Chicken Makhanwala. You can pick it up at either of their locations in Richardson, McKinney or Allen. Not the one in Frisco. Not the original one in Frisco. Either Richardson, McKinney or Allen. That's what you can do. Just pick it up from there. Now, who's going to pick it up? The first person who tells me this track I'm about to play. Y'all know the song very well. And it's very familiar, but slightly, tiny bit difficult question here. Being picturized on this group of girls, I want to know the name of the leader of this group of girls. As soon as you hear the song, you know exactly what I'm talking about. But I don't want to know the leading pair or who else is there in the movie. I just want to know the name of the leader of this group of touristy girls.

0: And she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent, and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.escorialcpa.com.
1: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
2: Excuse me. It's called being loyal.
1: It's called being predictable.
2: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
1: And what's so special at Neon Cactus?
2: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
1: Not bad.
2: Happy hours Monday to Friday and amazing food and drink deals every day.
1: Okay, this I didn't expect from you.
2: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
3: Sunita, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
4: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
3: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
4: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
5: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को प्रॉस्पर और मैकिनी आईएसडी अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स। पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कॉम्पिटिटिव एज। ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस। किड्स एजेस 5 टू 13, कॉइट एंड Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
6: अरे भाई, वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट।
7: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन। चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर, लॉसिन ट्रैवल। फॉर नियरली 30 इयर्स, लॉसिन ट्रैवल हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज प्लान स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स विद द बेस्ट एयरफेयर्स, वेकेशन पैकेजेस, क्रूजेस एंड कस्टमाइज्ड ट्रैवल सॉल्यूशंस। लॉसिन ट्रैवल मेक्स एवरी जर्नी स्मूथ, अफोर्डेबल एंड टेंशन फ्री। कॉल नाउ 214-631-2458 or visit lawsontravel.com.
8: सब कुछ साफ रख सकते हो,
9: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती, कोई नहीं सोचता मेरे बारे में।
10: क्योंकि ये कौन बोला?
9: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पॉलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
11: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक्ट टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 972-877-2500।
12: Hi Dallas, this is Ranbir Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

0: baby.
1: Variety is the spice of our station. 104.9 FM.

0: कुमार।
1: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनीजिया रेडियो।
2: You are tuned into Phanisha Radio 104.9 FM और ये है गपशप गली with Meetu. Hello, नमस्कार and thank you very much for tuning in. मैं आप लोगों को लेकर जाने वाली हूँ इस म्यूजिकल जर्नी में, जहाँ पे 11 to 12 के बीच में हम कुछ रेट्रो म्यूजिक भी सुनेंगे और कुछ पुराने जमाने की बातें भी निकालेंगे आप लोगों के साथ. तो जी हाँ, उस कॉन्वर्सेशन के लिए भी रेडी रहें, लेकिन रेडी रहें फॉर फीफा अपडेट ऑल्सो दैट कम्स बिटवीन द 11:45 टू 12 सेगमेंट. बहुत कुछ और भी आपके लिए जो कि मैं लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए, एक सेगमेंट जिसका सीधा सीधा डीलिंग होता है आज के दिन के साथ. 28th of May जो फिल्म्स रिलीज हुई हैं, कुछ उनके बारे में बताएंगे, कुछ आने वाली फिल्मों के बारे में भी बताएंगे. देर इज प्लेंटी टू टॉक अबाउट एंड देर इज प्लेंटी टू टॉक अबाउट द वेदर ऑल्सो, क्योंकि टेम्परेचर्स थोड़े से बढ़ रहे हैं, क्योंकि रेन चांसेस हमारे थोड़े से अब लोअर हैं. एंड वी विल टेल यू दिस विच इज ए टिपिकल लेट मे अर्ली जून वेदर पैटर्न दैट वी आर सीइंग राइट नाउ हियर इन Dallas Fort Worth. You are listening to Gupshup Gali with Neetu.

और इन सब में हमारी जो खाने की बातें हैं वो चलती रहती हैं, क्योंकि वी आर बिग टाइम फूडीज एंड आई थिंक आई से दिस ऑन द बिहाफ ऑफ एवरी बडी हियर कि टेल मी कि आपके ऑलरेडी वीकेंड के प्लान्स बन नहीं रहे हैं। वीकेंड क्या मतलब, फ्राइडे से ही शुरू हो जाता है और ऑलरेडी आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कह रहे हैं कि यार इस वीकेंड ना यहाँ जाएंगे यार वहाँ जाएंगे। ये सारी बातों में ना पेज थ्री इटरी को ज़रूर शामिल कीजिएगा। इट इज़ दैट वन प्लेस जहाँ पर आपको मॉडर्न फ्लेयर मिलेगा इनके खाने में, जो वो ट्विस्ट लेकर आते हैं, that fusion food that they bring for all of us, it is amazing. I've visited number of times and I can tell you, you're going to enjoy the taste of the place, the dishes there, and of course the ambience of the place as well. Absolutely love page 3 eatery, ladies and gentlemen, jahan pe aapko sizzling kebab se lekar flavorful chaat mein jo wo fusion element milega, bahut acha lagega aap logon ko, I am very sure. Tell me your favorite from there when you visit, all right? And once again, again, it is page 3 eatery at hub 121 that you must remember. And you must also remember the number in the studio. It is 972-235-5555. This is Gupshup Gali with me too.

0: खता मेरी तो नहीं लेकिन आपकी जरूर हो सकती है अगर आपने ये हमारे स्टूडियो का नंबर सेव नहीं करके रखा हो. दिस इज व्हाट आई वांट यू ऑल टू डू. 9722355555 हमारे स्टूडियो का नंबर है. हम सब मिलकर यहाँ पे कोशिश करते हैं कि आप लोगों के साथ कुछ कॉन्वर्सेशंस स्ट्राइक करें और उन कॉन्वर्सेशंस में हिस्सा लेने के लिए या अपनी यू नो डेडिकेशंस या रिक्वेस्ट हम तक पहुँचाने के लिए द नंबर रिमेन्स द सेम 9722355555. Keep listening to Funisha Radio 104.9 FM.
1: Kya kare ji hazoor.

0: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
1: चिकन बनाना
2: ब्रो बनाना नहीं बनाना मतलब मेक द चिकन राइट
3: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders. Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry. Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? उमर ख्वाजा
2: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com
4: भूख लगी
5: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है
0: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग
5: अ क्विक बाइट अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर यू गो टू पेज 3 हब 121 मैकिनी
6: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दूंगी
7: अरे मैडम करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या
8: अब करेगा बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन स्टनिंग लहंगास एलिगेंट साड़ीज ब्राइडल ज्वेलरी मेंस एंड किड्स वेयर
9: इतना सब और प्राइस
8: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन अब हर आउटफिट बोलेगा
10: अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है
11: पनवेल हो या डेलस सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त ओनली ऑन फन एशिया रेडियो
12: ट्रैक्स दैट पुट यू ऑन द राइट ट्रैक

एब्सोल्युटली एंजॉय दिस सॉन्ग. आर डी बर्मन का म्यूजिक है इस गाने के लिए और एस पी बी एंड अलॉन्ग विथ हिम इट वॉज अनुराधा पौडवाल. एक और एस पी बी का गाना, एक और आर डी बर्मन का गाना दैट आई वॉन्ट प्ले फॉर ऑल ऑफ यू. लेकिन बिफोर आई प्ले, लेट्स टॉक अबाउट वॉट वेदर इज यू नो प्लेइंग फॉर आज टूडे. इट्स द यूजुअल पैटर्न जो कि मे या अर्ली जून में हमें मिलता है, लेट मे या अर्ली जून में मिलता है, बस वैसा ही वेदर है. कुछ अगले कुछ दिन आपके लिए काफ़ी वार्म रहने वाला है, काफ़ी मगी रहने वाला है आपके लिए और मेरे लिए भी. डैलस फोर्ट मर्थ में ये चीज़ जो है हम एक्सपेक्ट ही करते हैं इस वक्त. और अपर 80s टू अराउंड 90s दैट द टेम्परेचर विल बी. रेन चांसेस हमारे रेस्ट ऑफ द वीक के लिए काफ़ी कम लग रहे हैं. आइसोलेटेड शावर या थंडरस्टॉर्म पॉसिबल है आज दोपहर को, आज दोपहर से लेकर एक्चुअली ऑल थ्रू संडे, बट द चांसेस आर वेरी लो. मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी ड्राई, दैट्स वॉट यू नीड टू नो. और नेक्स्ट वीक हमारे लिए एक और चांस है मंडे नाइट को ऑफ थंडरस्टॉर्म्स. इसके अलावा मोस्ट ऑफ द वीक लुक्स वार्म एंड ड्राई फॉर अस. आज का हाई कुछ 87 के आसपास होगा, लो होगा कुछ 71 के आसपास. टुमारो इट इज गोइंग टू बी 90, बट द हीट इंडेक्स इज गोइंग टू मेक इट फील क्लोज टू 100, लेडीज एंड जेंटलमैन. एंड दैट इज द केस विथ सैटरडे एंड संडे ऑल्सो, लेडीज एंड जेंटलमैन. 90s में हमारे मिड 90s तक का टेम्परेचर होगा, लेकिन क्लोज टू 100 तक की वो हीट इंडेक्स जो फील करवाएगी हमें. सो दैट्स द टेम्परेचर फॉर ऑल ऑफ यू राइट नाउ. इट इज 75 degrees. ये है गपशप गली विद मीठू.

लिसन वाइल आई एम एट इट, एक और एसपीबी का गाना लेकर आने वाली हूँ आप सभी के लिए. आई एम श्योर यू गोइंग टू एंजॉय दिस नेक्स्ट ट्रैक ऑल्सो. लेकिन एक और चीज बताना चाहती हूँ विच इज नॉट अबाउट एंजॉयमेंट, लेकिन इट इज अबाउट गुड केयर एंड गुड सर्विस. फॉर 13 ईयर्स टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक हैज प्राउडली केयर फॉर आर कम्युनिटी. तो याद रखिएगा, एक ब्रांड न्यू नाम और सेकेंड फ्रिस्को लोकेशन जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लूनॉक्सी मेडिकल. That is what you should remember and keep it at the top of your mind, so that whenever you want, personal service and care in terms of health, aap zarur Dr. Mandeep Acharya aur unki team ko yaad karein. Lunoxy Medical brings primary care, urgent care, in-house lab testing, X-rays, CT scans, cardiac diagnostics, and Himalayan Med Spa services. Aur ye sari एक ही जगह पे आपको मिलेगी. एंड दैट्स लूनॉक्सी मेडिकल इन फ्रिस्को दैट यू मस्ट विजिट. ओपन 7 days a week फ्रॉम 8 AM टू 8 PM. वॉक इन एनी टाइम, मिनिमल वेट टाइम इज वॉट दे प्रॉमिस, और फिजिशियन लेड केयर दैट यू गोना गेट देयर. पर्सनलाइज अटेंशन फॉर एवरी पेशेंट, दैट इज वॉट वी आर सीकिंग वेन वी गो टू दीज प्रोवाइडर्स, राइट? सो याद रखिएगा जरूर लूनॉक्सी मेडिकल द फ्रिस्को लोकेशन दैट यू मस्ट चेक आउट. थैंक यू once again for tuning in.

0: 104.9 FM Fun Asia Radio, Fun Asia Radio, non-stop entertainment.
1: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
2: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
3: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
4: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम। वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डायलस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी। देसी मंडी, पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डालस।
5: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
6: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
7: आर यू लुकिंग टू ओन अ ग्लोबल रेस्टोरेंट ब्रांड? जय भवानी, एन एस्टैब्लिश्ड ब्रांड फ्रॉम इंडिया, बॉर्न इन गुजरात, इज एक्सपैंडिंग अक्रॉस टेक्सास। वी होल्ड द एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइज राइट्स फॉर टेक्सास एंड आर इनवाइटिंग मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर्स टू जॉइन अस इन पार्टनरशिप विद अ लीडिंग हॉस्पिटल group. Call Sunil at 469-468-6021 or Lee at 214-576-6439.
8: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.
9: Tracks that put you on the right track.

0: It is Gupshup Gali with me too. यहाँ पे हमारी इस सेगमेंट में बातें होंगी फीफा के बारे में, बिकॉज फीफा डैलस ऑफिशियल होस्ट जो सिटी है, हम इसको चाहते हैं कि आप उसके पहले आपकी सारी होमवर्क रहे रेडी. एंड आपके लिए एक सवाल है, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, और उस क्वेश्चन के बदले में पंचतारा रेस्टोरेंट की तरफ से आपके लिए है आलू कुलचा या फिर छोले भटूरे फ्रॉम पंचतारा रेस्टोरेंट. दो लोकेशन हैं इनकी, एक है एलन में और एक है फ्रिस्को में. तो आप जीत सकते हैं इधर आलू कुलचा या छोले भटूरे, डिपेंडिंग ऑन विच डे यू गो एट देयर्स आपको ये मिल सकता है. और ये कैसे मिल सकता है कि अगर मुझे आप सिंपल सा एक सवाल जो है उसका जवाब दे दें, एंड दैट सिंपल सा सवाल इज, या वी नो दैट डैलस इज one of the official host city for the FIFA World Cup 2026, correct? 9 matches होने वाले हैं Dallas Stadium में, जो कि AT&T Stadium है यार अपना, लेकिन दुनिया globally से जाना जाएगा as Dallas Stadium for convenience, okay? उसमें से 5 group stage games हैं और 2 round of 32 ties है, and a round of 16 match, and the first semi-final which is to be played in the month of July. लेकिन मुझे आपसे पूछना है कि यहाँ पर डैलस में, हमारे डैलस स्टेडियम में गेम्स कब से शुरू हो रही हैं. देखिए, वैसे तो फीफा जून 11 से शुरू हो रहा है, लेकिन हमारा पहला गेम यहां पर नेदरलैंड्स वर्सेस जापान का, वो कब होने वाला है डैलस स्टेडियम में. लेट्स फाइंड आउट कि ये जो सारी फीफा की इन्फॉर्मेशन इस सेगमेंट में देती हूँ, आप कितने ध्यान से सुनते हैं. सो वंस अगेन टेल मी, डैलस स्टेडियम में ये जो फीफा का पहला गेम होने वाला है नेदरलैंड्स वर्सेस जापान का, वो कब होने वाला है. यू आर लाइव ऑन एयर, लेट्स हियर इट फ्रॉम यू, एंड होपफुली आपने पंचतारा रेस्टोरेंट से पहले नहीं जीता हो. लेट्स हियर इट देन.
1: हाय, इज इट जून 14th?
0: इट इज जून 14th. क्या नाम है आपका?
1: किरण.
0: किरण, कंग्रेचुलेशंस टू यू.
1: नहीं नहीं, हिरल.
0: फिर से बताना.
1: HIRAL.
0: हिरल. ऑल राइट, सी वी हैव अ वंडरफुल आरजे कॉल किरण, तो इसीलिए वो खनक रही है मेरी, ऑटोमेटिकली मैं किरण पे लैंड कर गई. ऑल राइट, सो हिरल, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. आपको निसंदेह यू आर विनिंग फ्रॉम पंचतारा रेस्टोरेंट, कंग्रेचुलेशंस. क्या पसंद है आपका, आलू कुलचे या छोले भटूरे, बताइए.
1: Do I have to decide now? Or
0: no, not at all. ये तो मेरी खुद की curiosity होती है. तो मैं जनता से पूछ लेती हूँ.
1: आपकी curiosity के लिए छोले भटूरे, लेकिन depends on the mood.
0: Depends on the mood. Of course, सच्ची में हमारा हर दिन वो सेम थोड़ी ना खाने का मन कर सकता है. हमारा अलग अलग अलग दिन पे अलग अलग चीजें हमारे खाने की मन करता है. तो ठीक है, पंचतारा रेस्टोरेंट से ये जो गिव अवे है आपके लिए, डू होल्ड द लाइन फॉर मी. मैं आपको आपके लिए ये गिव अवे पूरा डिटेल्स आपकी लेती हूँ ऑफ एयर. फिलहाल एक गाना हो जाए. और जी हाँ, जून 14th को डैलस स्टेडियम में पहला गेम जो होने वाला है, इट्स नेदरलैंड वर्सेस जापान. जून 17 को इट्स इंग्लैंड वर्सेस क्रोएशिया, एंड जून 22 को अर्जेंटीना वर्सेस ऑस्ट्रिया. विल मोर फीफा स्टोरीज फॉर ऑल ऑफ यू राइट हियर.

Well, हम भी खोने वाले हैं फीफा वर्ल्ड कप, जो यहाँ पर जो फीवर ऑलरेडी शुरू हो चुका है. पहला गेम जो है नेदरलैंड वर्सेस जापान का, वो है नवंबर कहाँ से आया यार, जून 14th को होने वाला है. और यही सही जवाब दिया हीरल ने. एंड मुझे लगा कि हीरल शायद मेरा ये सेगमेंट ना बड़ी ध्यान से सुनती होंगी, इसीलिए सारे डेट्स वेट्स, क्योंकि मैं अक्सर बताती रहती हूँ ये इस सेगमेंट में, तो मुझे लगा कि ये मेरे शो को ना ध्यान से सुन रही हैं, इसीलिए इनको पता था. नहीं, इनके सुपुत्र जो हैं, इनके बेटे इज गोइंग टू गो फॉर द मैच. हे अमेजिंग, वील गेट फर्स्ट हैंड रिपोर्ट फ्रॉम सुकेत. इन दैट केस, thank you so much for sharing all the info with us. Panchtara restaurant ki taraf se inko to giveaway mil chuka. Ab baki logon ke liye ye hai ki Dallas ke historic fair park mein world cup hub jo ye Dallas ka hone wala hai, transforming into a 1 million square foot soccer village, open from June 11th to July 19th. This free 34 day FIFA fan festival will feature massive main stage screens, interactive mini pitches, cultural events, concerts, और साथ ही साथ लोकल फूड वेंडर्स भी. और पता है आपको, फीफा के बारे में मुझे आपको और भी कुछ बताना था. आज नहीं है तो कल बता देते हैं, क्योंकि हमारा ये सेगमेंट जो 15 मिनट का होता है, इट इज़ ऑल अबाउट फीफा, लेडीज एंड जेंटलमैन. तो कल बताने वाली हूँ मैं आपको फीफा की ये जो कुछ थोड़ी सी जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है. आप अगर आपको नहीं पता तो कल तक थोड़ा सा वेट कर लें, नहीं तो बता दूं क्या. चलिए बता ही देती हूँ. फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने में कुछ ही दिन रह गए हैं, राइट, और ये डैलस स्टेडियम में जो होने वाला है. और यहाँ पे कुछ चीज़ों के लिए फीफा के फैंस जो हैं, स्पोर्ट्स लवर जो हैं, ये कुछ परेशान हैं, कुछ दुखी हैं, कुछ अपसेट हैं, कुछ गुस्सा हैं. और रीज़न है वो मैं आपके लिए ब्रेक डाउन करना चाहती हूँ. टिकट प्राइसेस और सीट प्लेसमेंट, ये दो मुद्दे हैं जिनके कारण वो बहुत परेशान हैं. सी, फीफा इज़ फेसिंग ह्यूज बैकलैश बिकॉज दे यूज़ दिस डायनामिक प्राइसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, विच मेक्स टिकट प्राइसेस फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन डिमांड. और इसी के लिए ये काफ़ी कंट्रोवर्सी जो खड़ी हुई है. एंड टू कंट्रोल द डैमेज, फीफा रिलीज ए टाइनी 1.6% एलोकेशन ऑफ कैप्ड $60 टिकट्स, जो बहुत ही कम नंबर में शायद था. एंड सिटीज़ लाइक न्यूयॉर्क आर ट्राइंग टू ऑफर स्मॉल $50 लोकल डिस्काउंट्स. ये सारी चीज़ें हो रही हैं बैकग्राउंड में, ठीक है. सीट प्लेसमेंट, ये एक और बड़ा इशू है, जिसे आप धोखा कह सकते हैं या कन्फ्यूजन कह सकते हैं. पिछले साल फीफा ने प्रॉमिस किया था कि टिकट कैटेगरीज बड़ी सिंपल होंगी. आप पिच से कितने पास हैं, फ्लोर बाय फ्लोर, उस हिसाब से सीट मिलेंगी. बट व्हेन सेल्स स्टार्टेड, दे वेंट बैक टू द ओल्ड कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, पुटिंग साइड लाइन एंड अपर लेवल सीट्स इनटू रैंडम एक्सपेंसिव टियर्स. टू मेक थिंग्स वर्स, अप्रैल में उन्होंने सडनली एक प्रीमियम फ्रंट रो कैटेगरी बना दी, और जिन्होंने पहले से टिकट ली रखी थी उन्हें बेकार सीट्स पर शिफ्ट कर दिया गया है. एंड दैट इज द कंटेंशन दैट पीपल हैव विथ द ऑर्गेनाइजर्स नाउ. अब एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका है, एंड द अटर्नीज जनरल ऑफ न्यूयॉर्क एंड न्यू जर्सी हैव लॉन्च्ड एन इन्वेस्टिगेशन इनटू फीफास टिकटिंग प्रैक्टिसेस अराउंड द 2026 वर्ल्ड कप, फोकसिंग स्पेसिफिकली ऑन द मैचेस ड्यू टू टेक प्लेस एट मेटलाइफ स्टेडियम इन ईस्ट रदरफोर्ड इन न्यू जर्सी. सो ये जो, मतलब आप सोचें जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. और जनता गुस्से में है, और इसीलिए ये इन्वेस्टिगेशन जो शुरू हुआ है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू दैट. कुछ ही दिन रह गए और ये सारे कांड हो रहे हैं. दिस इज गपशप गली विथ मीठू.

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes, and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
3: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
8: रितेश, कभी सोचा है

0: करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
1: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
2: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
3: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
2: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
3: वेट, व्हाट?
4: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
5: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
4: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
6: मामू, देखो क्या हो गया।
7: ओ, क्या हो गया?
6: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है।
7: ओए, जर्मन का कमाल है।
6: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
7: ओए नहीं, ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, BMW, VW और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623। कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
8: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
9: बिग अचीवमेंट्स डिजर्व अनफॉरगेटेबल सेलिब्रेशंस। Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now, 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
10: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
11: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
10: Kya matlab?
11: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
10: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
11: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
10: Ab to karna hi padega, madam.
12: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
13: बॉलीवुड का अल्टीमेट हार्टथ्रॉब अर्जुन रामपाल इज कमिंग टू डैलस विद अ स्पेशल डीजे परफॉर्मेंस। गेट रेडी फॉर द रैम्पेज टूर ऑन मे 31st एट क्लब वीवो डैलस। डोर्स ओपन एट 9 PM, स्ट्रिक्टली फॉर 21+। फॉर टिकट्स एंड टेबल रिजर्वेशंस कांटेक्ट ईशा एट 469-560-5560।
14: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनीजिया रेडियो।
15: थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। ये है गपशप गली विथ मी टू, और इस गपशप की गली में हम बात करने वाले हैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज के बारे में जो शायद आपने पहले नहीं सोचा हो, या अगर सोचा हो तो वक्त है कि आप शेयर करें हमारे साथ। 972-235-5555 नंबर इन द स्टूडियो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स गेट यू ऑन द एयरवेव्स एंड टॉक अबाउट सम नॉस्टैल्जिया। हाउ अबाउट दैट? चलें कुछ नॉस्टैल्जिया से ही शुरू करते हैं। 90s का ये गाना आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ, तो चलें यहीं से शुरू करते हैं। एंड इट इज दिस ट्रैक दैट आई एम गोइंग टू पिक प्ले नेक्स्ट फॉर ऑल ऑफ यू। चलें

This part of my show is brought to you by AG Fintax, one of the fastest growing tax firm in the US. AG Fintax ki jo team hai, headed by Anil Grandi sahab, ye jo hai, ye deploy karte hai solution centric and analytical approach that empowers clients to improve efficiencies through smart functions, intelligence workflows and customized care. To deri kis baat ki, if you think you need that financial service from that, those innovative financial services with untapped potential for both individuals and businesses that they have for all smart business owners as well, zaroor jaye inki website pe, lot of information that you will get there, agfintax.com. lekin har baar ki tarah aaj phir kehne wali hu ki baat zaroor kijiyega, that gives you the check on what you feel about the place. All right, once again, agfintax.com has all the information including the number jo main aapse आपसे शेयर करने वाली हूँ, 4699429888, दैट्स द नंबर. स्टूडियो का नंबर लिख लीजिए भाई, 9722355555, क्योंकि हम इस सेगमेंट में जो करते हैं वो है आपसे वार्तालाप, यानी कि कॉन्वर्सेशन. एंड कॉन्वर्सेशन इज ओनली पॉसिबल अगर टू वे हो, है ना? तो इसीलिए सारे लाइंस ओपन है. जरूर बताइएगा. नॉस्टैल्जिया एक्सप्रेस में सवार करने वाली हूँ आप लोगों को. एंड आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू, क्या है ना कि कुछ हफ्ते पहले मैंने एक फिल्म देखी, ठीक है, और मैं मतलब वही जो एक्सपीरियंस था उसके बारे में सोच रही थी, यू नो, दोस प्लश रिक्लाइनर सीट और फिर उसमें एक बड़ा वाला पॉपकॉर्न, कितना, 15-18 डॉलर का जो भी होता है वो लेकर, अच्छे से अपना कोक वगैरह लेकर हम बैठे, एंड ऑल ऑफ दैट, आई फेल लाइक क्वीन रियली. लेकिन मुझे ना इस बात से ये लगा कि मैं अगर 20-30 साल पीछे चली जाऊँ, हाँ, अपने स्कूल कॉलेज के टाइम तक मैं पहुँचूँ अगर, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था, ना एसी होता था, ना इस किस्म के कंफर्टेबल चेयर्स होते थे. आई एम टॉकिंग बैक इन इंडिया, और यहाँ पर भी आई एम श्योर द एक्सपीरियंस यूज टू बी वेरी डिफरेंट येट फैंटास्टिक, राइट? तो मुझे आप लोगों से पूछना है कि भाई अगर मैं अगर कहूँ कि एक मेजर डिफरेंस बताएं दैट यू सी इन द मूवी थिएटर एक्सपीरियंस टूडे कंपेयर टू व्हेन यू वर इन स्कूल और कॉलेज, लेट्स से 20, 30, 40, 50 ईयर्स, व्हाटएवर, ठीक है, वो मतलब बेसिकली आप चाहे यहाँ रहे हो या अपने अपने कंट्री में रहे हो, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, मुझे जानना है तब वर्सेस अब क्या फ़र्क है आपको लगता है, दैट वन थिंग यू प्रोमिनेंटली सी कि ये डिफरेंस है यार उस वक्त के मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस वर्सेस इस वक्त के मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस में. 9722355555. भाई देसी मंडी का अगर गिव अवे चाहिए ना, यानी कि वो तगड़ा ग्रोसरी हैम्पर फ्रॉम द बिगेस्ट ग्रोसरी स्टोर इन डैलस विच इज़ इन लुइसविल, देसी मंडी से अगर चाहिए तो भाई कॉल तो करना पड़ेगा. बाकी मूड मैं बनाने में काफ़ी माहिर हूँ. तो ये रहा वो गाना which will take you to yesteryears. और इस गाने के बाद हम आपके कॉल्स लेना शुरू करेंगे, ठीक है? 9722355555. This is Gupshup Gali with me too.

0: All right, ladies and gentlemen, ये गाना एक्चुअली 80s की ये फिल्म से जो है हीरो मीनाक्षी सेशाद्री आर ओन डालस रेसिडेंट हु इज इन दिस फिल्म. और वापस से अगर इंस्टाग्राम पे अगर आप चेक करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाउ इंटरेस्टेड शी इज टू गो बैक टू मूवीज और डू शोज एंड ऑल ऑफ दैट. शी इज वेटिंग फॉर जस्ट द राइट रोल. अभी हाल ही में मेरे ख्याल से एक आध दिन पहले उन्होंने एक ऐसे मैसेज उन्होंने डाला है इंस्टाग्राम में आस्किंग द मेकर्स, द फिल्म मेकर्स एंड शो मेकर्स टू reach her out directly, and that is, ladies and gentlemen, our very own Meenakshi Seshadri. अब बात आ रही है फिल्मों की. जी हाँ, मैं जानना चाहती हूँ तब versus अब क्या ख्याल है आप लोगों का. What is that one big difference that you see at movie theaters? The experience I'm talking about, जो कल यानी कि 20-30 जब भी आप स्कूल कॉलेज में थे आप समझ लें उस वक्त से अब में क्या फर्क है. You're live on air.
1: मुझे लगता है कि पहले के बारे में वी यूज़ टू गो विद फैमिली एंड जब भी मूवीज रिलीज होती थी वी यू नो वी हैड टू प्लान इट लाइक ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते पहले टिकट आ जाती थी.
0: बिल्कुल.
1: एंड वी वुड बी आल्सो एक्साइटेड बिफोर.
0: या
1: घर पे तो हम जमीन पे बैठ के खाना खाते थे. मूवी हॉल में वो बस
0: या दैट इज सो ट्रू, दैट इज सो ट्रू. यू नो आपने बिल्कुल सही दो पॉइंट्स निकाली हैं. एक तो ये भी है ना कि आजकल के दिन में ना हमें पता है कि कुछ दिनों में OTT प्लेटफॉर्म पे आ ही जाएगी ये फिल्म, तो आराम से घर पे बैठ के देख सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन हो गया है. पहले के दिन में ना ये होता नहीं था. आई यू ऑन स्पीकर फोन बिकॉज आई एम गेटिंग लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस ऑन दिस लाइन. ओ आई सी. व्हाट्स योर नेम अगेन? यू सेड पूर्वी.
2: Urvi,
0: thank you very much for your call. Very pertinent points that you have picked. हम पहले कैसे entourage के साथ जाया करते थे ना, मतलब पूरा कुंबा जाएगा, जब जाएंगे तो सारे साथ मिलके जाएंगे, ऐसे वो जाने का मजा भी कुछ अलग होता था.
2: और अब तो ऐसा लगता है कि अगर प्लान करना है तो कैलेंडर बुक करो पहले से, बताओ कुछ और प्लान हो जाते हैं. आई थिंक यू नो फिजिकल कंफर्ट इज देयर विद द चेयर्स एंड एवरीथिंग.
0: या
2: But emotionally, you don't feel the same thing as you would feel before.
0: Urvi, you are so right. Bilkul bang on. Thank you very much. Keep listening. हाँ, थोड़े से ऑफिस पांच एक मिनट थोड़े से देर पहुंचना, क्योंकि क्या पता आपको इनाम मिल जाए. ठीक है, कीप लिसनिंग. 972-235-5555 नंबर इन द स्टूडियो.
3: हेलो,
0: यू आर लाइव ऑन एयर.
3: हेलो, वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. बताइए क्या एक्सपीरियंस है पिछले जमाने का और इस जमाने के मूवी वॉचिंग का.
3: हाँ, पिछले जमाने में होता था कि इंटरवल हो पिक्चर मूवी में तो फिर फौरन चाय वाले और समोसे वाले.
0: हाँ.
3: हम लोग तो वेट करते थे कि इंटरवल हो और ये लोग सब लेकर निकलते थे और
0: बिल्कुल और एक्चुअली लंबी लाइन लगती थी समोसे वाली जगह पे, है ना, वो एक एक्सपीरियंस ही कुछ अलग होता था. ओ गॉड, आपने बिल्कुल याद दिला दिया मुझे. ओ गॉड, थैंक यू. व्हाट्स योर नेम?
3: लेकिन अब तो ये होता है कि इंटरवल हो तो फिर अपने बच्चे जाते हैं लेकर आते हैं कुछ भी खाने के लिए.
0: हाँ, विच इज मोस्टली पॉपकॉर्न्स एंड कोक एंड ऑल ऑफ दैट. जो समोसे और चाय का मजा ना कुछ अलग ही होता था कि वो चाय
3: तो अलग ही होता था. राइट.
0: क्या नाम है आपका?
3: रशीदा.
0: रशीदा जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. गोइंग टू दिस लास्ट कॉलर फर्नीचर रेडियो, योर लाइव ऑन एयर.
4: जी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू?
0: आई एम डूइंग फैब. आप बताइए आप कैसे हो, क्या नाम है आपका?
4: सुरैया.
0: सुरैया जी, हाँ बताए.
4: वो हम सफी जी पसंद पे है ना, हम देसी मंडी गए थे कल, इतनी मजे की खाना था वहाँ पे. और वी लव दैट फूड एंड
0: अमेजिंग.
4: और वो और जो है वो स्टोर भी बहुत अच्छा है, रीजनेबल प्राइस भी था अभी, तो हमको तो बहुत अच्छा लगा. लेकिन इट्स 1 आवर से ज्यादा हमको ड्राइव करना पड़ा. हाँ. बट इट्स वर्थ इट.
0: देखिए, देसी मंडी, इससे अच्छा प्रमोशन क्या ही हो सकता है उनके लिए जब एक उनके खुद के कस्टमर ये चीज बताते हो. थैंक यू फॉर दैट.
4: और वो, हाँ, गली वो आपका उसका था ना मूवी का.
0: हाँ जी,
4: वो मूवी है ना, मैंने अपने होम टाउन में देखी थी, बहुत पहले देखी थी मैं, तो चौदहवीं का चांद
0: अच्छा,
4: देखी थी मैं।
0: अच्छा,
4: तो उसकी उस वक्त उस थिएटर में टिकट है ना 1.25 रुपया की पैसों की टिकट थी।
0: God, this is
4: तो हम अपने कजन्स हम अपने कजन्स के साथ गए, इतना मजा आया। फिर हम अगर आप अभी भी कितने 500 की भी अगर आप टिकट लेके बैठे ना, तो आपको शायद वो मजा नहीं आएगा।
0: वो मजा नहीं आएगा।
4: मूवी थी,
0: बिल्कुल बेहतरीन फिल्म थी। और फिर उसके अलावा द फैक्ट दैट इतने टाइम की एक प्लानिंग चलती थी फैमिलीज की, कि अगर वो भी जाना है तो एक खर्चा है और उसे बजट करके और वो सारा खर्च। लास्ट कॉलर, लेट्स क्विकली टेक ऑन एयर वेरी ब्रीफली। ओके, ऑलराइट, दिस कॉलर हैज ड्रॉप द कॉल। तो इस बात पे चलिए, उर्वी को मैं बोलने वाली हूँ कि देसी मंडी का जो गिव अवे है ये आपके नाम किया। उर्वी, प्लीज कॉल मी बैक इफ यू आर स्टिल लिसनिंग टू मी, गिव मी अ कॉल बैक। ऑलराइट, वंस अगेन, दिस इज द नॉस्टैल्जिया दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, है ना, कि जब हम पहले के ज़माने में जाते थे मूवी देखने, उसका एक्सपीरियंस वर्सेस अब का एक्सपीरियंस।

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
4: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
5: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
4: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
5: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score, fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
6: घर की याद नहीं आई तुझे जब से?
7: आती है यार, बहुत आती है, इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ।
4: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं, विजिट चंडीगढ़ वाले, जहाँ हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट।
7: सच में बिल्कुल घर जैसा।
4: Try the variety of veg and non-veg specialty kulchas with gravy, butter chicken and many more. Located in Irving, there is Punjabi ghar ka khana on every plate. Chandigarh wale, taste that feels like home.
2: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी। डायग्नोसिस क्लियर है, आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। एजी फिनटैक्स, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी। फ्रॉम टैक्सेस टू सीएफओ एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन। कॉल 425-395-4318 और विजिट agfintax.com. प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद एजी फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज। Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
8: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
2: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
8: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 945-527-0897 और विजिट astrologerishwar.com.
2: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
9: Calculating route, rerouting.
7: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
9: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
7: क्यों?
9: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत। Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
7: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
4: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
9: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
10: हाय, दिस इज अक्षय कुमार एंड यू आर लिसनिंग टू फनेशिया रेडियो।
11: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनेशिया रेडियो।

0: मेड इन इंडिया तो नहीं था, लेकिन ये जो सर्व किया जाता था खाना, ये इटली का था, लेकिन यहाँ यूएस में शुरू किया था दो भाइयों ने मिलके $600 के लोन पर फ्रॉम देयर मदर, एंड द टू ब्रदर्स आर डैन एंड फ्रैंक कार्नी, और उन्होंने ये जो फ्रेंचाइज है ये शुरू किया था। उसका पहला जो रेस्टोरेंट था वो फर्स्ट स्मॉल रेस्टोरेंट दैट वॉज ओपन्ड इन विचिता इन कैंसस सिटी, एंड आपको बताना है मुझे कि वो जगह क्या है। May 31st, 1958 को खोला था डैन एंड फ्रैंक कार्नी ने, ये फाउंडिंग ब्रदर्स ऑफ ए प्लेस दैट बिकेम अ चेन, ए वेल नोन चेन दैट स्टिल रन्स सॉलिड। एंड वो जगह क्या है वो आपको बताना है मुझे, और अगर आप सही सही बताएंगे ना तो आपके लिए मेरे पास एक गिव अवे है, और वो गिव अवे ना इट इज फ्रॉम दिस प्लेस is called let's see if I can quickly pull it out for you. Yes, it's from Sal's Nashville, और ये Sal's Nashville hot chicken का जो giveaway है, ये है free 3 jumbo tenders that you can win, and it is in Richardson, और आप ये redeem कर सकते हैं 5 जून तक। जरूर बताएं मुझे कि क्या है वो जगह, किस restaurant की यहाँ पे बात हो रही है, किस eatery chain की यहाँ पे बात हो रही है जो Dan और Frank Carney ने May 31st, 1958 को शुरू किया था। और ये मैं इसीलिए आज शेयर कर रही हूँ, मैं 31st को भी शेयर कर सकती थी, आज क्या है 28th है ना, 31st संडे है और संडे को मैं आती नहीं हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आज ही कर लेती हूँ ये शेयर। तो बताइएगा जरूर कि इफ यू नो विच चेन आर वी टॉकिंग अबाउट हियर। इट्स अ टफ क्वेश्चन आई नो, लेकिन इटली की शान है, इटली का शान ये खाना। चलिए मैं लेती हूँ इनको ऑन एयर, लेट्स सी इफ दे नो व्हाट प्लेस आई एम टॉकिंग अबाउट। Yes, you are live on
1: Hi, this is Mugda. It seems to be Pizza Hut.
0: It is Pizza Hut. Did you Google? Sachi sachi batana.
1: I definitely Googled it. I didn't know.
0: I appreciate your honesty, first of all, and I appreciate your curiosity also. So, Sal's Nashville Hot Chicken ki taraf se aapke liye free 3 jumbo tenders that you're going to get at this Richardson location, and you have to redeem by June 5th. Lekin na ek aur inka challenge hai, Sal's Chicken ka. I'm going to put you on hold, okay? And I'm going to take all the details while I share this Sal's Chicken Inferno Spice Challenge that they have for everybody else. All right?
1: Mm-hmm, sure, absolutely.
0: Thank you, Mugda. Thank you for that prompt answer. You definitely deserve this next gana by Nazia Hassan. ये लगाती हूँ और आके वापस मैं बताती हूँ आपको Sal's Chicken का जो Inferno Spice Challenge है. All right?

जीनत अमान लुकिंग एब्सोल्युटली हॉट इन दैट वन. और यहाँ पर मैं ना हॉट चिकन सैल्स नैशविल हॉट चिकन के जो गिव अवे है मुग्धा को मिल चुका है फ्री 3 जंबो टेंडर्स फ्रॉम देयर्स. रिचर्डसन में है ये लोकेशन. और मैं यहाँ पे एक और चैलेंज लेकर आने वाली हूँ उन लोगों की तरफ से, सैल्स चिकन की तरफ से, एंड दे आर ब्रिंगिंग दिस अल्टीमेट इन्फर्नो स्पाइस चैलेंज. तो ये इन्फर्नो स्पाइस चैलेंज क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है. तो क्या होगा कि आप जाओगे वहाँ पे, आपको 10 मिनट मिलेगा 3 जंबो एक्स्ट्रा हॉट टेंडर्स खाने के लिए, विथ ओनली 1 कप ऑफ मिल्क दैट यू कैन गेट विथ इट, क्योंकि स्पाइसी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है. और इसके अलावा आपको डिपिंग नहीं मिलने वाली कि आप थोड़े से काम डाउन हो सके, ऐसा नहीं होगा. तो 10 मिनट के अंदर आपको 3 जंबो एक्स्ट्रा हॉट टेंडर्स ख़त्म करने हैं, एंड द प्राइजेस दैट इज़ गोइंग टू रियली ब्लो योर माइंड. अब प्राइजेस के बारे में बताती हूँ. अगर आप एक जंबो टेंडर फिनिश कर पाते हैं तो आपको मिलता है फ्री सैंडविच एवरी डे फॉर 7 डेज. कैन यू बिलीव दैट? अगर आप 2 जंबो टेंडर्स फिनिश करते हैं 10 मिनट के अंदर अंदर का जो टाइम है, यू कैन एंजॉय फ्री सैंडविचेस फॉर 15 डेज. एंड इफ यू कॉन्कर ऑल 3 इन्फर्नो टेंडर्स, यू गेट द ग्रैंड प्राइज, एंड दैट ग्रैंड प्राइज इज ए फ्री सैंडविच एवरी डे फॉर 30 डेज. और ये होने वाला है सैटरडे जून 16 को. सॉरी, लेट मी करेक्ट दैट. अब वो स्पाइसीनेस मेरे दिमाग तक पहुंच गया शायद. सैटरडे जून 6 करेक्ट, आई एम गोइंग करेक्ट दैट अगेन. सैटरडे जून 6 को शाम के 4 बजे होने वाला है, एंड पार्टिसिपेशन इज एब्सोल्युटली फ्री. जस्ट बी रेडी टू साइन अ वेवर बिफोर यू टेक ऑन द हीट. ऑल राइट, दिस इज एन अमेजिंग इन्फर्नो स्पाइस चैलेंज दैट यू कैन बी पार्ट ऑफ एट सैल्स नैशविल हॉट चिकन इन रिचर्डसन, लेडीज एंड जेंटलमैन. एंड सैल्स चिकन की तरफ से, सैल्स नैशविल की तरफ से मुग्धा को ऑलरेडी प्राइस मिल चुका है फॉर नेमिंग द प्लेस विच इज पिज्जा हट, विच वॉज फाउंडेड बाय 2 ब्रदर्स डैन एंड फ्रैंक कानी ऑन May 31st, 1958. एंड गेस वॉट, कुछ ही दिनों में ये सेलिब्रेशन जो आने वाला है, पहला जो खुला था उसके बाद न जाने अभी कितने हैं. अब पिज्जा हट से रिलेटेड कुछ और आप लोगों के लिए अमेजिंग न्यूज दैट आई एम गोइंग टू ब्रिंग. इट इज नॉस्टैल्जिया एक्सप्रेस. तो नॉस्टैल्जिया की बात करने वाले हैं. दिस न्यू न्यूज दैट वी हैव फॉर ऑल ऑफ यू टू नो. ये है गपशप गली विद मी टू

जो जानते नहीं उनके लिए ये खास खबर है एंड इट इज फ्रॉम अटर्नी ओमर ख्वाजा कि आप जानते हैं कि कुछ चीजें ना बता के नहीं होती हैं, यू कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, बट व्हाट यू कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर इज द नंबर एंड द राइट प्लेस टू गो इन सीकिंग द प्रोफेशनल हेल्प. तो यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों के कि कुछ अगर एक्सीडेंट में कुछ पड़े हों आप, या कुछ स्लिप और फॉल, कुछ भी इंसिडेंट हुआ हो, या वर्क प्लेस इंजरी हुई हो, ऐसे में अटर्नी ओमर ख्वाजा को जरूर याद रखें, क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रॉमिस ये लेकर आते हैं कि आपको कुछ पे नहीं करना है अंटिल यू विन, विच मींस अंटिल यू गेट योर कॉम्पनसेशन. तो फ्री कंसल्टेशन के लिए जरूर उन्हें कॉल करें 4693005046. attorneyomer.com इज द वेबसाइट. लेट्स गेट यू इन टू दिस नेक्स्ट ट्रैक और फिर मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को दैट पिज्जा हट न्यूज. दिस इज गपशप गली विथ मी टू.

पता है पिज्जा हट और हसीन लगने वाला है, आई विल टेल यू व्हाई. दे आर लीनिंग इनटू नॉस्टैल्जिया एंड ऑफरिंग कस्टमर्स ए टेस्ट ऑफ द 90s एट सम ऑफ इट्स रेस्टोरेंट्स. जी हाँ, पिज्जा हट के पेरेंट कंपनी ने रिसेंटली पब्लिश किए हैं 155 पिज्जा हट क्लासिक लोकेशंस, जहाँ पे गेस्ट जाके ना वो जो रेट्रो डाइनिंग एक्सपीरियंस हो सकता है ना, वो होता था, वो दोबारा से एक्सपीरियंस करने वाले हैं. विच इंक्लूड्स द आइकॉनिक रेड प्लास्टिक कप्स, चेकर टेबल क्लॉथ्स, वाइनल बूथ्स और साथ में टिफिनी स्टाइल लैम्प्स और वो रेड रूफ. लेडीज एंड जेंटलमैन, आई रिमेम्बर हैविंग इट व्हेन आई वाज इन सिंगापुर. और हम जाते थे यार पिज्जा हट रेस्टोरेंट जो हुआ करता था, डाइन इन रेस्टोरेंट जो हुआ करता था, एंड दैट फ्रेश गार्लिक ब्रेड कमिंग आउट ऑफ द ओवन, एंड देयर वाज आल्सो यू नो वेरियस अदर साइड्स दैट वाज फॉर अ बफे देयर एंड ऑल ऑफ दैट, एंड इट वाज सो फैंटास्टिक टू हियर दिस. एंड गेस व्हाट, ये जो नॉस्टैल्जिया ये वापस लेकर जो आ रहे हैं रेस्टोरेंट्स, और उसमें शामिल होने वाला है टेक्सस भी. टेक्सस में सबसे ज्यादा ऐसे पिज्जा हट क्लासिक रेस्टोरेंट्स में कन्वर्ट होने वाले हैं. 27 स्टेट्स आर गोइंग टू डू इट, एंड उसमें टेक्सस में सबसे ज्यादा लोकेशंस होंगे, 28 लोकेशंस, फॉलोड बाय मिजूरी विथ 15 एंड ओहायो विथ 11 एंड 10 इन जॉर्जिया. एंड आई एम सो एक्सटैटिक अबाउट दिस. वंस अगेन, इट इज पिज्जा हट लेडीज एंड जेंटलमैन, जिसका पहला जो खुला था इट वॉज ऑन 31st ऑफ मे 1958 विचिता कैंसस में, एंड सिंस देन क्लोज टू 20,000 रेस्टोरेंट्स वर्ल्ड वाइड दैट देर इज ऑफ पिज्जा हट.

0: needed to apply और credit पर hard check भी नहीं. Results सिर्फ 10 मिनट में.
1: Business loan options को clarity से समझने के लिए call करें 817-786-3338. 817-786-3338. The SBA Loan Experts. फैसला clarity के साथ.
2: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
3: यार बिजनेस चलाना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है. हर तरफ बस एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस.
4: बिल्कुल, लेकिन तुझे पता है अब वही एक्सपेंसेस तुझे इनकम भी दे सकते हैं.
3: सच में एक्सपेंसेस से इनकम? कैसे?
4: कनेक्टिंग अमेरिका के थ्रू. उनके पास एक यूनिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जो बिजनेस ओनर्स को अपने खर्चों को एक इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है.
3: वाह, मतलब पैसे सिर्फ जाएंगे नहीं वापस भी आएंगे.
4: एग्जैक्टली. अगर तू अपनी बॉटम लाइन बूस्ट करना चाहता है तो जेम्स को आज ही कॉल कर.
3: नंबर बोल जल्दी.
4: कॉल जेम्स एट 321-888-7345 और विजिट connectingamericafinancials.com.
5: कनेक्टिंग अमेरिका, जहां स्मार्ट बिजनेस ओनर्स टर्न कॉस्ट्स इनटू कैश.
2: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
6: Excuse me. It's called being loyal.
2: It's called being predictable.
6: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
2: And what's so special at Neon Cactus?
6: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
2: Not bad.
6: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
2: Okay, this I didn't expect from you.
6: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
0: Hello, accident claim? Okay, name of the lawyer?
7: उमर ख्वाजा.
3: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
8: Hi, this is Saif Ali Khan. You are listening to Fun Asia Radio.
9: Tracks that put you on the right track.

दिस मूवी दैट रिलीज्ड ऑन 22nd ऑफ मे सिस्टम है इस फिल्म का नाम, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा और साथ में ज्योतिका हैव डन अ अमेजिंग जॉब. एक्चुअली आई एम स्टिल वॉचिंग इट. किश्तों में देखना होता है यार, OTT पे देखने का मतलब होता है कि आप अपने वक्त के हिसाब से देखते हो, इसीलिए किश्तों में देख रही हूँ ये फिल्म. एंड सो फार आई एम लविंग इट. एक्चुअली अश्विनी अय्यर तिवारी की ये फिल्म है. ये वही है जिन्होंने नीलबट्टा सन्नाटे के बाद उन्होंने बरेली की बर्फी बनाई थी, इफ यू रिमेम्बर. आई जस्ट लव हर डिरेक्शन. सो ये फिल्म मुझे बहुत अच्छी लग रही है सो फार. ऑल्दो द क्रिटिक्स रिव्यू सेज समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट, अभी तक मुझे वैसा फील तो नहीं हुआ. आशुतोष गवारिकर भी हैं इन दिस मूवी अलॉन्ग विद मेनी अदर वेरी टैलेंटेड एक्टर्स इन दिस वन. एंड सोनाक्षी सिन्हा और ज्योतिका का जो कैमराडरी है ना, आई एम जस्ट लविंग इट इन दिस मूवी. नाम है सिस्टम एंड इट इज ऑन Amazon Prime. Just FYI, ladies and gentlemen. बाकी रही बात फिल्मों की जो आज के दिन रिलीज हुई है, आज यानी कि 28 मई को, दैट इज वॉट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ. तो ये शुरू करें, उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ये जो प्रोसेस होता है ना, H1B, F1, L1 एंड और किसी भी और नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पे हो, और आप जो ये US में परमानेंट रेसिडेंसी का प्लान कर रहे हो, यू वांट दैट, एंड उसके आसपास का जो डायलॉग है इन द पास्ट वीक, वट एवर वी हैव हर्ड अबाउट, यू नो, H1B कन्वर्टिंग इनटू परमानेंट रेसिडेंसी एंड ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन, उन सब चीज़ों के बारे में हम जो इतना सारा नॉइज़ है अराउंड यू कैन जस्ट कट इट आउट. जस्ट गो टू सीमा मेहता लॉ ऑफिसेज एंड फाइंड आउट हाउ they can help you. Attorney Seema Mehta and her experienced team specializes exclusively in immigration law, including EB-5, investor visa, family and employment visas, perm labor certification and US citizenship. Agar aapko EB-5 investor visa program ke bare mein bhi kuch additionally janna hai to aap inse baat kare. Aapko permanent residency kaise mil sakti hai, kya hai seedha rasta, अगर वो सारा कुछ जानना है तो सीमा मेहता लॉ ऑफिसेज शुड बी योर डेस्टिनेशन. यू कैन राइट टू देम info@seemamehtalawfirm.com. डू रिमेंबर दैट. ऑलराइट, अभी जिस फिल्म पे लेकर जाने वाली हूँ, इट रिलीज्ड इन द ईयर 2004, आज ही के दिन 28th of May, लेडीज एंड जेंटलमैन, यश चोपड़ा के बेटे जो है, ही वॉज गोइंग टू प्रोड्यूस इट, आदित्य चोपड़ा. और आदित्य चोपड़ा को और फिल्म के डायरेक्टर को, हु इज कुणाल कोहली, इन दोनों को बता दिया था यश चोपड़ा साहब ने कि भाई ये फिल्म अगर उनको पसंद नहीं आई तो फिर वो अपना नाम उससे हटा देने वाले हैं. जिस पे याद करते हुए, ये चीज़ शेयर करते हुए और इस पे स्माइल करते हुए उन्होंने, कुणाल कोहली ने ये बात कही थी. और ये एक चैलेंज के तरह, you know, the two took up. It was Aditya Chopra who had two failures prior to that. Kali iske bare mein baat kari thi, mujhe nahi pata tha ki Hum Tum aaj ke din release hui thi, kyunki Banti aur Bubbly came right after Hum Tum, aur Banti aur Bubbly successful thi, lekin wo turning point jo tha Aditya Chopra ke career ka, वो था दिस फिल्म विच इज़ हम तुम, लेडीज एंड जेंटलमैन. तो चलिए उसी का एक गाना मैं लगाने वाली हूँ आप लोगों के लिए राइट अबाउट नाउ. एंड इट इज़ ए फिल्म दैट स्टार सैफ अली खान एंड ऑल्सो रानी मुखर्जी इन द लीड. एंड उसका ये गाना ना हम सबको आई थिंक यूनानिमसली काफ़ी पसंद आता है. सो लेट्स टेक यू टू दिस नेक्स्ट ट्रैक एंड आई टेक यू टू अनदर फिल्म विच रिलीज ऑन दिस एग्जैक्ट डे 28th of May.

एंड दैट वॉज द टाइटल ट्रैक फ्रॉम हम तुम, जो रिलीज हुई थी आज ही के दिन 28th of May 2004. इसीलिए मैंने ये गाना बड़े प्यार से लगाया. लव दिस रोमांटिक नंबर एंड इट फिट्स द वेदर ऑल्सो दैट वी हैव टूडे, राइट? तो जिसे इसे कहते हैं नेकी और पूछ पूछ, राइट? एक और फिल्म पे लेकर जाने वाली हूँ जो आज ही के दिन रिलीज हुई थी, लेकिन द ईयर वॉज 1999. सैफ अली और रानी मुखर्जी जो हम तुम में पहली बार एक साथ हुए थे, ठीक वैसा ही कुछ सीन था. सैफ अली खान एंड अनिल कपूर एंड ऑल्सो सलमान खान इन दिस प्रोजेक्ट विच केम आउट इन 1999. और इसका म्यूजिक अनु मलिक ने दिया था और इसमें द लीड एक्ट्रेसेस व तबू एंड करिश्मा कपूर. आई एम श्योर आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा. बहुत सारे नॉमिनेशंस मिले थे और बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते इस फिल्म में, जिसका नाम है BV No. 1. जी हाँ, डेविड धवन की ये फिल्म. और फिल्म का बिजनेस जो है वह काफ़ी अफेक्टेड हुआ था क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप 1999 चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी सुपरहिट साबित हुई, मेकिंग इट द सेकेंड हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ बॉलीवुड दैट ईयर. और पहला था हम साथ साथ हैं, जिसमें वंस अगेन सलमान खान एंड सैफ अली खान वर टुगेदर, राइट? नाउ सलमान खान जब इस फिल्म की डबिंग चल रही थी, ही वॉज इन द US और डबिंग के लिए वो वहाँ नहीं मौजूद थे, तो गेस व्हाट, किसी और ने डबिंग की और ये डबिंग की थी चेतन शशितल ने. आई टेल यू अबाउट हिम अ लिटिल मोर. पहले ये गाना तो यार सुन दे. चेंजिंग गियर्स हियर विद दिस नेक्स्ट ट्रैक फ्रॉम BV No. 1.

एंड दैट वॉज द मूवी बीवी नंबर वन. डेविड धवन की ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही विद सलमान खान. और सलमान खान डबिंग के वक्त इस फिल्म के डबिंग के वक्त, बीवी नंबर वन के डबिंग के वक्त, ही वॉज नॉट इन इंडिया, ही वॉज इन द US, और इसीलिए वो डबिंग नहीं कर पाए थे. तो उनके जगह किसने किया? तो इस सवाल का जवाब है चेतन शशितल. वो हैं जो कि द बिग सी के नाम से जाने जाते हैं मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में. और उन्होंने काफ़ी सारी डबिंग की है, इंक्लूडिंग डबिंग फॉर सम यू नो प्रोजेक्ट्स ऑफ डिज्नी एज वेल. वो अलादीन से लेकर विद द जंगल बुक टू, ही वॉज बलू द बेयर इन टेलस्पिन एंड द जंगल बुक टू. जस्ट FYI इफ यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स हियर. इसके अलावा उन्होंने बॉलीवुड में भी सलमान खान के अलावा और भी कई सारे एक्टर्स के लिए उन्होंने डबिंग की, जैसे सनी देओल के लिए इन आग का गोला, देन संजय दत्त के लिए इन आंदोलन, प्रकाश राज के लिए इन दबंग टू, अनुपम खेर के लिए परंपरा में, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए इन ठाकरे. लेडीज एंड जेंटलमैन, कई बार अनअवेलेबिलिटी की वजह से ऐसी डबिंग होती है, या अगर जो मेकर्स हैं, फिल्म मेकर हैं, अगर उनको डिससैटिस्फैक्शन है अबाउट द लाइंस दैट वाज स्पोकन बाय द एक्टर्स, उस केस में भी कई बार होता है, या अगर हेल्थ इश्यूज के वजह से, या किसी कुछ XYZ रीजन के लिए अगर नहीं कर पाए हो डबिंग, दीज आर ऑल द रीजंस व्हाई डबिंग आर्टिस्ट कम इनटू पिक्चर, या उनकी आवाज़ नहीं अच्छी लग रही हो रही है, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं विच यू नो सॉर्ट ऑफ ट्रिगर्स दिस इंटायरली डिफरेंट एवेन्यू ऑफ डबिंग. और डबिंग आर्टिस्ट चेतन शशिथल जो कि गाते भी हैं, उन्होंने इस अगले गाने में अपनी आवाज़ दी. और उनके साथ मेन लीड्स में कुछ और जो सिंगर्स थे उनके नाम भी मैं बताते चलूं. इट इज़ कुणाल गांजावाला, लॉय मेंडोसा, शंकर महादेवन जैसे सिंगर्स इस फिल्म के लिए, और उनकी आवाज़ इस गाने में. सो लेट्स टेक यू टू दिस वॉइस हियर. और यहाँ पर चेतन शशिथल के साथ शंकर महादेवन और जावेद अली की आवाजें हैं इस गाने में. लेट्स लिसन टू दिस नेक्स्ट गाना फ्रॉम क्यू हो गया ना. एंड डू रिमेंबर द नेम ऑफ द डबिंग आर्टिस्ट इज चेतन शशितल.

0: It is 29 past 12, ladies and gentlemen. तो समझा करिए, जाने का वक्त हो रहा है, सिमी के आने का वक्त हो रहा है. तो enjoy her show. This is me too signing off for the day. मुलाकात होगी कल 10 बजे.
1: Frisco is growing fast and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
2: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
3: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
4: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
3: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
5: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
6: इन प्लेनो. एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
2: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
7: क्या मतलब?
8: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
8: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
7: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
9: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
11: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी. तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
12: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का.
13: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
11: विजिट psychicramnath.com. कॉल 4693474401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
14: Dude, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
15: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
14: कैसे?
15: पेज 3 ईटरी?
14: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन.
15: Dude, इट्स पेज 3. स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट.
14: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं.
16: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट.
17: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
18: हाँ.
17: घर रिलोकेट करनी है?
18: हाँ.
17: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
18: हाँ भाई हाँ.
17: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
19: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
9: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
8: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
5: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
3: Hi, this is Madhavan and you're listening to me on my official radio station, Phoenicia Radio.

A very good afternoon, my desi people. Welcome to the show Afternoon Adda with me, यानी कि RJ Simmi, aka RJ Desi Girl. हम Thursday को ना Throwback Thursday बनाते हैं और आज का Throwback topic है school वाला summer vacation. जी हाँ, मैं आपको पूरा nostalgia में डुबाने वाली हूँ. मतलब गर्मी की छुट्टियों के बारे में सुनते ही मुझे तो नानी का घर, ट्रेन की जर्नी, पेड़ से आम तोड़ के खाना, ये सब याद आता है कि कितनी मस्त लाइफ थी यार. कोई स्ट्रेस नहीं था, सिर्फ मस्ती ही मस्ती थी. हाँ, बीच बीच में कभी कभी मम्मी पापा से हॉलिडे होमवर्क के लिए डांट पड़ जाती थी, बट कंप्लीट तो हमें लास्ट वीक ही करना होता था और कभी कभी वो भी नहीं हो पाता था. वैसे आपको नानी का घर और यू नो स्कूल मेमोरीज जो समर वेकेशन की रही हैं, आपको कुछ याद है? आप मेरे साथ कुछ शेयर करना चाहेंगे तो कॉल कीजिए 972-235-5555 पे.

0: लड़के।
1: आज हम बातें कर रहे हैं थ्रोबैक थर्सडे के बारे में और आज का टॉपिक है समर वेकेशन की मेमोरीज। जी हाँ, अभी अभी हमें कॉल्स आए हैं हमारे लिसनर्स के और सुरोमा जी ने काफी कुछ बताया कि उनको जो है उनकी फेवरेट समर वेकेशन मेमोरी है कि जब वो अपने नानी के घर जाते थे और यू नो मल्टीपल ट्रेन जर्नीज लेनी पड़ती थी क्योंकि इतनी कनेक्टिविटी वगैरह नहीं थे और छुट्टे लेके जाने पड़ते थे दोस्तों, क्योंकि डिजिटल पेमेंट नहीं था उस टाइम, यूपीआई नहीं होता था। और तो और सेफ्टी पर्पसेस के लिए मोजे जो हैं सॉक्स में, उसमें भी लोग पैसे लेके जाते थे कि कभी कोई बच्चा खो गया तो एटलीस्ट वो एक कॉल तो कर पाए। और सूट केसेस होते थे, मतलब बड़े बड़े सूट केसेस जिसमें ताले लगाए जाते थे और बड़े बड़े चेन्स लगाए जाते थे ट्रेन्स में चोरी ना होने के डर से। और बहुत सारी चीजें हैं, मतलब बहुत सारी यादें हैं कहे तो। और इसका मतलब मैं आइकॉनिक पार्ट तो सबसे ज्यादा यही हुआ करता था कि मुझे जो याद है कि कजिन्स के साथ ना रात को एकदम तारों और सितारों के नीचे सोना, देर रात तक गप्पे करना, ढेर सारे गेम्स खेलना, बहुत सारा कार्टून देखना, सनसेट तक क्रिकेट खेलते रहना एकदम लास्ट बॉल पे, और अपने अपने स्कूल की स्टोरीज सुनाना कजिन्स को। वो आपको याद है क्या वो कूलर की आवाज और वो जो ब्राउन पेपर का कवर हुआ करता था बुक्स और कॉपीज पे, आजकल कहाँ देखने को मिलता है। तो यही चाहत है और यही विश है मेरी कि हमें ना अपनी अपनी मेमोरीज को हमेशा संभाल के रखनी चाहिए और थोड़ा सा बचपन कभी नहीं खोना चाहिए क्योंकि जरूरी है ये चीजें भी। तो आपकी फेवरेट समर वेकेशन मेमोरी क्या है जी, मुझे बताइए कॉल करके एट 972-235-5555 पे।

0: मुझे तो इस सॉन्ग पे भी अपने कजिन्स के साथ डांस करना बहुत याद है। समर वेकेशन में बहुत इंजॉय करते थे हम ये सॉन्ग, चले जैसे हवाएं। जी हाँ, आज का टॉपिक है थ्रोबैक थर्सडे, समर वेकेशन की मेमोरीज। और बहुत सारे लिसनर्स हमें कॉल कर रहे हैं, हमें बहुत मजा आ रहा है सबकी स्टोरी सुनने में। और प्यारे लिए हिरानी जी जो है अभी 74 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन उनको अपने समर वेकेशन में कजिन्स के साथ मस्ती करने के लिए जो मार पड़ी थी ना नाना जी से, वो अभी तक याद है जी। उनकी जो समर वेकेशन की मेमोरी में उनको पता है कि अरे यार, नाना जी से पिटाई बहुत पड़ जाती थी, मस्ती तो होती थी लेकिन पिटाई भी हो जाती थी सबकी लगातार। और हरमन जी ने भी हमें कॉल किया और उनको भी जो फेवरेट मेमोरी है उनके कजिन्स के साथ ही है, वो तो अम्बाला से लेके अहमदनगर, जो कि बहुत ही लंबी ट्रेन जर्नी है 30-32 घंटे की, तब की वो ट्रैवल करके जाया करते थे। और आजकल जिसको सीनिक रूट कहते हैं ना, वो एक्सपीरियंस करते थे, मतलब अजंता अलोरा के केव्स देखने को मिल रहे।
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क, यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, पायलट पॉइंट टेक्सास, साइमलकास्टिंग ऑन KTCG 104.1 FM HD2, सैंगर टेक्सास, ऑफिशियल टैक्स एंड फाइनेंस पार्टनर AG Fintax, पावर्ड बाय फन एशिया फिल्म्स एंड फन पिज़्ज़ा किचन, ऑफिशियल इंजरी लॉ पार्टनर, द लॉ ऑफिसेस ऑफ ओमर ख्वाजा।
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 Kaiser Way, सुइट 205, फ्रिस्को।
3: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
4: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
1: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
5: इतना सब और प्राइस?
1: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन, समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
6: मैं हीरो।
7: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट। When it comes to taxes, only one name pops up, AG Fintax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG Fintax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna, that's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG Fintax. Plan today, profit tomorrow.
8: 2026 mein aapki rashi ke liye dhan aur safal के योग
9: है। अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
11: Big achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great

0: आ गई मैं आपसे प्यारी प्यारी बातें करने अपना शो लेके आफ्टरनून अड्डा. यू आर लिसनिंग आरजे सिमी एके आरजे देसी गर्ल ओनली ऑन फनेशिया रेडियो 104.9 एफएम. और आज का थ्रोबैक थर्सडे का जो टॉपिक है वो है समर वेकेशन की मेमोरीज के बारे में. और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको मेंशन किए बिना ना ये टॉपिक कंप्लीट ही नहीं हो सकता. जैसे कि रसना का वो जग, रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में रखा हुआ तरबूज यानी कि वाटरमेलन, आइस वाटर बॉटल्स मतलब कि पूरे पानी में ऐसे बर्फ वाले हम फ्रीजर में रख देते थे, उससे निकालते थे और धीरे धीरे पिघलती बर्फ को एकदम ठंडा ठंडा पानी पी के मजा ही आता था. और भी बहुत कुछ है. और समर वेकेशन है ना सिर्फ एक हॉलीडेज नहीं होता था, वो एक फैमिली बॉन्डिंग का सीजन हुआ करता था. जैसे कि हरमन जी ने हमें बताया कि वो 10 से 15 कजिन्स के साथ एक साथ जो है ये लोग मजे करते थे, सोते थे, बहुत सारी बातें करते थे, गेम्स खेलते थे और पान खा खा के जो है अमिताभ बच्चन की एक्टिंग किया करते थे. तो हरमन जी ये आपको डेडिकेटेड है और ये डेडिकेटेड है शफी को भी. आई होप यू लाइक दिस सॉन्ग खाई के पन बनारस वाला.
1: और भंग का रंग जमा हो चकाचक फिर लो पान चबा. और

दादा मैं कैसा भोला भाला हाँ। अरे कैसा सीधा सादा मैं कैसा भोला भाला, जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखो।

जिनको बहुत ज्यादा मतलब जो नॉन वेजिटेरियन है और जिनको चिकन बहुत पसंद है उनको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि सेल्स चिकन लेके आए हैं एक अमेजिंग सा इन्फर्नो स्पाइस चैलेंज। सो हियर्स द डील, आपको जो है 10 मिनट में 3 जंबो एक्स्ट्रा हॉट टेंडर्स खाने हैं, और आपको मिलेगा सिर्फ 1 कप ऑफ मिल्क और कोई डिप वगैरह नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो प्राइजेस है ना वो टोटली वर्थ द पेन है जी। मतलब अगर आपने 1 जंबो टेंडर खाया तो आपको मिलता है 1 फ्री सैंडविच फॉर 7 डेज, और अगर आपने 2 जंबो टेंडर्स खा लिए तो यही फ्री सैंडविच आपको मिलेगा 15 दिनों के लिए, फ्री फ्री फ्री। और अगर आप निकले वो इन्फर्नो चैलेंज के विजेता जिन्होंने सारे ही 3 टेंडर्स खा लिए, तो आप जीत सकते हैं ग्रैंड प्राइज विच इज फ्री सैंडविच एवरी डे फॉर 30 डेज। और ये हो रहा है June 6 को 4 बजे ऑन सैटरडे। और अगर आपको इस चैलेंज के लिए खुद को रजिस्टर करना है तो आप फन एशिया के वेबसाइट पे जाके भी रजिस्टर कर सकते हो। तो करो दोस्तों, कितनी मस्त चीज है यार, खाने के भी चैलेंजेस हो रहे हैं, बहुत कम होता है ऐसा।

आप सुन रहे हैं फन एशिया 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमी अपने शो आफ्टरनून अड्डा के साथ। और दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है ना कि कभी कभी ग्रॉसरी शॉपिंग जो है यहाँ पे काफी ज्यादा ही टायरिंग हो जाती है, भूख बहुत लग जाती है उसके बाद, और लगता है कि अब घर जाके खाना कौन बनाए। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि इस सब प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन है जो कि है देसी मंडी, तो क्या आप लुइसविल जाके वो एक्सप्लोर नहीं करोगे? मतलब सब कुछ जो भी आपके एंड टू एंड ग्रॉसरी रिक्वायरमेंट्स है ना, चाहे आपको स्पाइसेस खरीदना हो, स्वीट्स खरीदना हो, हलाल मीट खरीदना हो, स्नैक्स खरीदना हो, सब कुछ देसी मंडी में मिल जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनका जो रेस्टोरेंट है विद इन द स्टोर वो भी काफी अमेजिंग है। मतलब शॉपिंग करो, थक गए, कोई बात नहीं जी, आपको घर जाके खाना थोड़ी बनाना है, आपके बाप तो देसी मंडी में हो, सब कुछ अंडर वन रूफ है। तो अगली बार जब भी आप ग्रॉसरी शॉपिंग करने जाएं तो देसी मंडी जरूर जाएं।

0: is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
1: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
2: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
1: Visionary Eye. See clearly, live boldly.
3: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
4: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
5: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
6: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
5: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
6: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
5: ये क्या होता?
6: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
2: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
7: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल। कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com।
8: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम। वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डैलस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी। Desi Mandi, powered by Desis, loved by Dallas.
9: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
10: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833 गेट उमर और विजिट अटर्नी उमर डॉट कॉम।

आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम और शो का नाम है आफ्टरनून अड्डा और मैं हूं आरजे सिमी, आपकी आरजे देसी गर्ल। जी हां, अभी वक्त आ गया है गिव अवे राउंड का, सो तैयार हो जाइए। और आज का सेशन जो है वो थ्रोबैक थर्सडे था और हमने बहुत सारे समर वेकेशन की मेमोरीज डिस्कस की, तो हमारे गिव अवेज भी उसके अराउंड ही होने वाले हैं। जी हाँ, अगर आपने ये गिव अवे जीता तो आपको मिलता है नियॉन कैक्टस की तरफ से $20 का डिस्काउंट ऑन द डाइन इन, एंड दिस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट इज फेमस फॉर इट्स मैक्सिकन फूड। तो ध्यान से सुनिए और तैयार रहिए बिल्कुल जवाब देने के लिए। गिव अवे क्वेश्चन ये है कि जो शक्तिमान का शो हुआ करता था उसमें शक्तिमान का पूरा नाम क्या था और उनका जो ह्यूमन फॉर्म था बेसिकली, प्रोफेशन अगर आपको पता है तो बता भी दे सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन है वो ये है कि उनका पूरा नाम जो है वो क्या था। और एक्टर का नाम मैं नहीं पूछ रही हूँ, मुकेश खन्ना जो एक्टर है उनका नहीं पूछ रही हूँ, आपको शक्तिमान का नाम बताना। अगर आपको जवाब पता है तो कॉल कीजिए 972-235-5555 पे।

बहुत सारे कॉल्स आ गए मुझे इस क्वेश्चन पे और बहुत मजा आया मुझे ये गिव अवे राउंड खेल के। और क्वेश्चन ये था कि शक्तिमान का जो शो है उसमें उनका पूरा नाम क्या था, और जवाब है पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकार नाथ शास्त्री जी। और ये इनका जो प्रोफेशन था वो था न्यूज़पेपर फोटोग्राफर का। और आज की विजेता हैं प्राजक्ता जी, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस प्राजक्ता जी, आपको मिलता है नियॉन कैक्टस की तरफ से $20 का डिस्काउंट। और मैं आपको बता दूं नियॉन कैक्टस के बारे में कि यहाँ पे ना मैक्सिकन फूड जो है ग्लोबल इन्फ्लुएंस से मिलता है और फ्रेश इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं ये, जबीहा हलाल ऑप्शंस भी हैं इनके पास और बहुत सारे वेजिटेरियन चॉइसेस भी हैं। अगर आपको यंग कलरफुल या मॉडर्न फुल ऑफ एनर्जेटिक वाइब चाहिए चिल करने के लिए, हैंग आउट करने के लिए, किसी को डेट पे ले जाने के लिए, तो आप ज़रूर जाएं नियॉन कैक्टस। और यहाँ पे इन खाने ऑप्शंस के अलावा आपको बहुत सारा क्यूरेटेड मॉकटेल और कॉकटेल्स ऑप्शंस भी मिलेंगे। इनके हैप्पी आवर्स भी हैं मंडे टू फ्राइडे और हर दिन कुछ ना कुछ स्पेशल डील जरूर चल रहा होता है, तो आप बिल्कुल चाहिए नियॉन कैक्टस का और अच्छे अच्छे खाने का आनंद उठाइए।

अगर आप मलाबार गोल्ड एंड डायमंड की ज्वेलरी पहन के निकलोगे तो सब आपको यही कहेंगे कि तेरा मुखड़ा देख दे रहना जी जी हाँ, क्योंकि मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के जो डायमंड ज्वेलरी कलेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा स्टनिंग है, एलिगेंट है, टाइमलेस है और हर पीस ना बहुत ही ब्यूटीफुली क्राफ्ट किया गया है, जो कि आपके स्पेशल मोमेंट्स में थोड़ी और जान, थोड़ा और स्पार्कल ऐड कर देता है। जी हाँ, यहाँ आपको मिलते हैं ब्यूटीफुल रिंग्स एंड ईयरिंग्स से लेके डैजलिंग नेकलेसेस तक, कंटेम्प्रेरी डायमंड स्टाइल्स भी अवेलेबल हैं और यहाँ आपको मिल सकता है आपका परफेक्ट पीस एंगेजमेंट के लिए, एनिवर्सरीज के लिए, किसी भी सेलिब्रेशन के लिए, या फिर अगर आपको खुद को भी अगर ट्रीट देनी हो ना लड़कियों, तो भी आपको मलाबार गोल्ड्स एंड डायमंड जाके उनका कलेक्शन ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। और अगर आप नहीं जा पा रहे तो भी कोई बात नहीं, आप उनका मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो ना, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा।

0: हाँ मतलब अगर पूरा जग भी घूम लीजिए ना, तो आपको फन एशिया जैसा एंटरटेनमेंट तो कहीं नहीं देखने मिलेगा। मैं हूँ आरजे सिमी और आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो 104.9 FM। और मैं आपको इस वक्त बताना चाहती हूँ माई टाइम इक्विटी के बारे में, विच इज लेड बाई CPA सुधीर पाई। वो ना इंडिविजुअल्स और फैमिलीज को हेल्प करते हैं स्मार्टर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज बनाने में थ्रू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल स्टेट अपॉर्चुनिटीज और बहुत सारे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में भी वो आपको बताएंगे। अगर आप प्लान कर रहे हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ या फिर कोई रिटायरमेंट प्लान्स, या फिर अगर आप सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट्स को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो माई टाइम इक्विटी कैन बी अ परफेक्ट सोल्यूशन फॉर यू, अ परफेक्ट स्टॉप फॉर यू, क्योंकि ये डिजाइन किया गया है अराउंड योर गोल्स। अगर आपको इस पे और जानकारी चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं mytimeequity.com पे या फिर 4697021272 पे भी कॉल कर सकते हैं। जी हाँ, वेबसाइट है mytimeequity.com और कॉलिंग नंबर है 4697021272 पे। अभी आने वाला है एक छोटा सा ब्रेक, बट ब्रेक के उस पर मैं लेके आ रही हूँ गिव अवेज।
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क। यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, पायलट पॉइंट टेक्सास, साइमलकास्टिंग ऑन KTCG 104.1 FM HD2, सैंगर टेक्सास, ऑफिशियल टैक्स एंड फाइनेंस पार्टनर AG Fintax, पावर्ड बाय फन एशिया फिल्म्स एंड फन पिज़्ज़ा किचन, ऑफिशियल इंजरी लॉ पार्टनर, द लॉ ऑफिसेस ऑफ ओमर ख्वाजा।
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
3: ओ हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
6: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
5: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
6: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
4: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। जीनो क्रेडिट रिपेयर हेल्प्स यू चैलेंज इनएक्यूरेट, आउटडेटेड या अनवेरिफाइबल आइटम्स ऑन योर रिपोर्ट। नो अपफ्रंट फीस, फुल ट्रांसपेरेंसी एंड द राइट टू कैंसिल एनी टाइम। कॉल 1-800-400-9468। जीनो Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
11: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
12: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
11: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
12: वेट, वॉट?
4: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के decisions कोर्ट लेता है।
13: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
4: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
14: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
15: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
16: कुछ भी नहीं, उड़ा डेट रिलीफ विल डू इट फॉर अस।
15: क्या मतलब?
16: उड़ा कैन हेल्प अस सेव अप

आप सुन रहे हैं फनेशा रेडियो 104.9 FM और मैं हूँ आरजे सिमी, लेके आई हूँ अपना शो आफ्टरनून अड्डा विद माय प्यारे प्यारे लिसनर्स। और अभी वक्त हो गया है हमारे सेकेंड राउंड ऑफ गिव अवे का, तो जो जो लोग पिछली बार नहीं जीत पाए, थोड़ा लेट हो जाए, कोई बात नहीं, एक और मौका है, फिर से ट्राई कीजिए, जिंदगी तो ट्राई करने का ही नाम है, है ना। और आज का जो सेगमेंट था वो था हमारे समर वेकेशन की मेमोरीज के बारे में। और अगर हम मेमोरीज के बारे में बात करते हैं ना, तो रसना ज़रूर याद आ जाता है, और मेरा नेक्स्ट गिव अवे क्वेश्चन भी उसके अराउंड ही होने वाला है। और मुझे पता है कि मुझे बहुत सारे कॉल्स आने वाले हैं, आपको जल्दी जल्दी से मुझे कॉल करना है। जीतने पे आपको मिलेगा फन पिज़्ज़ा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड, तो तैयार हो जाइए। क्वेश्चन ये है कि रसना का फेमस जो टैगलाइन था वो क्या था, याद कीजिए और कॉल कीजिए 972-235-5555 पे।

दोस्तों अभी अभी हमने अपना गिव अवे राउंड जो है कंप्लीट किया है. क्वेश्चन था कि रसना का फेमस टैगलाइन क्या है, एंड आई लव्ड हाउ सम ऑफ द लिसनर्स यू नो उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने उसे एग्जैक्ट सेम फ्लो में बोला, आई लव यू रसना. जी हाँ, जवाब यही है और सबसे पहले सही जवाब दिया है रविकांत जी ने. रविकांत जी, आपको मिलता है फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड. कॉन्ग्रेचुलेशन. फन पिज्जा किचन जो है ना, ये ऐसी जगह है जहाँ पे फ्लेवर और फायर ऐसा मतलब मिल रहा है, संगम हो रहा है जैसे. और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अचारी पनीर पिज्ज़ा. जी हाँ, यहाँ पे मस्त पनीर है ना, ऐसा खेलते रहते हैं, मेल्ट होते रहते हैं स्पाइसेस में. और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आपको मीट बहुत पसंद है, देन तंदूरी चिकन पिज्ज़ा इज अ प्योर स्मोकी परफेक्शन, क्योंकि ये तंदूर से सीधे आपके टेस्ट बर्ड्स पे अटैक करता है और आपको बहुत ही मज़ा आता है इसको खाने में. या तो अगर आपको बोल्ड पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद है ले, या तो फिर अगर आपको माइल्ड या ब्यूटीफुली बैलेंस्ड पिज्ज़ा चाहिए, किसी भी तरीके का पिज्जा चाहिए, यहाँ जरूर जाएं, क्योंकि फन पिज्जा किचन पे एक स्लाइस आपका इंतजार कर रहा है काफी देर से कि आओ और मुझे खा लो. फॉर डिटेल्स प्लीज विजिट funpizzakitchen.com. और रविकांत जी, आपको तो पता ही है आपको क्या करना है, जाइए फन पिज्जा किचन फ्रिस्को में और अपना गिफ्ट कार्ड को यूटिलाइज कीजिए, रिडीम कीजिए.

ऑल राइट डैलस, ध्यान से सुनिए। और अगर आप स्टोर ओनर है ना, तो आपको तो और भी ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए है। जी हाँ, रवि इम्पोर्ट्स वेयर हाउस जो है अपना समर किक ऑफ लेके आ गए हैं वापस से, और ये हो रहा है June 3rd और 4th को सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक। और इस साल है ना, ये और भी अमेजिंग, और भी बेहतर, और भी बिगर होने वाला है, क्योंकि इनका पूरा का पूरा वेयर हाउस एक ट्रॉपिकल एक्सपीरियंस में बदलने वाला है। यहाँ आपको मिल सकते हैं क्रेजी डील्स, बहुत सारे नए प्रोडक्ट लॉन्चेस भी हो रहे हैं दोस्तों, और फ्री गिफ्ट्स तो हैं ही हैं, मतलब पूरे दिन। और आपको बिल्कुल चांस मिलता है कि आप नए नए वेंडर्स से मिले, बहुत सारे बेस्ट सेलर्स आइटम्स भी आपको मिल सकते हैं, और आपको कुछ नहीं करना, आपको फटाफट स्टॉक कर लेना है फॉर रेस्ट ऑफ द ईयर। एंड पीपल हु डू नॉट नो द एड्रेस, इट्स 11029 Harry Hines Boulevard, Building 8, Dallas. Ravi Import Warehouse is the name, guys.

हाँ जी, आई ऑल्सो लव माई जिंदगी और इतना ही प्यार मैं अपने लिसनर से भी करती हूँ, लेकिन क्या करे, अब जाने का वक्त आ गया है और आज का आफ्टरनून अड्डा शो यहीं खत्म होता है और मिलेंगे मंडे को दोबारा ये शो लेके आएंगे आपके लिए। और तब तक के लिए मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो आफ्टरनून अड्डा शो है ना, दिस इज़ ब्रॉट टू यू बाई ओमर ख्वाजा विथ हिज ट्रैफिक अपडेट्स अराउंड DFW एंड एक्सीडेंट रिपोर्ट। अगर आप किसी कार या ट्रक एक्सीडेंट में अनफॉर्चुनेटली इन्वॉल्व हो गए हो या फिर किसी स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट में, तो अटर्नी ओमर ख्वाजा विल हेल्प यू फाइट योर केस। जी हाँ, ये तब तक पे नहीं करने बोलते जब तक कि आप केस अपना जीत ना जाए, और आपको हेल्प भी करेंगे जो इंश्योरेंस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका जो पूरा प्रोसेस है उनके साथ डील करने में पूरा कभी कभी काफी स्ट्रेसफुल हो जाता है, राइट? आई मीन, एक तो आपको इंजरी हुई है, गाड़ी टूटी हुई होती है, लेकिन उमर ख्वाजा है ना रेस्क्यू के लिए। तो अगर आपको चाहिए किसी टाइप का फ्री कंसल्टेशन फ्रॉम उमर ख्वाजा एंड हिज टीम, तो आप कॉल कर सकते हैं एट 4693005046 पे। एक और बार बता देती हूँ, 4693005046, या फिर आप उनका जो वेबसाइट है attorneyomar.com, उस पे भी विजिट करके डिटेल्स ले सकते हैं। तब तक के लिए इंजॉय कीजिए और फन एशिया सुनते रहिए, क्योंकि फन एशिया जैसा इंटरटेनमेंट ना मिलना जरा मुश्किल है। हम बड़े अच्छे अच्छे गाने बजाते रहते हैं आपके लिए, आपके एंजॉयमेंट के लिए। सो कीप लिसनिंग एंड कीप रॉकिंग गाइस, सी यू अगेन नेक्स्ट डे, सेम शो।

0: पंडित जी दूल्हा है दुल्हन है, हम हवन लगवा के फेरे ले ले।
1: अरे मैं पंडित दिखता हूँ नहीं, मेरी तो बाहर आलू चाट की रेडी है।

A very good afternoon to the listeners of 104.9 FM Fun Asia Radio सुन रहे हैं आप. मैं हूं किरण आपके साथ. Thank you so much for connecting with us this afternoon, Monday to Friday, 2:30 PM till 5 PM. मैं रहती हूं आपके साथ right here on the airwaves of 104.9 FM और आप भी मेरे साथ रहते हैं 972-235-5555 के थ्रू. आज है जी Thursday. आप जानते हैं the first Thursday of every month मैं आपके लिए लेकर आती हूं food junction, यानी कि हम उसमें बात करते हैं different मुल्कों की, उनमें जिन शहरों को हम एज अ टूरिस्ट विजिट करते हैं और वहां हमें क्या खाना चाहिए, उनके लोकल फेवरेट्स क्या हैं, उनके देसी फेवरेट्स क्या हैं. और जो बाकी थर्सडेज होते हैं उसमें हम लेकर आते हैं वो 90s का बॉलीवुड, वो जमाना, वो दौर जब मोहब्बत रीडिफाइन हुई, हीरोज रीडिफाइन हुए, हीरोइंस रीडिफाइन हुई, म्यूजिक रीडिफाइन हुआ, सिंगर्स नए नए आ रहे थे, एवरीथिंग न्यू वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द 90s का दौर. एंड आई एम ऑफिशियली इन लव विद वो 90s का बॉलीवुड. Bird.

90s का बॉलीवुड वो दौर, जैसे हम बात कर रहे थे, नए नए स्टार्स आ रहे थे, ये भी बॉबी देओल भी नए नए आए. वैसे तो स्टार्टिंग ही 90s का नए स्टार से हुआ. अगर हम 89-88 से उसको भी हम 90s में ही शुमार कर लेते हैं. 88 आमिर खान ने एंट्री ली, 89 सलमान खान ने एंट्री ली, 92 शाहरुख खान ने एंट्री ली, अक्षय कुमार भी अराउंड 91-92 में ही आए थे. एंड देन आगे आगे जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, बॉबी देओल और सो मेनी न्यू पीपल एज हीरोज और इवन जो एक्ट्रेसेस नई नई आई बहुत सारी, वो अब तक हमें जो है यू नो स्टार्स नजर आते हैं स्क्रीन पे और अपना जादू बिखेरते हुए. ये है वो 90s का बॉलीवुड जिसने दिया वो बेस बॉलीवुड को, जो अब उस बेस के ऊपर बहुत बड़ी एक बिल्डिंग तैयार हो चुकी है जी. तो अगला गाना मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत दिल है कि मानता नहीं से प्ले करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बताऊँ कि अगर आप यू लुकिंग फॉर अ ड्रीम होम देन ड्रीम होम मॉर्गेज इज हेयर टू हेल्प यू. 1998 से हेल्प कर रहे हैं जी तमाम लोगों को जो अपने होम ओनरशिप की ड्रीम रखते हैं, वो ड्रीम होम मॉर्गेज के पास जाते हैं और उनको हेल्प करती है ड्रीम होम मॉर्गेज और उनकी पर्सनलाइज एक्सपीरियंस टीम. और खास तौर पे दे आर लाइसेंस्ड इन ऑल 50 स्टेट्स. स्मूथ और स्ट्रेस फ्री प्रोसेस आपके लिए होता है. और अगर आप नया घर खरीदना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, रीफाइनेंस करना चाहते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उसे ड्रीम होम मॉर्गेज से डिस्कस कीजिए एंड दे विल बी able to help you. 972-245-5626 972-245-5626 या फिर उनकी वेबसाइट dreamhomemortgage.com.

This part of our show is brought to you by AG Fintechs, one of the fastest growing tax firms in the US. Offer karte hain aapko innovative financial services with untapped potential for both individuals as well as businesses. Trusted hain, efficient hain, and they get you ready for your future. So you have any questions, give them a call. 469-942-9888 ya phir agfintax.com is where you need to log on to find out all that information. तो आप सुन रहे हैं Afternoon Drive Time with Sunehri Kiran में वो 90s का Bollywood. 90s एक ऐसा दौर जब cassettes rewind हुआ करते थे और कई बार तो pencil से ही हम rewind करते थे. टूट जाते थे तो टेपों से जोड़ा करते थे या फिर nail polish लगा के जोड़ दिया करते थे. और वो दौर था ये 90s का जब love letters हाथों से लिखे जाते थे. WhatsApp और ये सब तो था नहीं जी, हाथ से ही लिखे जाते, कई बार तो खून से भी लिखे जा रहे होते थे. और बॉलीवुड के गाने सिर्फ सुने नहीं जाते थे बल्कि उन्हें महसूस किया जाता था. द सॉन्ग्स वर नॉट सॉन्ग्स, दे वर मेमोरीज, दे वर इमोशंस दैट वी वर लिविंग. यही वो 90s के बॉलीवुड का मजा है जो मैं लेकर आती हूँ आपके लिए एवरी थर्सडे, जस्ट नॉट द फर्स्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, क्योंकि वो तो होता है खाने पीने का दौर.

0: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
1: अरे भाई वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट.
2: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन. चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर. लॉसिन ट्रैवल. फॉर नियरली 30 इयर्स लॉसिन ट्रैवल हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज प्लान स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स विद द बेस्ट एयरफेयर्स, वेकेशन पैकेजेस, क्रूजेस एंड कस्टमाइज्ड ट्रैवल सॉल्यूशंस. लॉसिन ट्रैवल मेक्स एवरी जर्नी स्मूथ, अफोर्डेबल एंड टेंशन फ्री. कॉल नाउ 214-631-2458 or visit lawsontravel.com.
3: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. FunAsia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jitu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
4: Tune sunte hi brand click kar gaya na, just like that. When it comes to taxes, only one name pops up, AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Grandhi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Grandhi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
5: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
6: Calculating. Rerouting.
5: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
6: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ.
5: क्यों?
6: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं. डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत. फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ.
5: अच्छा तो सीधा वही ले चलो.
3: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
6: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
7: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है. पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी. पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं. प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है. साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं. आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से एट 6823464611 और विजिट masterjoshiram.com. अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई.
8: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिसर्च में वेरी.
9: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी. सच बता, लॉटरी लगी है क्या?
10: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी. जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे के2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी.
9: के2 ड्राइव मतलब?
10: मतलब

0: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
1: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे के टू ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
0: के टू ड्राइव मतलब?
1: मतलब गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब के टू ड्राइव हैंडल करता है।
0: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
1: 100%
2: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट के टू ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट के टू ड्राइव डॉट कॉम और कॉल 214-814-0402। Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
3: Desi cravings simple nahi hoti. Unke levels hote hai. Level 1, mix veg pakora. Light, crispy, perfect shuruaat. Level 2, masala omelette aur dahi bhalla. Thora nostalgia, thora comfort. Level 3, Amritsari kulcha platter ya pindi chana. Full Punjabi mode on, fully loaded. Aur jab bhook ho next level, slow cooked keema matar. Rich, bold, no compromises.
4: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड PGPT। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
5: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?
6: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।
7: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फन एशिया 104.9 FM।

यू ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फन एजर रेडियो, वो 90s का बॉलीवुड सुन रहे हैं आप ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. थैंक यू फॉर ऑल योर कॉल्स, फॉर योर रिकमेंडेशंस और पसंद करने का. 90s का बॉलीवुड लेके ही आपकी ख्वाहिश और आपकी रिक्वेस्ट भी लेके आई हूँ, क्योंकि आप सब बहुत पसंद करते हैं उन गानों को, वो जो गोल्डन एरा था जब जैसे हम कह रहे हैं कुछ बेहतरीन सिंगर्स, अभी तक तो हम स्टार्स की बात कर रहे थे, कुछ बेहतरीन सिंगर्स देखे उस दौर ने, बॉलीवुड ने कुछ बेहतरीन सिंगर्स को इंट्रोड्यूस किया और आज तक उनका चार्म और उनकी जो ब्यूटी है उनके गाने की, वो हम रिलिव करते हैं, एंजॉय करते हैं. उन सिंगर्स में कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति, अभिजीत, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो मतलब होता था ना कि हर अगला गाना इनमें से किसी एक का होता था, हर दूसरा गाना इनमें से किसी एक ने गाया होता था. जैसे कि ये गाना जो आप सुन रहे थे, ये कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में आप सुन रहे थे. और अब जो मैं गाना आपके लिए प्ले कर रही हूँ, दैट इज ऑफकोर्स द किंग ऑफ रोमांस, कुमार सानू की आवाज में. 90s का दौर, 90s का रोमांस और 90s की आशिकी.

आई नो द मेमोरीज आर कमिंग बैक. कुमार सानू की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना. आगे बढ़ते हुए आपको बताएं जी, माई टाइम इक्विटी विच इज लेड बाय CPA सुधीर पाई. They help individuals as well as families build smarter financial strategies through portfolio management, real estate opportunities, या फिर alternative investments. चाहे आप long term wealth की planning करना चाहते हो, या retirement planning, या फिर you are planning on growing your investment, जो भी आपका goal है, motive है, My Time Equity is here to help you. They will offer personalized solutions that are designed around your goals. तो आप विजिट कर सकते हैं उन्हें mytimeequity.com या फिर आप उन्हें कॉल कर सकते हैं. That number is 469-702-1272. 469-702-1272 is that number. और अब जो गाना आपके लिए लगाने लगी हूँ ये लिया गया है फिल्म बाजीगर से. और बाजीगर की कहानी तो आप जानते ही हैं. अब्बास मस्तान साहब ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था और एक इंटरव्यू में अब्बास मस्तान साहब ने बताया कि पहले सलमान खान को, आमिर खान को, इन सबको इस रोल के लिए अप्रोच किया गया. सलमान ने तो स्ट्रेट अवे इनकार कर दिया, आमिर खान ने भी नहीं किया कि भाई टू मच नेगेटिविटी. और जब शाहरुख खान को ये रोल सुनाया गया तो उन्होंने, अब्बास मस्तान की जबानी है कि उन्होंने ज़मीन पे बैठ के ये रोल सुना, वो बैठे उनको सुना रहे थे. तो अब्बास मस्तान से शाहरुख ने कहा कि आप ये मुझे खुद नरेट कीजिए. तो अब्बास मस्तान ने कहा भाई हम तो डायरेक्टर्स हैं, हम स्टोरी टेलर से, जिन्होंने लिखी है स्टोरी उनसे नरेट कराते हैं. उन्होंने कहा नो, आई वॉन्ट टू हेयर द नरेशन ऑफ द डायरेक्टर्स. तो डायरेक्टर्स ने जब उनको नरेट किया तो कहानी खत्म होते ही शाहरुख खान ने कहा आई एम गोइंग टू डू दिस फिल्म. और अब्बास मस्तान का कहना है कि द रेस्ट इज हिस्ट्री.

जी हाँ, किताबें तो बहुत सी पढ़ी थी शिल्पा शेट्टी ने, किताबें तो आई एम श्योर बहुत सारी पढ़ी होंगी, लेकिन वाकई वो चेहरा पढ़ना भूल गई तभी उनके साथ इस फिल्म में जो हुआ सो हुआ. सो दैट वाज अ वेरी वेरी ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस डेफिनेटली. एक बहुत ही खतरनाक सीन था वो, जब वो छत पे बैठी होती हैं और फिर उनके साथ जो होता है. आई स्टिल रिमेंबर, जाहिर है हम स्कूल में हुआ करते थे और इट वॉज वेरी ट्रोमैटिक. आप एक जिसको आप हीरो की तरह देख रहे हो, वो हीरो ही जब हीरोइन को नीचे गिरा दे, और उसके बाद जो है जिस तरह से कहानी को आगे बढ़ाया गया और बाद में हमें बताया गया कि उनका यू नो जिंदगी में क्या क्या हुआ, तो एक सिंपथी भी क्रिएट हुई. बट टू बी वेरी फ्रैंक, गलत तो गलत ही रहेगा चाहे उसको कितना भी सही बनाने की कोशिश कर ली जाए. एनीवेज जी, ये तो हुई मेरा टेक ऑन बाजीगर. आपका टेक क्या है ये आप मुझे बता सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन उसके लिए मैं कॉन्वर्सेशन कॉर्नर आपके लिए जरूर खोलूंगी. अभी मैं आपको ये बताती चलूं कि अगर आप ज्वेलरी की शॉपिंग करना चाहते हैं तो श्री कृष्णा ज्वेलर्स एक बेहतरीन स्पॉट है आपके लिए. यहां ज्वेलरी सिर्फ एक एक्सेसरी नहीं है बल्कि एक रिफ्लेक्शन है ट्रेडिशन, एलिगेंस और टाइमलेस ब्यूटी का. क्लासिक गोल्ड डिजाइन आप चाहते हैं, स्पार्कलिंग डायमंड्स की ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, या फिर आपको कुंदन पसंद है, या फिर वो ट्रेडिशनल पोलकी का जेवर आपको पसंद है जो कि कभी हमारी माएं और दादी और दानियां पहना करती थी, तो जी हर पीस जो है वो क्राफ्ट किया जाता है आपके स्पेशल सेलिब्रेशन के लिए, आपके स्पेशल मोमेंट के लिए. लोकेटेड एट 13145 स्वीट 220 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को में लोकेटेड हैं जी श्री कृष्णा ज्वेलर्स. उनकी नई लोकेशन है, जरूर चेकआउट कीजिए टू सी देयर कैटलॉग, व्हाट दे हैव, व्हाट आर दे ऑफरिंग. और आपको ये भी बता दी चलो 1967 से बिजनेस में है. दे हैव बीन क्राफ्टिंग फाइन टाइमलेस ज्वेलरी टू चेरिश योर मेमोरीज. डू नॉट फॉरगेट टू विजिट श्री कृष्णा ज्वेलर्स डॉट कॉम. और इस ज्वेलरी से मुझे याद आया, बंदा सजता है संवरता है तो घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा लगता है, जब तक ना पड़े आशिक की नजर सिंगार अधूरा लगता है.

0: सुन रहे हैं आप आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण में वो 90s का बॉलीवुड और लेके आई हूँ आपके लिए कॉन्वर्सेशन कॉर्नर. जी हाँ, कॉन्वर्सेशन कॉर्नर विद सुनहरी किरण ब्रॉट टू यू बाय द फ्लेवर लाउंज. आपके पास मौका है दाल मखनी या फिर ढाबा स्टाइल चिकन करी जीतने का. ब्रॉट टू यू बाय फ्लेवर लाउंज लोकेटेड ऑन प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को. दिस इज वैलिड फॉर डाइन इन ओनली. तो अगर आप जीतिएगा तो यू विल हैव टू गो टू द रेस्टोरेंट एंड अवेल दिस दाल मखनी या फिर ढाबा स्टाइल चिकन करी. एंड इफ यू हैव वन दिस गिव अवे इन एनी अदर शो एट फन एशिया इन द पास्ट वन मंथ तो मुझे बता दीजिएगा जब आप कॉल करें, क्योंकि यू कैन बी अ विनर. यू कैन ओनली बी विनर वंस अ मंथ, वरना वहां पे शायद ऑनर ना किया जाए आपकी विन को. अच्छा जी, ये तो हुई है बात और 90s का बॉलीवुड चल रहा है, तो मुझे बताइए कि कौन सा वो गाना है. देखिए 90s के दौर के बहुत सारे गाने जो हमारी शादी की प्लेलिस्ट में होते थे, यानी कि एज अ ग्रुप हम उस पर जरूर डांस करते थे, शादी ब्याह पे डांस करते थे, जैसे कि चल प्यार करेगी, हाँ जी ना जी ना जी हाँ जी, वो जो भी गाना है. और उसके अलावा भी मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मतलब कितने सारे गाने हैं जो हमारी शादी की मेड उसके ऊपर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती थी. तो यही आज हमारा कॉन्वर्सेशन कॉर्नर का कॉन्वर्सेशन पॉइंट है कि 90s का वो कौन सा गाना है जो शादी ब्याह में आपकी लिस्ट पे ज़रूर होता था कि भाई या तो ग्रुप में परफॉर्मेंस देनी है या इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देनी है. कुछ लोग चने के खेत पे परफॉर्म करना बहुत पसंद करते थे. नौ नौ चूड़ियाँ, ऑफकोर्स वो 89 की मूवी थी, बट उसको आप कैरी ऑन 90s पे कर लीजिए. तो 9722355555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. मुझे कॉल कीजिए और बताइए, डिस्कस कीजिए मेरे साथ कि वो कौन सा गाना है 90s का जो आपकी शादी की प्लेलिस्ट पे उन जमाने में जब आप डांस तैयार करते थे, प्रिपेयर करते थे अकेले या ग्रुप में. फ्लेवर लाउंज लेके आया है आपके लिए ये गिव अवे. दिस इज कॉन्वर्सेशन कॉर्नर विद सुनहरी किरण. फनी जे रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. व्हाट इज योर नेम?
1: सुमेरा.
0: जी सुमेरा, बताइए.
1: I think there was a song I danced with my cousins. Chal pyar karegi, haan ji haan ji.
0: जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: मेरे साथ ही चलेगी
0: ना जी. हाँ जी हाँ जी ना जी, बिल्कुल सही है. तो ओके, सो ये आपका था शादी ब्याह का परफॉर्मेंस का गाना जिसपे आप परफॉर्म किया करती थी.
1: जी जी बिल्कुल
0: ठीक है, परफेक्ट. थैंक यू सुमेरा, सुनते रहिए. मैं अभी विनर अनाउंस करती हूँ. फनीजर रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. व्हाट इज योर नेम?
2: Hi, my name is Fatma.
0: Ji, Fatma, bataiye.
2: And the song is, I think that from Hum Aapke Hain Kaun, Joote De Do, Paise Le Lo.
0: Oh, right, Joote De Do. To ispe aapne group performance di thi ke solo performance taiyar ki thi?
2: Yes, group.
0: बहुत अच्छा, ठीक है जी, बिल्कुल सही. दैट इज जूते दे दो. फातिमा सुनते रहिए. आई एम गोइंग टू अनाउंस द विनर इन अ बिट. फनीशे रेडियो, यू आर लाइव इन. व्हाट इज योर नेम?
3: मीनाक्षी.
0: जी मीनाक्षी, बताइए.
3: सो मैं तब तो टीनेजर थी, तो मेरी शादी या शादी ब्याह में तो नहीं करती थी, बट देन आई ग्रो अप इन US, तो वो डांस परफॉर्मेंसेस स्टेजेस पे बहुत की है. एक तो चोली के पीछे क्या है,
0: ओके,
3: एंड चने के खेत में,
0: राइट,
3: एंड देन मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियां हैं. दैट आई रिमेम्बर आई वाज लाइक मे बी 10 इयर्स ओल्ड एट दैट टाइम. और मैंने वो डांस करने के लिए कांच की चूड़ियां पहनी थी, तो चूड़ी टूट गई थी एंड आई स्टिल हैव Scar from that.
0: Oh,
3: I remember.
0: वैसे आपने
3: जो लगे थे मुझे.
0: Oh my God, इतनी जोर से टूट गई.
3: Yeah, क्योंकि मैं कांच की चूड़ियां पहन रही थी और वो चूड़ी टूटी and I was like in such a hurry कि I didn't pay attention. I was like, नहीं मुझे डांस करना है तो चूड़ियां पहन के करना है और कांच की चूड़ियां ही पहननी है.
0: मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियां, चोली के पीछे क्या है, चने के खेत में, ये तो मतलब आइकॉनिक डांस नंबर्स होते थे जिनपे जरूर कोई ना कोई लड़की परफॉर्म कर रही
3: होती. एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दावन टू, या
0: परफेक्ट. मीनाक्षी, थैंक यू फॉर योर कॉल, सुनते रहिए. आई एम गोइंग टू अनाउंस द विनर इन अ बिट. फनी इज योर रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. व्हाट इज योर नेम?
4: राम कुमार.
0: जी राम कुमार, बताइए.
4: अभी 25 साल शादी का मनाया हमने, तो हमने गाना किया था वो शायद मेरी शादी का ख्याल आया है,
0: दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने
4: चाय में बुलाया.
0: आपने इस पे परफॉर्म किया था?
4: हाँ हाँ, पूरा गाया.
0: क्या बात है,
4: गाना गाया. हम दोनों ने गाना गाया पूरा.
0: क्या बात है जी, जबरदस्त. दिस वाज सच एन आइकॉनिक वेडिंग नंबर, शायद मेरी शादी का ख्याल. और 90s के दौर में तो मतलब ढोलकी पे तो ये गाना जरूर बजता था, जरूर गाया
4: जाता था.
0: जी राम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया. सुनते रहिए, आई एम गोइंग टू अनाउंस द विनर इन अ बिट. फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. अच्छा जी, इसके बाद हम एक सॉन्ग ब्रेक लेंगे और वी विल कंटिन्यू आफ्टर द सॉन्ग, बट दिस इज द लास्ट कॉलर फॉर बिफोर द सॉन्ग. बताइए, नाम बताइए.
5: सोमी
0: जी, सोमी बताइए.
5: तो बहुत पहले 90s में गाना था, बहुत पुराना, काली तेरी छोटी है पर अंदर तेरा लानी.
0: बिल्कुल सही.
5: मैंने डांस किया था. या सो व्हाइल आई एम डांसिंग आई थिंक आई वाज परफॉर्मिंग ऑन स्टेज एंड मेरी चोटी जो है वो खुल गई थी, बट मैं उसको पकड़ के फिर भी डांस कर रही थी. कैरी ऑन माय डांस.
0: ठीक है, बिल्कुल सही. अच्छा, काली तेरी चोटी का आपने नया वर्जन तो सुन लिया.
5: जी.
0: या अभी नहीं सुना. अच्छा, मुझे उस पे सबसे ज्यादा हैरत होती है कि वो तीन लड़कियां डांस कर रही हैं, उस पे एक लड़की ने भी चोटी नहीं बांधी हुई. किसी ने ना परांदा ना चोटी कुछ भी नहीं. ठीक है, ओके सोमी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. सुनते रहिए, आई विल अनाउंस द विनर इन अ बिट. ऑलराइट जी, वी आर गोइंग ऑन अ शॉर्ट सॉन्ग ब्रेक एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विद द कॉन्वर्सेशन कॉर्नर ब्रॉट टू यू बाय फ्लेवर लाउंज.

0: Hello. Fun Asia Radio, you are live on air. What is your name?
1: Hi, my name is Vanita.
0: All right. Is it Anita?
1: I have lot of songs in my mind, but Sajan Ji Ghar Aaye.
0: Okay, Sajan Ji Ghar Aaye, bilkul sahi.
1: And even that मेहंदी लगा के रखना.
0: मेहंदी लगा के आपने इन गानों पे परफॉर्म किया है?
1: Yes.
0: अच्छा, परफेक्ट. कहाँ करा आपने? स्कूल में, कॉलेज में, शादी ब्याहों पे, कहाँ पे?
1: शादी में.
0: बिल्कुल सही. थैंक यू. सो अनीता, राइट? आपने अनीता नाम बताया.
1: Vanika.
0: Okay, Vanita, thank you so much for your call. Sunte rahiye, I'm going to announce the winner in a bit. All right, ji. Fun Asia Radio, you are live on air. Bataiye. Naam bataiye.
2: Hi, this is Sarika Atal.
0: Ji, Sarika.
2: I used to dance on Dilli Sheher Mein Maro Ga, Mero Jo Ghoomyo. And I used to do 25 rounds non-stop without falling.
0: Oh, lovely. Wow, that is good stamina. Did you used to practice a lot for those 25 rounds?
2: I am from Rajasthan, so it's in the blood.
0: That's amazing. I'm so glad you told us that. Thank you so much, Sarika. Keep listening. I'll announce the winner in a bit. RIG, we just have one last caller and then we're going to announce the winner. Fun Asia Radio, you are live on air. What is your name?
3: Rosina.
0: Rubina?
3: Rosina.
0: Ji, Rosina, bataiye.
3: जी, मैं उस टाइम की जो सॉन्ग की बात कर रहे हैं, वो था चूड़ी जो खन के हाथों में, याद पिया की आने लगी भीगी भीगी रातों में.
0: बिल्कुल सही. अभी कोई 30 मिनट्स पहले मैंने ये गाना प्ले किया क्योंकि ये गाना मुझे भी बहुत पसंद है, फाल्गुनी पाठक का. थैंक यू सो मच रोजीना फॉर कनेक्टिंग. सुनते रहिए, आई एम गोइंग टू अनाउंस द विनर इन अ बिट. सुनते रहिए गाइज, यू हैव टू कॉल मी इफ यू आर द विनर, सो कीप लिसनिंग.

ऑलराइट जी, लकी विनर का नाम निकल आया है, मैथ के फॉर्मूले ने नाम नंबर निकाला है, फातिमा नंबर टू जिन्होंने मुझे कॉल किया था वो हैं लकी विनर आज के इस गिव अवे की। फातिमा प्लीज मुझे कॉल कीजिए ताकि मैं आपका नंबर ले सकूं टू सेंड टू फ्लेवर लाउंज। और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच, इट मैटर्स अ लॉट।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Arey, sunna, aaj office se aate hue maine Frisco mein ek naya store dekha.
7: Kaun sa?
6: Carrot Lane.
7: Wait, what? Carrot Lane? India wala?
6: हाँ वही.
7: थैंक गॉड, यहाँ हर रोज पहनने लायक कुछ मिलता ही नहीं था इजीली.
6: देखा, ढूंढ के दिया ना.
8: India's most loved everyday jewelry brand, now in Frisco. Lightweight, real diamonds, made for everyday. Carrot Lane, a Tata product.
9: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
8: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज week 8 a.m. to 8 p.m. walk in anytime. 9191 Kaiser Way, suite 205, Frisco.
10: aaja meri gaadi mein baith ja.
11: baith jao pakka, kal hi to teri gaadi ne signal pe dam tod diya tha.
12: wo thoda overheating tha.
11: thoda? teri gaadi date pe kam, workshop ke mood mein zyada lag rahi hai.
13: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
14: इन प्लेनो.
13: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
10: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
15: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम. वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डैलस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे. नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह. प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी. देसी मंडी, पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डैलस.
16: I've been researching retirement planning.
17: Oh, really? Where?
16: Google, YouTube, a guy on TikTok.
17: Or you could just talk to WealthActive.
16: What's the difference?
17: They create a real retirement strategy. Not just investments, but a plan for when your income stops.
8: WealthTactic. Because retirement needs a strategy, not a search bar. For free consultation, call 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
18: Big achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
8: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
19: डालस की धड़कन 104.

0: 4999 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
1: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो।

ने का, जो कि इंडिया बाजार की तरफ से आपके लिए आया है। फोर्ट वर्थ लोकेशन पे जाके आपको ये ग्रोसरी हैम्पर लेना होगा, तो ये बात का ध्यान रखिएगा जी। दिस इज स्पेसिफिक टू द फोर्ट वर्थ लोकेशन, 5152 क्वाड्रेंट वे इन फोर्ट वर्थ। दिल वाले दुल्हनिया का ये जो गाना आप सुन रहे थे, 90s के दौर की बात हो रही है, तो ये बताइए कि शाहरुख खान का इस फिल्म में पूरा नाम क्या था? बस सिंपल एज दैट। शाहरुख खान का इस फिल्म में पूरा नाम क्या था? नाम बताइए और जीत लीजिए ये ग्रोसरी हैम्पर, ब्रॉट टू यू बाय इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ।

जी हाँ, सुन रहे हैं आप वो 90s का बॉलीवुड राइट हेयर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे से ये गाना, अभी जब सवाल हमने पूछा था कि जो है सबसे ज्यादा आपका कौन सा फेवरेट डांस नंबर था उन दिनों शादी ब्याह का, तो इस गाने का भी 2-3 बार तस्करा हुआ. और अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गिव अवे इंडिया बाजार की तरफ से, जो कि फोर्ट वर्थ में लोकेटेड है जी. इफ यू लिव इन फोर्ट वर्थ, केलर, हर्स्ट, हैसलेट, दिस इज अ वेरी इजी एंड कन्वीनियंट लोकेशन फॉर यू. आपकी तमाम इंडियन ग्रोसरी नीड्स के लिए फ्रेश प्रोड्यूस, स्पाइसेस, स्नैक्स, डेली वो कहते हैं ना देसी एसेंशियल्स, उसके लिए इंडिया बाजार से बेहतर जगह नहीं. लोकेटेड एट 5152 क्वाड्रेंट वे इन फोर्ट वर्थ. और आपके पास मौका है ये स्पेशल ग्रोसरी हैंपर जी

इंडिया बाजार की तरफ से ये ग्रोसरी हैम्पर आपके लिए आया और फोर्ट वर्थ में लोकेटेड हैं जी। आप तमाम लोगों की फोन कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपको सही जवाब बता दें, शाहरुख खान का नाम इस फिल्म में था राज मल्होत्रा। जी हाँ, और काजल का भी बताती चलती हूँ, सिमरन सिंह उनका पूरा नाम था इस फिल्म में। और मतलब फिल्म के बारे में क्या कहें जी, लॉन्गेस्ट रनिंग मूवी जो कि थिएटर्स में अब तक मैंने सुना था किसी थिएटर में लगी हुई है। दिस इज अ हिस्ट्री इन द मेकिंग, हिस्ट्री ऑलरेडी बन चुकी है और ऑलरेडी बन रही है, अभी भी बन रही है। अच्छा, विनर्स का सबसे पहले आप तमाम लोगों की फोन कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीकांत, शीतल, मोहसिन, पद्मा, ख्याति, शाहीना, आप सबने बिल्कुल सही जवाब दिया। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड योर कॉल्स। और आज के जो हमारी लकी विनर हैं वो हैं जी पद्मा कुमारी। पद्मा, कंग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये गिव अवे। हमें दो दिन का टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर इंडिया बाजार पहुंचाने के लिए, एंड देन यू विल हैव अबाउट 5 to 6 डेज टू गो टू इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ लोकेशन 5152 क्वाड्रेंट वे इन फोर्ट वर्थ, और जाके आप अपना ग्रोसरी हैम्पर अवेल कर सकते हैं। और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। फनी जय इस तरह के बहुत सारे गिव अवेज आपके लिए लेकर आता है।

All right, and it's time now to give you the traffic update. Traffic hour शुरू हो चुका है. अगर आप रोड पे हैं या बस निकलने वाले हैं कहीं पहुंचना है तो जी दो इंसिडेंट्स हमें नजर आ रहे हैं. सबसे पहले तो आपको ये बताऊं, दिस ट्रैफिक अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय उमर ख्वाजा. और उमर, अगर आप किसी भी तरह के कार या ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं तो उमर ख्वाजा इज हेयर टू हेल्प, बट मोर ऑन दैट लेटर. फिलहाल द ट्रैफिक अपडेट, देर आर वन कोलिजन एंड वन डिसेबल्ड व्हीकल दैट आई कैन सी. द कोलिजन इज रिपोर्टेड एट 6:35 towards TI Boulevard eastbound, जिसकी वजह से three lanes are blocked. लेकिन about 50 minutes हो गए हैं इस collision को report हुए, तो almost clearing up हो चुकी है या almost होने वाली है. The severity of the incident was reported high, but that's pretty much all where collision is concerned. There is a disabled vehicle on US 75 towards Parker Road northbound, जिसकी वजह से two lanes are blocked. About 15 minutes पहले ये incident report हुआ है, तो disabled vehicle का मतलब है lanes बंद हैं, तो जाहिर सी बात है backup अभी build हो रहा होगा. तो अगर आप इन दो जगहों में से किसी पे पहुंचने वाले हैं या जाने वाले हैं तो प्लीज बी वेरी केयरफुल एंड बी वेरी विजिलेंट. और इस ट्रैफिक की अपडेट एक बार फिर आपको बताते चलें, ब्रॉट टू यू बाय उमर ख्वाजा, द लॉ ऑफिसर्स ऑफ उमर ख्वाजा.

0: सा जी लो थोड़ा थोड़ा मर लो,
1: थोड़ा सा जी लो थोड़ा थोड़ा मर लो।
2: अगर आप किसी कार या ट्रक एक्सीडेंट में अनफॉर्चुनेटली इन्वॉल्व हैं या फिर देयर इज अ स्लिप और अ फॉल इंसिडेंट, तो अटर्नी ओमर ख्वाजा इज हेयर टू हेल्प यू। आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल। कोई सीरियस बात है तो आपको अपनी सेहत का ख्याल भी रखना है, इंश्योरेंस कंपनी के साथ भी डील करना है, पेपर वर्क, लीगैलिटी, द निटी ग्रिटीज ऑफ द सिचुएशन, विच कई बार हमें एज रेगुलर सिटीजन इसका पता ही नहीं होता कि इनमें क्या निटी ग्रिटीज इन्वॉल्व हैं। तो दैट इज द टाइम व्हेन यू नीड एन attorney by your side. तो ये वो अटर्नी है, अटर्नी ओमर ख्वाजा। नॉट ओनली विल ही हेल्प फाइट योर केस, बट ही विल हेल्प यू गेट द बेस्ट कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व, और द बेस्ट पार्ट इज दैट यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग अनटिल यू विन। सो इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर यू इन सच अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। अगर आप ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, यू नो समवन यू केयर फॉर इज गोइंग थ्रू सच अ सिचुएशन, प्लीज गिव देम देयर नंबर, शेयर अटर्नी ओमर ख्वाजा'स नंबर, मेक दैट कॉल फॉर फ्री कंसल्टेशन। यू माइट जस्ट, यू नो, इट माइट जस्ट बी द बेस्ट थिंग दैट यू विल डू for yourself or for that person that you care for. That number is 469-300-5046. 469-300-5046 is the number, or you can visit their website, which is attorneyomar.com.

0: विद दैट वी आर हेडिंग ऑन टू अ शॉर्ट ब्रेक. ब्रेक से वापस आकर अभी आपके लिए वेदर एज वेल एज करेंसी अपडेट, गोल्ड प्राइस अपडेट लाइंड अप है. प्लस वी आर गोइंग टू कनेक्ट यू विद NRI वेल्थ. दीप्ति वर्मा जी हमारे साथ मौजूद होंगी. बने रहिए मेरे साथ. लॉट्स ऑफ थिंग्स आर लाइंड अप फॉर यू.
1: Frisco is growing fast and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
2: अपनी रूट्स भी और टेक्सास का स्वैग भी, दोनों एक साथ एक ही जगह HEB में. रॉयल सोना मसूरी राइस हो, नानक पनीर हो या पार्ले जी बिस्किट्स, वही देसी टेस्ट जो दिल को घर जैसा फील दे. और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो सिर्फ यहीं मिलते हैं. एक ही ट्रिप, एक ही स्टोर और सारा सामान डन. तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ. HEB, हियर एवरीथिंग्स बेटर.
3: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
4: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
5: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
6: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में.
5: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया. कैसे मैनेज होगा सब?
6: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं.
4: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता. जीनो क्रेडिट रिपेयर हेल्प्स यू चैलेंज इनएक्यूरेट, आउटडेटेड या अनवेरिफाइबल आइटम्स ऑन योर रिपोर्ट. नो अपफ्रंट फीस, फुल ट्रांसपेरेंसी एंड द राइट टू कैंसिल एनी टाइम. कॉल 1-800-400-9468. जीनो क्रेडिट रिपेयर, फिक्स योर स्कोर, फिक्स योर लाइफ. जीनो क्रेडिट रिपेयर डज नॉट गारंटी रिजल्ट्स. यू हैव द राइट टू डिस्प्यूट इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑन योर क्रेडिट रिपोर्ट योरसेल्फ फ्री ऑफ चार्ज. सर्विसेज प्रोवाइडेड अंडर रिटन कॉन्ट्रैक्ट विद अ 3-डे राइट टू कैंसिल.
2: Ladies and gentlemen, you're not ready for this. Frisco mein itna pyar milne ke baad, Panchtara is now open at a new location in Allen. Wahi swaad, wahi junoon aur wahi zabardast management aur customer service. Famous garma garam parhathe, roz taazi bani mithaiya aur full service bar waiting just for you. Enjoy fine dining experience aur Punjabi buffet every day. Catering service is also available to make your every celebration memorable. Panchtara now in Frisco and Allen. Mention Apna Punjab and get exclusive discount on your first visit.
7: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
2: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
12: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी. डायग्नोसिस क्लियर है, आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी. AG FinTax, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी. फ्रॉम टैक्सेस टू CFO एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन. कॉल 4253954318 और विजिट agfintax.com. प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद AG FinTax's एडवाइजरी सर्विसेज.
2: Dallas, are you ready for a mini India in one evening? On Sunday, May 31st, 3 p.m. to 9 p.m., join us at the Haggard Park, Plano, near downtown for the Ambuj Basant Mela, powered by Bana. Live performances, raffle prizes, and touch the truck from 4 to 5 p.m. Plus, a pan-India food festival from Litti Choka to Bengali, Marathi, Gujarati, Oriya, South Indian, Punjabi, Sindhi, and so much more. Free entry, free parking, fun for the whole family. Ambuj Basant Mela, powered by Bana. Supported by major Indian non-profit organization in DAW.
12: For booth and sponsorship contact admin at ambuj.us.

ऑलराइट जी, ये सुन रहे हैं आप आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. मैं हूं किरण आपके साथ. और बताती चलूं आपको, अगर आपने अब तक पेज 3 ईटरी ट्राई नहीं किया तो यू आर डेफिनेटली मिसिंग आउट ऑन एन एब्सोल्युटली अमेजिंग डाइनिंग एक्सपीरियंस. मेकिनी में लोकेटेड हब 121 में दिस इज पेज 3 ईटरी, जहां पे आपको मिलता है बोल्ड इंडियन स्ट्रीट फूड यू नो विद अ मॉडर्न फ्लेयर. लंच, ब्रंच, डिनर, तमाम चीज़ों के लिए खुले हैं. आप फूडी हैं, अगर आप अच्छा खाना खाना चाहती हैं तो आप पेज 3 ईटरी को मिस मत कीजिए. इफ़ यू लव टू हैव दोज प्रेजेंटेबल प्लेट्स जिनको देख के लगता है दिल, तो फिर पेज 3 ईटरी इज़ द प्लेस फॉर यू टू गो. और अगर आप पसंद करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ एनर्जी वाइब, यू नो इट्स अ परफेक्ट मिक्स ऑफ फ्लेवर, एनर्जी एंड वाइब्रेंट वाइब्स, पेज 3 ईटरी ज़रूर विजिट कीजिए. उनकी वेबसाइट भी चेकआउट कीजिए, दैट इज़ पेज 3 एज इन नंबर 3, page3eatery.com. And with that, I am going to give you the weather update now. Aaj, which is Thursday, May the 28th, 4:47 p.m. in the studio. Aur city of Makini mein is waqt hai ji 83 degrees. However, it feels like 86 right now. दिन रहा बारिश होती रही ऑन एंड ऑफ, कुछ जगहों पे सनी, कुछ जगहों पे बारिश, और हाइज जो हैं वो मिड 80s तक रहे, जबकि शाम रहेगी मोस्टली क्लियर, 20% चांस ऑफ शावर्स एंड थंडरस्टॉर्म्स इन द इवनिंग, लोज इन द अपर 60s. पोलन काउंट आज का 6.5 विच इज मीडियम, जबकि यूवी इंडेक्स इज 9 विच इज वेरी हाई. तो प्लीज कीप योर सनस्क्रीन हैंडी, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड. साथ ही साथ सनराइज आज का हुआ 6:19 AM पे और आज का सनसेट होगा 8:28 PM. और इसी के साथ कल का दिन जो है वो मोस्टली सनी रहने वाला है. दिन रहेगा मोस्टली सनी विद हाईज इन द अपर 80s, जबकि शाम रहेगी पार्टली क्लाउडी विद लोज इन द मिड 70s. सो इट इज गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे एंड फ्राइडे ऑलवेज कम विद मोस्टली गुड वेदर. कल भी कुछ ऐसा ही होने वाला है.

इट इज टाइम नाउ टू टेल यू द करेंसी अपडेट. यूएस डॉलर आज कहां स्टैंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज इन द वर्ल्ड. तो जी, थर्सडे मे द 28th 4:52 PM इन द स्टूडियो एंड अकॉर्डिंग टू xrates.com यूरो ट्रेड कर रहा है 0.85 पे, ब्रिटिश पाउंड 0.74, जबकि इंडियन रुपी 95.98 पे स्टैंड कर रहा है. कैनेडियन डॉलर 1.378 पे ट्रेड कर रहा है, जबकि पाकिस्तानी रुपी इज ट्रेडिंग एट 278.56. नेपाली रुपी 153.64, जबकि बांग्लादेशी टका 122.71. बांग्लादेशी टकाज आर ट्रेडिंग फॉर वन यूएस डॉलर. आपकी फाइनेंस की कहानी अभी खत्म नहीं हुई. इस गाने के उस पार मैं आपको बताऊंगी कि क्या है गोल्ड का रेट. अगर आप सोना वोना खरीदने की कोशिश कर रहे हैं या वैसे ही सोने का भाव जब चढ़ता है या उतरता है तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं. बने रहिए.

आपसे विदा लेने का वक्त आ चुका है, लेकिन उससे पहले as promised it is time now to give you the gold price update. Right now 4:56 PM and according to goldprice.org, gold price per ounce has worked $4,495.98, जबकि 1 ग्राम सोने की कीमत है जी $144.55. कल की निस्बत 1 ग्राम सोने की कीमत में आज $1.45 का इजाफा हुआ यानी कि इंक्रीज, और 1 आउंस गोल्ड प्राइस में $45.53 की इंक्रीज हुई. तो दैट्स प्रीटी मच ऑल दैट आई हैव फॉर यू वेयर योर फाइनेंस मैटर्स. और अब इट इज टाइम फॉर मी टू से बाय टू यू. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी दिस आफ्टरनून. एज ऑलवेज मैं आपके साथ मौजूद रहती हूँ मंडे टू फ्राइडे 2:30 PM to 5 PM. और कल है बच्चा पार्टी, कल है जी किड्स जंक्शन. इट इज फ्राइडे, यस, एंड 3 PM to 4:30 PM आई विल बी टेकिंग योर कॉल्स लाइव. आई विल बी हियर फ्रॉम 2:30 to 5, लेकिन 3 बजे से 4:30 बजे इज एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड टू ऑल द किड्स, मिडिल स्कूलर्स, हाई स्कूलर्स, एलिमेंट्री स्कूलर्स, हूएवर व्हिच एवर ग्रेड यू आर इन, गिव मी अ कॉल. वैसे भी आजकल तो समर ब्रेक चल रही है, सो यू आर अबाउट टू चेंज योर ग्रेड, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दैट एंड मच मोर, एंड आई एम गोइंग टू प्ले योर फेवरेट music. Thank you so much for connecting. I look forward to talking to you tomorrow. You have a lovely, lovely rest of your day.

दूंगा दिल तेरा, लेके ही तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच। बोली में थोड़ा रेयान भी टच है, जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है। बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ। BADSHA नाम बदल दियो मेरा बेबी, जो ना कर रहा थी तेरी ना।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Heere moti, main na chahu.
8: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
9: का सवाल ये है, बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है? ऑप्शन ए, स्लो प्रोसेस। ऑप्शन बी, ज्यादा पेपर वर्क। ऑप्शन सी, क्रेडिट स्कोर का कंसर्न। या ऑप्शन डी, लोन डिक्लाइन होने का डर।
10: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा।
9: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए।
11: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है। नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं, रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में।
12: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338, 817-786-3338। The SBA लोन एक्सपर्ट्स, फैसला क्लैरिटी के साथ।
13: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
14: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
13: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
14: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
13: ये क्या होता है?
14: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
11: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस। फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
15: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
16: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
15: Kya matlab?
16: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
15: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
16: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
15: Ab to karna hi padega, madam.
17: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
18: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
19: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
18: K2 ड्राइव मतलब?
19: मतलब गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है।
18: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
19: 100%
20: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402। केटो ड्राइव, डायलिसिस स्मार्टेस्ट फ्लीट पार्टनर।
21: यार, बिजनेस चलाना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, हर तरफ बस एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस।
22: बिल्कुल, लेकिन तुझे पता है अब वही एक्सपेंसेस तुझे इनकम भी दे सकते हैं।
21: सच में? एक्सपेंसेस से इनकम कैसे?
22: कनेक्टिंग अमेरिका के थ्रू। उनके पास एक यूनिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जो बिजनेस ओनर्स को अपने खर्चों को एक इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है।
21: वाह, मतलब पैसे सिर्फ जाएंगे नहीं, वापस भी आएंगे।
22: एग्जैक्टली, अगर तू अपनी बॉटम लाइन बूस्ट करना चाहता है तो जेम्स को आज ही कॉल कर।
21: नंबर बोल जल्दी।
22: कॉल जेम्स एट 321-888-7345 और विजिट connectingamericafinancials.com।
21: कनेक्टिंग अमेरिका, जहां स्मार्ट बिजनेस ओनर्स टर्न कॉस्ट्स इनटू कैश।
0: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A,

वेलकम लिसनर्स, आप सबका 5 बजे के शो पे बहुत बहुत स्वागत है. मैं हूँ आपकी होस्ट पावल भाटिया, सिटिंग इन टुडे फॉर मार्विन दास, हु विल बी बैक होपफुली नेक्स्ट वीक. एंड उसके साथ साथ मैं आप लोगों के लिए ये भी बताना चाहती हूँ, खूब गप्पे वाली बातें लेके आई हूँ और कुछ मोटिवेटिंग बातें भी लेके आई हूँ. एंड ऑफकोर्स जहाँ गॉसिप की बात नहीं है, ये न्यूज़ की बात है कि इस वक्त बॉम्बे में, मुंबई में, दिल्ली में, इंडिया में क्या धमाकेदार बातें चल रही हैं. आपको समझ ही गए होंगे कि मैं धुरंधर की बात कर रही हूँ. उसके बारे में भी लेटेस्ट कुछ बहुत ही जूसी सी गॉसिप में लेके आई हूँ. चलिए लेकिन स्टार्ट करते हैं ऑन अ वेरी हाई मोटिवेशनल नोट. वन पर्टिकुलर पर्सन हु मोटिवेट्स सो मेनी पीपल इज द पर्सन हु दो नो मोर बट ही हैज लेफ्ट अ लेगेसी. आई एम टॉकिंग अबाउट द वन एंड ओनली स्टीव जॉब्स. You know, in a commencement address, the CEO and co-founder of Apple Inc. shared one of the keys to his success, and that was love. His love for the work he did kept him excited about going to work every day and working towards new goals. Often there is a big difference between what you want versus what other people want for you. Discovering what you're passionate about and working towards it with achievable goals will lead you to success and satisfaction. This is why it is important to give that kind of information for you. And I'd like to quote Steve Jobs at this point before I go to the juicy part after the song. He said, and I quote, "Your work is going to fill a large part of your life. And the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking. Don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it." Aur juicy gossip ye hai ki chaliye wo main aapko is particular gaane ke baad batati hu ki juicy gossip kya hai. Right now this cool song coming your way.

What a beautiful, beautiful song. Very, very melodious, I would say. इस फिल्म में आयुष्मान खुराना, सारा अली खान और बहुत सारे और लोग भी हैं. इसके फिल्म से और भी गाने मैं चलाऊंगी. ये श्रेया घोषाल की आवाज में आपने सुना. एंड अ न्यू सिंगर, आई हैवन हर्ड हिम बिफोर, आदित्य रुचिका और समथिंग लाइक दैट, रुचकारी, आई एम नॉट श्योर इट सेज, बट या इट्स अ न्यू सिंगर आई थिंक, रुचारी. सो एंड ऑल्सो द थिंग इज दैट दिस सॉन्ग हैज ऑल्सो बिन सॉन्ग बाय आयुष्मान खुराना हिमसेल्फ. He made an appearance in Indian Idol and he hummed that song and it was beautiful. So in the movie, his version has also been added. Pati Patni aur wo do twist hai na. Lekin abhi aapke liye maine kaha tha main aapke liye scoop leke aayi hu, to wo scoop definitely something, it's very interesting and definitely banta hai ki hum is bare mein baat karein. But before I move to that, I thought let me give you some information about AG Fintechs. This part of our show is brought to you by AG Fintechs, one of the fastest growing tax firms in the USA. They offer innovative financial services with untapped potential for both individuals and businesses. They are trusted, efficient, and they get you ready for the future. Call AG Fintechs. The number is 469-942-9888 or you could also visit agfintechs.com. All right, no further delay. न्यूज़ ये है, मैंने बताया था कि डॉन का जो था, दैट यू नो ही वॉकड आउट ऑफ डॉन एंड दैट टू वेरी क्लोज टू द शूटिंग टाइम एंड ऑल दैट, यू नो दैट ही हैज़ बीन, देयर इज अ बैन ऑन हिम फ्रॉम द फेडरेशन. आई एम टॉकिंग अबाउट रणवीर सिंह एंड एक्सेल एंटरटेनमेंट विच इज़ फरहान अख्तर. दे बेसिकली आर आस्किंग फॉर 45 करोड़ रुपीज. स्कूप, सलमान खान, उनका रोल कहाँ से आ गया इसमें? वेल, ही हैज टर्न्ड क्यूपिड इन रणवीर सिंह फरहान अख्तर्स डॉन 3 वॉर. सुपरस्टार सलमान खान हैज स्टेप्ड इन टू ब्रोकर पीस. यस, ही इज राइटफुली कॉल्ड द गॉडफादर ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एज अ सुपरस्टार इज ऑलवेज देयर फॉर पीपल इन द टफ टाइम्स. एज द इंडस्ट्री इज डिवाइडेड ओवर द रणवीर सिंह फरहान अख्तर कॉन्फ्लिक्ट ओवर डॉन 3, सलमान खान हैज नाउ स्टेप्ड इन टू इंश्योर दैट द टू पार्टीज एमिकेबली रिजॉल्व द इश्यूज विदाउट क्रिएटिंग अ मीडिया सर्कस. हाँ, इमेजिन, अ सोर्स टोल्ड बॉलीवुड गामा, सलमान खान इज वेरी फॉन्ड ऑफ रणवीर सिंह एंड इज इक्वली फॉन्ड ऑफ द अख्तर्स टू. ही पिक्ड अप द कॉल ऑन बोथ द स्टेक होल्डर्स एंड हैज आस्क्ड देम टू रिजॉल्व देयर इश्यूज विदाउट हर्टिंग द फ्यूचर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट्स. He explained to Farhan about creative differences being a common thing in the industry for decades. And he also had a long chat with Ranveer, understanding his stance. He's playing the Cupid to ensure that no one feels sabotaged. And the source further informs that Salman also informed both parties to think as one industry and work on another project together once the heat of this debate settles down. I will continue talking a little bit more about that, but right after this song. Ye gana itna cute hai ki Salman Khan ki jo ye act hai, the act of bringing the two together is absolutely commendable.

0: What a cute song. सूरज बरजातिया की फिल्म हम आपके हैं कौन से लिया गया गाना. सलमान खान थे इसमें, माधुरी दीक्षित एंड रेणुका शिंदे, जिनकी अभी 25th एनिवर्सरी हुई थी उनके हस्बैंड के साथ, ऑफिस के हस्बैंड के साथ ही होगी. एंड दे हैव रिन्यूड देयर वाउज. आशुतोष के साथ उन्होंने जो ये किया है, ये जो उनकी 25th एनिवर्सरी है, देव एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट यू नो हु व्हाट हु हर हस्बैंड इज. आप चलिए मुझे कॉल करके बताइए रेणुका शिंदे के हस्बैंड का क्या नाम है. और उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बात सलमान खान ने इन दोनों के साथ करी है, फरहान अख्तर एंड रणवीर सिंह के साथ, अपेरेंटली दे बोथ आर टेकिंग हिज सजेशन सीरियसली. दे आर कंसिडरिंग वॉट ही हैज सेड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट. एंड नॉट ओनली दैट, दे ऑल्सो आर थिंकिंग ऑफ एमिकेबली अराइविंग एट अ सोल्यूशन विदाउट क्रिएटिंग अ कॉन्ट्रोवर्सी. Because Salman Khan said he doesn't want any legal turbulence between Ranveer and Farhan, nor does he want the film bodies to take any uninformed decision. He has asked two to sort out their differences without involving any third party, which includes himself as well. He's standing up for Farhan for the losses and also pushing Ranveer to start a new project to capitalize on the historic success of Dhurandhar. With that, I'll be right back after a quick commercial break. Stay right here, listeners.
1: कहाँ गया, कहाँ रखा था. सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है.
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
2: अरे सारे तो सेम है.
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
2: ओ हाँ, ये तो अलग है.
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: Did you know LASIK is just one of six ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
5: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
4: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
6: Sunita, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली.
7: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है.
6: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है.
7: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है.
3: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper or McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math or English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support aur har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you'll see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia, get $100 off your first month. Are you seeking clarity in life, wondering what destiny has in store for you?
8: Har samasya ka hal hai एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
3: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी.
8: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. नाउ इट्स योर टर्न. समस्या का पक्का समाधान. एस्ट्रोलॉजर ईश्वर. कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
9: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame and clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
10: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
11: Excuse me, it's called being loyal.
10: It's called being predictable.
11: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
10: And what's so special at Neon Cactus?
11: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
10: Not bad.
11: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
10: Okay, this I didn't expect from you.
11: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview. Mexican cuisine with global influences.
12: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था. ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं. आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक। फिर मैंने उमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया। उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले। हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी। उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ।
3: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR, द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा। आपका हक, उनके जिम्मेदारी।
13: Yeah, this is Shakti Kapoor and you guys are listening to me on the Fun Asia Radio.
0: All right. थैंक यू लिसनर्स फॉर पार्टिसिपेटिंग। बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने और बिल्कुल करेक्ट भी किया। रेणुका शिंदे नहीं है, रेणुका शाने है। उनका नाम रेणुका शाने ही है और उनके स्पाउस का नाम है आशुतोष राणा। एंड द टू हैव जस्ट रिसेंटली, लाइक दिस इज द लेटेस्ट न्यूज, हैव रिन्यूड देयर वेडिंग वाउज आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ बींग मैरिड टुगेदर। एंड इट वॉज रियली नाइस व्हाट ही सेड अबाउट व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट टू डू दैट। So definitely you can check that out. But I had Geeta calling me, I had Renuka calling me, Sanjay calling me, and the first person who called, I didn't ask his name. But all of you were absolutely right. और बिल्कुल ये ऐसी मस्ती में मैंने पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो अभी आपने जो गाना सुना वो सलमान खान का था। मैं डॉन 2 से गाना प्ले कर रही हूँ, फरहान अख्तर का, फर्रू का, who is such a talented director, actor, producer, singer. Oh my God, even a dancer, they say he's a very good dancer. So, chaliye, ab main ye, and writer, how can I forget, a lyricist, just like his dad, he also does that. So, here it is going out to Dawn 2 director, who's soon to be directing Dawn 3. We don't know who Dawn will be. I'm not trying to put salt in the wound, but who knows? It'll be funny even if it's Ranveer Singh. It'll be actually really great if it's Ranveer Singh. But anyways, I'm going to play this song. This one is going out to none other than Farhan Akhtar in the house. थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना अटक गया, ये वाला गाना नहीं था, ये गाना था, ये वाला।

0: All right, listeners, what a song and what direction of Farhana Akhtar. Ab pahunch gaye hum log interview section ki taraf. And today our client is SBA loan expert and Shahid Punjwani is the owner of that. Kafi log apna business start karna chahte hain aur franchise bhi lena chahte hain. Lekin sabse bada sawal hota hai ki funding ka. And आज फोन लाइन पर हमारे साथ हैं SBA लोन एक्सपर्ट जो लोगों को बिजनेसेस के बारे में परचेज के बारे में फ्रेंचाइज स्टार्टअप्स और रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए लोन्स ऑप्शन के बारे में बताते हैं. तो वेलकम, हाउ आर यू डूइंग मिस्टर पुंजवानी?
1: आई एम डूइंग ग्रेट, थैंक्स फॉर हैविंग मी.
0: सो टुडे माय क्वेश्चन इज कि जो इतने लोग नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और करते भी हैं, वो वे कैन दे गेट द कैपिटल फॉर दीज बिजनेसेस दैट दे हैव स्टार्टेड और आर इन द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग?
1: ऑल दे नीड टू बी कॉल्ड अस. सो वी ऑलवेज टॉक अबाउट दिस.
0: आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, थोड़ा मे बी बी क्लोजर टू द फोन. हाँ, आप बताइए.
1: यस, आई कैन बी फिक्स दैट. ओके, कैन यू हियर बेटर?
0: यस.
1: We always talk about the loan options. अगर किसी को franchise शुरू करना है, business खरीदना है, rental properties खरीदनी है, and whenever it comes to the funding part, we always mention, हमने हमेशा यही बात की कि 10-12% down payment में आपको हम loan दिला सकते हैं अगर आपको business खरीदना है या property खरीदनी है. But today I want to add also one more thing to it, कि we can reduce your down payment from 10% to maybe 5%. Or in many cases, it can become just zero. And I'll quickly explain how that works. Agar aap koi business khareede ho, or I always use the same number as an example, total project, agar aapka $500,000 hai, aapko 10-12% down dena hai, $50,000-$60,000 down. Aur hum, end of the day, jab ye start closing ho, wagera ho, aap 10-12% down deke remaining money jo funding hogi.
0: Aapki awaaz abhi bhi thodi goonj rahi hai, ajeeb tarah se.
1: Not sure what's going on. One second.
0: बीच में ठीक आ रही थी.
1: Okay, is it any clearer now?
0: Yeah, now it's much better.
1: Okay, so what I was coming to is the down payment can be reduced. 10% तो हम हमेशा बात करते हैं, जहां अब उसको या तो 5% भी किया जा सकता है या उसको 0% भी आउट ऑफ पॉकेट में आपको बिजनेस मिल सकता है.
0: Oh.
1: The way we do that is, जस्ट लाइक द सेम एग्जाम्पल, $500,000 टोटल प्रोजेक्ट है, $50,000-$60,000 आपको डाउन देना है, रिमेनिंग मनी कैन बी फाइनेंस एंड एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग वी विल गिव यू अनदर 50K अप्रोक्सीमेट वर्किंग कैपिटल. सो व्हाट हैपेंस इज दैट व्हाटएवर मनी यू पुट डाउन वो आपको वापस आ गया वर्किंग कैपिटल के जरिए से और योर आउट ऑफ पॉकेट बिकम जीरो. नाउ दिस कैन ऑल्सो वर्क फॉर हायर प्रोजेक्ट्स. लाइक अगर आपका प्रोजेक्ट 500K का नहीं है, सम गाइज हर्ड मी एंड दे कॉल्ड मी, ओके आजकल 5 लाख में क्या मिलता है, आई मीन व्हाट इफ आई एम बाइंग समथिंग फॉर 1.5 और $2 million. सो यस, वी कैन रेज द वर्किंग कैपिटल अमाउंट फ्रॉम मेबी 50K टू 100K और 150K, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच मैक्स वी कैन डू. वी विल डू दैट वे वी कैन रिड्यूस योर डाउन पेमेंट. सो माइंड में यही होता है सबके बायर के, कम से कम आउट ऑफ पॉकेट में मेरा काम कैसे हो जाए. दैट्स वेयर वी कम इन. वी यूज्ड टू ऑलवेज से 10-12%, बट नाउ वी कैन रिड्यूस दैट टू इवन लोअर देन दैट.
0: ओह, दैट्स वेरी गुड न्यूज फॉर आवर लिसनर्स. नाउ दे कैन रीच यू एट व्हाट नंबर मिस्टर पुंजवानी?
1: 817-786-3338. दिस लाइन डायरेक्टली कम्स टू मी, 817-786-3338.
0: ऑसम. So once again, that number is 3838 or 3338?
1: 3338, 3338, 817-786-3338.
0: Okay, listeners. So thank you so much for joining us and giving this amazing news to our listeners. Mr. Punjwani, any last minute thing you want to tell our listeners?
1: We talked about buying a business, but also at the same time, a lot of existing business owners, who already business चला रहे, उनको भी हमेशा कैपिटल की जरूरत होती है, वर्किंग कैपिटल या एक्सपेंशन की. एंड वी हैव सम एक्सप्रेस लोन प्रोग्राम वेयर वी डू नॉट नीड एनी डॉक्यूमेंटेशन अप फ्रंट एंड वी कैन प्रोवाइड देम अ लोन सॉल्यूशन विद इन जस्ट अंडर 10 मिनट्स विदाउट एनी पेपर वर्क प्रोवाइडेड.
0: ओके, थैंक यू, वी अप्रिशिएट योर टाइम.
1: थैंक्स,
0: थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. All right, so that was Mr. Punjwani, and continuing with the show, I will now move on to abhi aapne Don ka music to suna hi, lekin abhi jahan baat ho chuki hai Salman Khan ki, who's a broker right now, who's actually playing Cupid, who's playing Peacemaker between these two. I played Dawn 2 ka gana, or my God, Shah Rukh Khan is movie mein kya lage hai. And a lot of credit definitely goes to a director like Farhan Akhtar. And now Ranveer Singh, who's absolutely rocked is the word. He's become a blockbuster hero. He had already created a whole trail of great films, but has absolutely broken all records with Dhurandhar, the first one, and now the second one as well. So here is this one is going as a shout out to none other than the superstar right now, and I'm talking about Ranveer Singh. Run Down the City, Manika, Dhurandhar se liya gaya ye gana.

0: तेरी माँ।
1: Frisco is growing fast and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Wilhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Wilhauer for Frisco Mayor because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
2: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल वन मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल टू मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया थोड़ा कंफर्ट। लेवल थ्री अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस।
3: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
4: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
5: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
4: सच या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
5: वेट, व्हाट?
3: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
6: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
3: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
7: चिकन बनाना
8: ब्रो, बनाना नहीं, बनाना मतलब मेक द चिकन राइट।
9: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
10: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है, पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है। और उसका एक ही समाधान, कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 8683464611 और विजिट masterjoshigram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाइए।
11: Astrology readings for guidance only and results may vary.
12: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
13: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodial on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodialcpa.com.
14: Hi, this is Vinay Pathak and you're listening to me on Fun Asia Radio.

वेलकम लिसनर्स, अब बस एक गाने की रिक्वेस्ट आई है जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था, शाहरुख खान का, जबकि ये गाना है और इस गाने का नाम है लेविटेटिंग टाइम्स वो लड़की जो. तो डेफिनेटली इट्स लाइक इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग रील, बट नॉट फ्रॉम नाउ, इट्स बिन सिंस 2023. आई एम गोना प्ले दैट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ, आई बिलीव ही सेड कुमार और डॉन, आई एम नॉट श्योर. बट मालाबार के बारे में आपको बता दूँ, shine bright with diamonds from Malabar Gold and Diamonds Dallas on Preston Road in Frisco, your go-to destination for stunning diamond rings, earrings, necklaces and more that sparkle for every special moment. From classic solitaires to contemporary styles, their diamond collection blends superior quality with timeless design, perfect for so many occasions such as engagements, anniversaries or just celebrating love. Download the mobile app now for more details. Malabar. With that, here is your song.

All right. That was, of course, Dua Lipa's Levitating. I didn't know that there was a remix like that in which Shah Rukh Khan kabhi usme dal ke mashup ho gaya aur usko Levitating hi kehte hain. But of course, Dua Lipa is absolutely amazing. With that, listeners, ek chota sa interview thodi der mein aane wala hai. Lekin usse pehle, मैं सोच रही थी आप लोगों के लिए एक तो लेटेस्ट गाने भी प्ले करना चाह रही हूँ और एट द सेम टाइम कुछ पुराने गाने भी बहुत अच्छे अच्छे आ जाते हैं बीच में. तो अभी दो गाने मेरे पास जो लाइंड अप हैं दे आर डेफिनेटली लाइक न्यू सॉन्ग्स दैट आई विल बी प्लेइंग फॉर यू इन दिस आवर. एंड 6 PM पे एक गिव अवे भी आ रहा है चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से, तो यहीं रहिएगा, कहीं मत जाइएगा. और विद दैट कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ. उमर ख्वाजा, इफ़ यू आर इन्वॉल्व्ड and heaven forbid that you should never be, if you're involved in a car or truck accident or if you have a slip or a fall incident, then you don't have to look any further. Attorney Umar Khwaja will fight your case and help you get the compensation that you deserve. Dealing with insurance companies can be stressful. You need an attorney that will make sure that you are well compensated. You don't pay until you win. For a free consultation, call Umar Khwaja, attorney. Unka number hai 469-300-5046. Or you could also visit his website, which is attorneyumar.com. That's OMAR, attorneyumar.com. So with that, ye gana is wakat, वैसे हिंदी वर्जन है, इसमें श्रुति हसन हैं, जानवी कपूर हैं और साउथ के सुपरस्टार रामचरण हैं. और इस फिल्म का नाम है बुकी बाबू. इज इट बुकी और बुच्ची बाबू, आई एम नॉट श्योर. और पेडी हेलो ये गाना है और ये गाना मैंने लास्ट टू डेज में भी लाइक यस्टरडे आल्सो आई प्लेड, डे बिफोर यस्टरडे आल्सो आई प्लेड. एंड डेफिनेटली इट्स गॉट दैट, यू नो, इट्स गॉट दैट vibe that you just wanna like have a good time, you wanna chill with the song. So ye lijiye aapke liye.

0: And now, listeners, like I had mentioned, ki ab interview ka time ho gaya hai. So I'd like to welcome URA Debt Relief segment to all you listeners. Today, we have the pleasure of having URA Debt Relief Organization representative, Mr. Aman. He's going to tell us about URA Debt Relief programs. Hello, Mr. Aman. How are you?
1: All good. फाइनेंशिया सुनने वाले सभी लिसनर्स को उरा और अमन की तरफ से नमस्कार. सो दोस्तों, एक बार फिर से आपको बार बार की तरह इस बार फिर से याद करा दूं, महीना खत्म हो रहा है और ये महीना फिर दोबारा नहीं आएगा. और वो गलती दोबारा मत कीजिएगा जो हमने इस महीने या पिछले साल की थी. करते करते ये मई का महीना भी बाय बाय कहने को है. तो अगले महीने जब क्रेडिट कार्ड की मिनिमम की चिट्ठियां आएंगी तो उसको पढ़िएगा. उसमें से लिखा होगा कि अगर आप मिनिमम पेमेंट देते हैं तो मिनिमम पेमेंट से ये क्रेडिट कार्ड उतरते नहीं, सिर्फ टाइम पास होता है. और अगर आप भी परेशान हैं, हाई इंटरेस्ट दे दे के क्रेडिट कार्ड टस से मस नहीं हो रहे हैं और आपका क्रेडिट कार्ड उतरने का नाम नहीं ले रहा है, तो URA इज द सोल्यूशन. क्योंकि क्रेडिट कार्ड कोई भी हो, 28 to 40% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट. अगर आपने पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में देखी हो जिसमें मुनीम जी अंगूठा लगवाते थे और इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते थे, ये मॉडर्न मुनीम जी हैं जो आपका क्रेडिट कार्ड कभी उतरने नहीं देंगे. तो अगर आप चाहते हैं कि क्रेडिट कार्ड का कर्जा उतर जाए तो जस्ट नोट कीजिए हमारा नंबर और कॉल कीजिए URA को. क्रेडिट कार्ड बिजनेस का हो, पर्सनल हो, स्टोर के हो, या फिर आपका पर्सनल लोन हो जो आपने शायद यूरोप की छुट्टियों के लिए लोन ले रखा था, या घर की रेनोवेशन के लिए, किचन अपग्रेडेशन के लिए, या कोई भी और पर्सनल लोन ले रखे हैं, या फिर गाड़ी के लोन भी हो सकते हैं. यस, गाड़ी का लोन जो रीपोजेस हो गई है, कार या ट्रक अगर रीपोजेस हो गया है, या फिर गाड़ी टोटल हो गई है लेकिन इंश्योरेंस ने पूरा क्लेम तो दिया नहीं होगा, तो जो बाकी बचा है वो आपको उतारना है. तो ऐसी सिचुएशन में इस तरह के लोन्स को अगर आप कंधों पर लाद कर चलते जाएंगे तो वो क्रेडिट कार्ड या इस तरह के लोन्स उतरते नहीं है, रादर आपका क्रेडिट खराब करते हैं और आपको नया लोन नहीं लेने देते क्योंकि डेट टू इनकम रेशियो इंक्रीज हो जाती है. तो ये सब बातें आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, आप अपनी सिचुएशन को डिस्कस कर सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त एनालाइज करा सकते हैं. जस्ट गिव अस अ कॉल. हमारा टोल फ्री नंबर है 1-888-888-9914, 1-888-888-9914, या फिर आप मुझसे यानी अपने दोस्त अमन से भी बात कर सकते हैं 9-1-6-7-7-6-3-5-5. Again, 9-1-6-7-7-6-3-5-5. Once again, 9-1-6-7-7-6-3-5-5. Hamari website hai www.ura.org. URA spell as ORAA.org. To minimum payment karne se pehle ek bar haath rok lijiyega aur phone kijiyega URA ko, taki aapka debt maaf ho jaye, aadhe se zyada karza maaf ho sakta hai.
0: That is such a great news जो आपने बताई listeners को. I really would like to thank you for joining 104.9 FM Phoenicia Radio. Is there any last thing you want to tell our listeners before you go?
1: Last यही कहना चाहूंगा, minimum payment please. Minimum payment से आप अपना time और money दोनों खराब कर रहे हैं. आधे से ज्यादा कर्जा माफ करवाइए और URA को call कीजिए ताकि आप debt free हो सकें, जिससे आपका credit score improve करेगा और आपका कर्जा उतर जाएगा.
0: Perfect. Thank you so much for joining us, Mr. Aman.
1: Thank you.
0: All right. Well, listeners, एक छोटा सा ब्रेक आने वाला है और ब्रेक के उस पार कहते हैं ना, उस नदियों पार, जब उस पार पहुंचेंगे, यू नो, जंप करके फलांग के उस पार जब पहुंचेंगे तब आपको चांस मिलने वाला है टू विन समथिंग एंड दैट टू इट्स गोना बी रियली नाइस. इट्स फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स. मैं एक पहेली लेके आई हूँ आपके लिए, तो एक क्वेश्चन लेके आई हूँ एंड विद दैट यू कैन विन. और साथ साथ ऑफ कोर्स लिसनर्स, और बातें होंगी, कुछ आपकी रिक्वेस्ट भी, मैं डेफिनेटली वुड लव टू प्ले योर रिक्वेस्ट, सो गिव मी योर कॉल. एंड विद दैट आई वुड लाइक टू शेयर दिस क्विक कोटेशन फ्रॉम अ मूवी. एंड जोडी फॉस्टर थी उस मूवी में, साइफाई क्लासिक थी ये फिल्म. और ये इसका कोई क्विज नहीं है, बट आई वॉन्ट टू टेल यू वॉट शी सेड. शी सेड, यू आर एन इंटरेस्टिंग स्पीशीज, एन इंटरेस्टिंग मिक्स. यू आर केपेबल ऑफ सच ब्यूटिफुल ड्रीम्स एंड सच हॉरिबल नाइटमेयर्स. यू फील सो लॉस्ट, सो कट ऑफ, सो अलोन. ओनली यू आर नॉट. सी, इन ऑल आर सर्चिंग, द ओनली थिंग दैट वी फाउंड दैट मेक्स द एम्प्टीनेस बेयरेबल इज ईच अदर. So that connection, listeners, is so important. This sci-fi classic might seem removed from reality, but it offers uplifting advice for the workplace and beyond. सो इसके बारे में और कुछ बात बताती हूँ. अब छोटा सा ब्रेक आ रहा है एंड आई विल सी यू.
2: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Official tax and finance partner, AG Fintax. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Laptop, charger, coffee, phone, oof. ऑफिस का चेकलिस्ट यार खत्म ही नहीं होता.
8: एग्जैक्टली exactly. और ऊपर से व्हाट टू वेयर का स्ट्रेस अलग.
7: ओ गॉड, पहले आउटफिट फिर उसके बाद उसके साथ क्या पहनना है.
8: आहा, आई कीप दैट पाथ सिंपल.
7: कैसे?
8: ज्वेलरीज जो ऑफिस, डिनर, वीकेंड, हर दिन हर ओकेजन को सूट करे.
7: ओ, दैट काइंड ऑफ ज्वेलरी.
8: या कैरेट लेन काइंड.
2: Lightweight, real diamonds, your everyday fine jewelry. Made to be worn, not stored. Carat Lane, a Tata product. Now open in Frisco.
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी. जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
13: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी. डायग्नोसिस क्लियर है. आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी. एजी फिनटैक्स, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी. फ्रॉम टैक्सेस टू सीएफओ एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन. कॉल 425-395-4318 और विजिट agfintax.com. प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद एजी फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज.
14: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है.
15: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू. ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी. ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
13: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी.
16: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
13: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
17: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
18: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
19: Calculating route, rerouting.
18: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
19: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ.
18: क्यों?
19: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं. डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत. फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ.
18: अच्छा तो सीधा वही ले चलो.
16: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
19: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
7: मामू,
20: देखो क्या हो गया।
21: ओ क्या हो गया?
20: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है?
21: ओए जर्मन का कमाल है।
20: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
21: ओए नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623 कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
22: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
23: हाय, दिस इज रानी मुखर्जी, यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो।
0: वेलकम लिसनर्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है राइट हियर। ड्राइव टाइम शो इज गोइंग ऑन एंड यस, आई डू हैव अ गिव अवे। लेकिन गिव अवे में तुम्हें एक पर्टिकुलर गाना प्ले करने वाली हूँ जिसमें आपको चंडीगढ़ बाइट से कुछ यमी मिलने वाला है, लेकिन उसके बारे में बाद में बताऊंगी। अब सबसे पहले आई लाइक टू टेल यू अबाउट हेल टू नेल, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिसनर्स, DFW होम ओनर्स एंड बिजनेस ओनर्स के लिए। इज योर रूफ रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टॉर्म सीजन? वेल, इफ नॉट देन यू don't have to look any further. Trust the experts at Hail to Nail Contracting.

0: ओनर्स के लिए. इज योर रूफ रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टॉर्म सीजन? वेल, इफ नॉट देन यू डोंट हैव टू लुक एनी फर्दर. ट्रस्ट द एक्सपर्ट्स एट हेल टू नेल कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर प्रोफेशनल रूफ रिप्लेसमेंट एंड रिपेयर्स. From shingles and TPO to metal roofing, they handle both commercial and residential projects with quality and care. And that's not all. They also offer general remodeling, painting, repairs, and concrete work to keep your property looking its best. Free inspection and claim assistance is also available. Check out their 5-star Google reviews. For dependable service, call Nisar Ahmed today. Nisar Ahmed ka number note kijiye, 682-561-9795. That's 682-561-9795. And unka Nisar Ahmed ka email hai, it is h2, that is the number 2, h2ngcontractors@gmail.com. h2ngcontractors@gmail.com. We have a caller calling in. Hello, you're on air. Who's this?
1: Hi, I'm Hassan. Yes, I am.
0: I'm very good, Hassan. How are you doing?
1: Not too bad. Going home.
0: All right.
1: कल परसों ईद थी हमारी, हम जो जॉब पे थे.
0: ईद मुबारक. ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको.
1: Thank you. कोई भी अच्छा सा गाना आप अपने पसंद का लगा दीजिए, जबरदस्त सा.
0: Definitely.
1: इसमें एनर्जी आ जाए.
0: एनर्जी आ जाए. एक्चुअली दो गाने अभी हैं, एक की रिक्वेस्ट है, इसके बाद उससे एनर्जी शायद कम आएगी, लेकिन बहुत ही गंभीर सा गाना है, लेकिन उसके बाद मैं आपके लिए एनर्जी वाला गाना दो गाने के बाद मैं प्ले करूंगी. लेकिन जो नेक्स्ट मैं करने वाली हूँ उसमें एनर्जी है, इनफैक्ट एक क्विज भी है. सो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग.
1: क्योंकि मेरी छुट्टी कल है, तो कल मैं असल ईद बनाऊंगा.
0: बस, तो क्या बात है, तो बढ़िया सा आपके लिए गाना हम प्ले करेंगे. ठीक है,
1: चले. थैंक यू, सो नाइस.
0: राइट, श्योर. सो लिसनर्स, लाइक आई हैड मेंशनड, अब ये जो मैं गाना प्ले करने वाली हूँ, ये क्विज है. इसमें आपको ये बताना है कि ये गाना कौन सी फिल्म से लिया गया है, और नॉट जस्ट दैट, इस फिल्म में कौन एक्टर एक्ट्रेसेस हैं ये भी बताना है, और इसे किसने गाया है. सो द मेन सिंगर, यू नो, एंड एज फार एज म्यूजिक कॉम्पोजिशन, नाउ इफ यू टेल मी दैट, दैट बी ग्रेट. एटलीस्ट वन नेम. So it's name of the film, name of the hero heroines, the singers, and the music composition. All right. So with that, here is the song for you to win something from Chandigarh Bites. Say what?

0: Wow.
1: All right, congratulations going out to Yashraj Chawla. Yashraj Chopra कहने वाली थी मैं. Well, listeners, ये जो chance होता है, अगर आप महीने में एक बार जीत सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जीत सकते. That pays, you know, all type, all people get a chance to win, not just one person. So congratulations to Yash. And also ये कढ़ाई पनीर list उन्हें मिली है या कढ़ाई chicken Allen में है. उनके बारे में ये बता दूँ कि चंडीगढ़ बाइट्स के बारे में कि they also have the special thali Monday through Friday with exciting new dishes rotating daily for lunch only. Located off of McDermott Drive in Allen, visit chandigarhbites.com for details. And listeners, अभी ये तो अपने हो गया giveaway. लेकिन एक special request आई है, and that too from our listener all the way in New York, Jay Gandhi. उनकी request आई है और वो कह रहे थे कि वो सुन रहे हैं radio और वो he would like to hear the song. कल हो ना हो. ये गाना वैसे गंभीर है और बहुत ही रियलिस्टिक सा गाना है, क्योंकि सच बात तो यही है कि कल हो ना हो. शाहरुख खान, सैफ अली खान, प्रीति जिंदा और सोनू निगम की आवाज़ में कल हो ना हो, स्पेशली रिक्वेस्टेड बाय जय गांधी. इन्जॉय.

0: रही है My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: Heere moti maina chahu.
3: Achha, manifest karne se pehle thoda dubara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy two get one free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy two get one free. Aur wo bhi कुछ होलसेल प्राइस पर, चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग
4: सफर खूबसूरत है मंजिल से भी
5: अरे भाई वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट
6: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर लॉसिन ट्रैवल फॉर नियरली 30 इयर्स लॉसिन ट्रैवल हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज प्लान स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स विद द बेस्ट एयरफेयर्स वेकेशन पैकेजेस क्रूजेस एंड कस्टमाइज्ड ट्रैवल सॉल्यूशंस लॉसिन ट्रैवल मेक्स एवरी जर्नी स्मूथ अफोर्डेबल एंड टेंशन फ्री कॉल नाउ 214-631-2458 or visit lawsontravel.com.
7: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूं
8: अरे मैडम करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या
9: अब करेगा बिकॉज़ इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन स्टनिंग लहंगास एलिगेंट साड़ीज ब्राइडल ज्वेलरी मेंस एंड किड्स वेयर
10: इतना सब और प्राइस
9: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन अब हर आउटफिट बोलेगा
11: मैं हीरोइन हूं
12: आई एम सो स्ट्रेस्ड क्रेडिट कार्ड बिल्स अनसिक्योर्ड डेट्स व्हाट आर वी गोइंग टू डू
13: कुछ भी नहीं उरा डेट रिलीफ विल डू इट फॉर अस
12: क्या मतलब
13: उरा कैन हेल्प अस सेव अप टू 50% ऑन आवर टोटल डेट एंड द रेस्ट वी पे इन इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स
12: बट व्हाट इफ इट डजंट वर्क We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
13: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
12: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
14: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
15: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
16: बैठ जाऊं? पक्का कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था
17: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था
16: थोड़ा तेरी गाड़ी डेट पे कम वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है
18: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
19: इन प्लेनो
18: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स मेंटेनेंस रिपेयर्स ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ कंपटीटर कोर्ट मैच भी कॉल 4692983870 पहले गाड़ी ठीक कराओ फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
15: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा
20: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
21: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में
20: दैट मैजिक रिमूवल हो लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी
21: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से नाउ इट्स योर टर्न समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com
16: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer?
22: उमर ख्वाजा
23: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833 गेट उमर और विजिट अटर्नी उमर डॉट कॉम
0: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back. June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.

What a lovely song. और बहुत ही मुबारक ईद के मौके पे ये गाना भी प्ले हो गया, तो दैट इज अमेजिंग. एंड लिसनर्स, एक और बहुत ही प्यारा मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये बात, दैट इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ ने सेयर्स इट्स ईजी टू बिकम डिस्करेज्ड. ने मीन्स नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तुम कुछ भी कर लो. आर यू क्रेजी? वाई यू ड्रीमिंग दैट? वी हैव हर्ड दैट बिफोर. And it's easy to get discouraged. In this scene, जो कि लिया है एक particular film से, उसका एक dialogue मैं play करने वाली हूँ. Play क्या मैं आपको बताने वाली हूँ. From the heart-winning film, this one is called In Pursuit of Happiness. आपने देखी होगी Pursuit of Happiness, जिसमें ये particular speech में बोला जाता है. बहुत ही heartwarming है ये. इसमें Chris अपने son को बोलता है, priceless advice देता है. To pursue his dreams mercilessly without letting other people ideas of him get in the way. And what does he say? Don't ever let someone tell you you can't do something. Not even me. You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. You want something, go get it. Period. Itna zyada encouraging dialogue hai. That one should remind that to the kids also, and that way is you become a sense of, you know, you become a ray of light in someone's life, because who knows what their destiny holds, and who is anyone, even the parent, to say no, you cannot achieve it. To ye baat sochne ki hai, samajhne ki hai. Aur bas ek quick commercial break aane wala hai listeners, aur commercial break ke baad main aapki request bhi lungi. अभी कुछ रिक्वेस्ट मैंने ऑलरेडी प्ले कर दी हैं. आई विल कंटिन्यू टेकिंग इन योर रिक्वेस्ट आफ्टर द 6:30 PM ब्रेक. विद दैट आई एम लीविंग यू विद द नॉट लीविंग यू बट जस्ट बिफोर द ब्रेक एक मिनट का ये गाना सुनते हैं. आई विल बी राइट बैक.

And listeners, I'm right back. I was talking about some motivational talks. And before I go to the one that I had in mind, let me go ahead and tell you about connecting with people. Because wahi baat ho rahi hai ki connection kitna zaruri hai. Connecting America. With Connecting America, you can turn your business expenses into a powerful income stream through a unique insurance-based strategy designed to boost your bottom line. And it doesn't stop there. They also help homeowners pay off their mortgage in 10 years or less. So don't wait. Call James today at 321-888-7345. That's 321-888-7345. Or you could visit connectingamericafinancials.com and start turning your daily expenses into income. Connecting America, where smart business owners turn costs into cash. तो एक फिल्म आई थी बहुत साल पहले जिसमें रॉबिन विलियम्स थे. इनफैक्ट ही इज नोन फॉर दैट फिल्म एंड ही वेंट अवे टू सून. यू नो, आई विश ही टॉक्ड अबाउट हिज डिप्रेशन टू समवन, बट ही हैड दिस मोटिवेशनल स्पीच अबाउट सीजिंग द डे फ्रॉम डेड पोएट्स सोसाइटी. दैट मूवी केम इन बैक इन 1989 एंड ही टेल्स हिज स्टूडेंट्स, बिकॉज यू सी, एंड आई एम कोटिंग नाउ, बिकॉज यू सी जेंटलमैन, these boys are now fertilizing daffodils. But if you listen real close, you can hear from them whisper. But if you listen real close, you can hear them whisper their legacy to you. Go on, lean in, listen. You hear it? Carpe, hear it? Carpe, carpe diem. Seize the day, boys. Make your lives extraordinary. What a lovely saying. Seize the day, carpe diem. Make your life extraordinary. And I was mentioning to you कि मैं नए गाने लेके आई हूँ, तो ये गाना भी बहुत अच्छा है. ये टाइटल ट्रैक है फ्रॉम द मूवी है जवानी तो इश्क होना है, जिससे मैंने अभी ये क्विज भी किया था. दिस इज गोइंग आउट टू ऑल यू लवली डैलस पीपल, डैलस फोर्ट वर्थ एंड सराउंडिंग एरियाज एंड एनी वन हु इज लिसनिंग टू अस ऑनलाइन.

0: चल चल अपना वाला बजा ना।
1: सिंगर्स आर वरुण धवन, शंकर महादेवन, हेमा सरदेसाई, रॉन्ज एंड अर्ल एडगर, म्यूजिक बाय जावेद मोहसिन एंड अनु मलिक, लिरिक्स बाय समीर अंजान एंड रॉन्ज एंड मोहसिन। क्या कूल सा गाना है। ये फिल्म तो बढ़िया चलेगी ही 100%। उसमें जिसे कहते हैं पैसा वसूल है इस फिल्म में, एंड वरुण धवन का एक तरह से कमबैक भी है, सो होपफुली ही विल डू रियली वेल इन दिस फिल्म। डेविड धवन ने डायरेक्ट करी है ये फिल्म। नेक्स्ट गाना भी बहुत ही हैपनिंग है लिसनर्स, और ये गाना है टेकन फ्रॉम द मूवी वेलकम टू द जंगल। इस गाने के बाद एक क्विक ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक आफ्टर दैट। मीनवाइल यू एंजॉय द सॉन्ग वेलकम टू, इट सेज दैट्स व्हाट अक्षय कुमार इज सेइंग, एंड इसमें अक्षरा सिंह भी है, एंड ये गाना काफ़ी क्रेजी सा है। लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट ऑलरेडी कि ये गाना क्या है भाई, लेकिन डेफिनेटली क्योंकि इतना डिफरेंट सा गाना है, इट हैज़ कॉट द अटेंशन ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल। And in fact, a lot of people are talking about it. Akshay Kumar and Akshara Singh is particular film mein. Welcome to the Jungle, and Akshay is saying he's promising this film to be total paisa vasool. Chaliye dekhenge kaisi rahegi ye film. Thode different kirdar, different role mein hai Akshay Kumar.
2: है आपकी नजर में
3: अरे हीरो जो पहले टॉप का हीरो था अब फ्लॉप का हीरो, आइटम बॉय बनकर भोजपुरी में खिस रहा है।

0: Cisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
1: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
2: हाँ।
1: घर रिलोकेट करनी है?
2: हाँ।
1: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
2: हाँ भाई हाँ।
1: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
0: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सोल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
3: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
4: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
3: K2 ड्राइव मतलब
4: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है।
3: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
4: 100%
5: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402 K2 Drive, Dallas's smartest fleet partner.
6: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
7: Big achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
8: मेरा रिटायरमेंट प्लान रेडी है।
9: प्लान या होप?
8: मतलब है
9: प्लान मतलब स्ट्रेटजी, होप मतलब देखते हैं क्या होता है।
8: ओके, तो मेरा वाला होप है।
9: तभी तो लोग वेल्थ टैक्टिक्स से बात करते हैं।
8: क्यों?
9: बिकॉज रिटायरमेंट को होप पे नहीं, स्ट्रेटजी पे प्लान करना पड़ता है।
10: वेल्थ टैक्टिक, रिटायरमेंट प्लानिंग विद क्लैरिटी एंड स्ट्रेटजी। फॉर फ्री कंसल्टेशन कॉल 469-693-2077 और विजिट देम एट wealthtactic.com।
11: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
12: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
10: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
13: वेलकम सर, सुन रहे हैं इस वक्त आप ड्राइव टाइम, दिस इज होस्ट पावल भाटिया एंड बात हो रही थी मोटिवेशन की और अलग अलग भांति भांति गानों की। और अब बस जो मैंने गाना प्ले किया था, इट हैड अ वेरी भोजपुरी फील। ये जो नेक्स्ट गाना मैं प्ले करने वाली हूँ वो है हरियाणवी गाना, और ये नया गाना है, न्यू हरियाणवी सॉन्ग कह सकते हैं इसको। और इस सॉन्ग का नाम है किताब, तनु रावत की आवाज़ में आप सुनेंगे, एंड इट्स फीचरिंग मिस्टर दत्त फीचरिंग विपिन फौजी। चलिए गाना थोड़ी देर में सुनते हैं, उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ, वो भी देसी मंडी के बारे में। अटेंशन देसी फूड लवर्स एंड स्मार्ट शॉपर्स, योर नेक्स्ट ग्रोसरी रन जस्ट गॉट अ होल लॉट बेटर एट देसी मंडी इन लुइसविल। कैसे? From fresh vegetables and authentic Indian groceries to halal meat, spices, sweets, snacks and delicious hot food, Desi Mandi brings the taste of home all under one roof. Whether you're shopping for daily essentials or planning a family feast, you'll find quality, variety, and unbeatable desi flavor waiting for you. So grab your shopping list and head to Desi Mandi today. Desi Mandi, where the desi community shops, eats, and feels at home. With that, here is the Haryanvi song, Kitab.

All right, what a different song, very club feel. अभी आपको बस different जगह दे रही हूँ मैं. एक तरफ से आपने सुना भोजपुरी म्यूजिक घिस घिस घिस, उसके बाद आपने सुना हरियाणवी म्यूजिक किताब, और अब ये क्लब म्यूजिक माशूका फ्रॉम कॉकटेल 2. उससे पहले कवाली भी थी और पुराने गाने भी थे, इन द सेंस 90s के एक दो थे, और देन ऑफ कोर्स द लेटेस्ट सॉन्ग्स वर आल्सो देयर, जिसमें ऑफ कोर्स धुरंधर था, डॉन 2 था, एंड ऑल दैट न्यूज दैट्स गोइंग ऑन अबाउट फरहान अख्तर एंड रणवीर सिंह. वी विश एवरीथिंग कम्स टू अ ग्रेट एडजस्टमेंट बिटवीन द टू, लाइक सलमान खान इज ट्राइंग. आई हैव टू गिव कूडोज टू सलमान खान. And with that, this next song is going out to Vihan. Good luck on your tryout, Vihan. It's a very cool song. And here is something. A lot of people feel that rewards and punishments work. Sometimes you feel that, you know, employees perform better if you give them rewards, or sometimes if you even punish them in some ways. But according to an article, you know what? The secret to high performance isn't reward and punishments, but that unseen intrinsic drive, the drive to do things for their own sake, the drive to do things cause they matter. The song is for Vihan. Go get him, boy.

तानिश्क बागची का म्यूजिक सिम्बा से लिया गया ये थीम सॉन्ग रणवीर सिंह एंड सारा अली खान. एंड विद दैट लिसनर्स, इट्स टाइम फॉर मी टू से बाय फॉर नाउ. आई होप यू एंजॉयड द शो एज मच एज आई एंजॉयड ब्रिंगिंग इट फॉर यू. दिस इज योर होस्ट पावल भाटिया सेइंग बी सेफ, बी ब्रेव, कीप इट रियल, जेन्युइन एंड हैपनिंग विद फन एशिया रेडियो, द वन दैट ब्रिंग्स द कम्युनिटी टुगेदर. एंड दिस वन इज अगेन फॉर ऑल यू लिसनर्स आउट देयर. Enjoy this lovely track.